0: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज़ 24/7। अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। सुबह के 6 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी जिक्र किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री

0: नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें तथा मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरका परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार्य बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हुए। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्ले ऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना अर्केल। Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties and his visionary leadership. The award is the highest distinction that can be given to a head of government. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities to the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of the people. Earlier, the Prime Minister's aircraft was escorted by Swedish Air Force jets as it entered the European country's airspace. He was given a warm welcome at the airport by his Swedish counterpart in a special gesture. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along with the Norwegian Prime Minister. The visit will provide an opportunity to review the progress made in India-Norway relations and explore avenues to further strengthen them. In the fourth leg of his visit, the Prime Minister will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will mark the first Prime Ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonia and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. Mr. Modi will also address the India-Norway Business and Research Summit along

ये अभी आप सुन रहे थे सोनू निगम और अनुराधा पौडवाल के स्वर में ये गीत। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का अगला गीत। ये गीत में स्वर दिया है हरिहरन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर। प्रातः के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम चिंतन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास प्रतिदिन अनेक लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आते थे। स्वामी जी से अपनी जिज्ञासा व्यक्त करके व उनसे समाधान पाकर लोग खुशी खुशी अपने घर लौटते थे। एक व्यापारी अपने जीवन में बहुत व्यस्त रहता था। उसका व्यापार बहुत तरक्की कर रहा था। वह अपने व्यापार में पूरी ईमानदारी बरतता था। ईश्वर में भी उसकी अटूट आस्था थी, किंतु उसे अपने व्यस्त जीवन में आराधना का समय नहीं मिल पाता था। वह अपनी इसी समस्या को लेकर स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचा। स्वामी रामकृष्ण बोले, इस प्रश्न का जवाब मैं तुम्हें अवश्य दूंगा, पर पहले तुम मुझे यह बताओ कि क्या तुमने कभी किसी ग्रामीण स्त्री को ढेंकी से चूड़ा बनाते देखा है? स्वामी जी का यह अजीबोगरीब प्रश्न सुनकर व्यापारी बोला, नहीं स्वामी जी, मैंने तो किसी ग्रामीण स्त्री को ऐसा करते आज तक नहीं देखा। अरे, मुझे अपने व्यापार से फुर्सत मिले तब तो मैं कुछ देखूं। इस पर स्वामी जी बोले, चूड़ा बनाने वाली ग्रामीण स्त्री एक हाथ से चूड़ा पलटती जाती है तथा दूसरे हाथ से बच्चे को गोदी में लेकर दूध पिलाती रहती है। उस दौरान यदि कोई पड़ोसन या अन्य व्यक्ति उसके पास आता है तब वह उनसे बातें भी करती है, ग्राहक आने पर उनसे हिसाब भी करती है, किंतु इन सब के बीच उसका कार्य निरंतर चलता रहता है। इन सब कामों के बीच उसका ध्यान ओखली और मूसल पर लगा रहता है। वह भली भांति जानती है कि यदि थोड़ी सी भी असावधानी बरती गई तो मूसल हाथ पर गिरेगा और हाथ टूट जाएगा। उस ग्रामीण स्त्री की तरह ही हमें अपने सांसारिक कार्यों के बीच सर्वशक्तिमान ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। उसके लिए अलग से समय नहीं निकाल पाने का पछतावा नहीं करना चाहिए। स्वामी जी के इस उदाहरण से व्यापारी भली भांति समझ गया कि व्यस्त रहते हुए भी ईश्वर की आराधना की जा सकती

सकती है। तभी स्वामी जी बोले, पुत्र एक बात और याद रखना कि कार्य और व्यापार में ईमानदारी बरतना, मन लगाकर काम करना भी ईश्वर की आराधना के ही बराबर है। व्यापारी स्वामी रामकृष्ण परमहंस से अपनी जिज्ञासा का उत्तर पाकर संतुष्ट हो गया और उन्हें प्रणाम कर वापिस चला गया।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के विचारों को। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा में आइए जानते हैं आज की सुबह के शेष कार्यक्रम। 7:10 पर हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम संगीत का। गीतों भरी गुड मॉर्निंग आप सुन सकेंगे 7:30 पर। और स्वर गंगा शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में प्रसारित किया जाएगा 8:45 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनिएगा अर्चना सिंह का गाया राग तोड़ी। कार्यक्रम मिट्टी दी महक में आप सुन पाएंगे 9:30 पर। और अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे रामचरित मानस का बालकांड भाग 59।

एक बार राजा ने विंध्याचल के जंगल में हिरणों का शिकार करते हुए एक विशालकाय सुअर को देखा। सुअर के पीछे घोड़ा दौड़ाता राजा प्रताप भानु अत्यंत गहन वन में पहुंच गया। राजा निशाना साध बाण चलाता, किंतु सुअर अपने शरीर को बचा लेता। अंत में वो एक पहाड़ की गुफा में जा छुपा और राजा को हार कर लौटना पड़ा, किंतु वो घोर वन में रास्ता भूल गया।

0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस, आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सुरेश चंद शर्मा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी गतरात्रौ गोथेनबर्ग इत्यत्र स्वीय स्वीडिश समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यमुना साकं संवादं विहितवान्। श्री मोदी द्विदिवसीय स्वीडन यात्रान्तर्गतं गतदिने गोथेनबर्ग इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। भारत स्वीडन देशयोः सम्बन्धेषु मोदिनः असाधारण योगदानाय दूरदर्शी नेतृत्व सम्माने च प्रधानमंत्री श्री मोदी रॉयल ऑर्डर ऑफ द स्टार डिग्री कमांडर ग्रेड क्रॉस इत्यनेन सम्मानेन सभाजितवान्। प्रधानमंत्री मोदी सह प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्तांतर्गतम उभौ नेतारो भारत स्वीडन संबंधानां समेषां पदक्षेपाणां समीक्षामपि कृतवन्तौ। उभौ नेतारो व्यापार निवेश प्रविधि नवाचार हरित परिवर्तनम अंतरिक्ष रक्षा अनुसंधानम समेत्य नैकेषु विषयेषु चर्चितवन्तौ। स्वीय संबोधने श्री मोदी आतंकवादम आलोचयन नैकेषु विषयेषु विस्तृतेण वक्तव्यं प्रकटितवान्। आतंकवादं विरुध्य संघर्षे स्वीडिश प्रधानमन्त्रिणः समर्थनाय आभारमपि श्री मोदी प्रकाशितवान्।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना स्वीडिश समवायाः आमन्त्रिताः। गोथेनबर्ग इत्यत्र प्रमुख स्वीडिश समवाय प्रमुखैः सह वार्तान्तर्गतं श्रीमोदी स्वीडिश समवायान् विनिर्माण हरित हाइड्रोजन अभियानं स्वच्छोर्जा अन्येषु क्षेत्रेषु च स्वीयोपस्थिति संवर्धनाय आग्रहमपि कृतवान्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य स्वीय यात्रायाः चतुर्थे चरणे नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलने भागग्रहणाय अथ द्विपक्षीय वार्ताभ्यः श्री मोदी अद्य नॉर्वे इत्यत्र सम्प्राप्येत। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः नॉर्वे इत्यत्र एषा प्रथमा यात्रा स्यात्। श्रीमोदी राजा हेराल्ड पंचम इत्यमुना अथ रानी सौम्या इत्यनया साकं च मेलनं कुर्यात्। श्रीमोदी तत्रत्य प्रधानमन्त्रिणा जोनास गहरस्टोरी इत्यमुना साकं द्विपक्षीयां वार्तां कुर्यात्। कांग्रेस दलस्य नेतृत्वे केरलम शासनस्य शपथग्रहणम् अद्य स्यात्। कांग्रेस दलस्य नेता वीडी सतीशन अद्य तिरुवनन्तपुरम इत्यत्र शपथवचनं स्वीकुर्यात्।

0: काङ्ग्रेसदलेन सतीशन इत्यसौ केरलप्रदेशस्य अग्रिममुख्यमन्त्रीरूपेण समुद्घोषितः। काङ्ग्रेसदलस्य नेतृत्वयुतेन युनाइटेड डेमोक्रेटिक ग्रन्थियुतेन तत्र शासनविरचनं स्यात्। केन्द्रीयः गृहसहकारितामन्त्री अमितशाहः गुजरातप्रदेशस्य गान्धीनगरे 700 कोटिमितानां विकासपरियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च कृतवान्। स्वीयद्विदिवसीययात्रावधौ गतदिने गान्धीनगरनगरनिगमस्य 100 कोटिमितानां विकासकार्याणां शुभारम्भमपि श्रीशाहः विहितवान्। एतत्पूर्वं प्रथमे दिने श्रीशाहः सूचनाकेन्द्रस्य उद्घाटनं च कृतवान्। श्रीशाहः AI तथा डीपटेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: अन्ते च क्रीडावार्तासु IPL इत्येतस्यां क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स सनराइजर्स हैदराबाद इत्यनयोः दलयोः मध्ये द्वन्द्वं स्यात् इति वार्ताः।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोतेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, SME, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल बदलाव और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की सराहना की। उन्होंने स्वीडन में भारतीय समुदाय के सकारात्मक योगदान का भी उल्लेख किया। क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया ने भी इस बैठक में हिस्सा लिया और स्वीडन के राजा और रानी की ओर से शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतिथ्य सत्कार के लिए अपने मेजबानों को धन्यवाद दिया और राजा कार्ल 16वें गुस्ताव के 80वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडिश कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया है। श्री मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की अपील की। प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं। श्री मोदी राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। ये यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें और मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। कांग्रेस नेता VD सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की। 21 मंत्रियों में से सतीशन सहित 14 पहली बार मंत्री बन रहे हैं। कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद के अलावा 11 मंत्री पद मिले हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को 5 पद आवंटित किए गए हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने इस तरह की कार्रवाई को अस्वीकार

बताया है, क्योंकि इससे और खतरनाक स्थिति पैदा हो सकती है। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का यह सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सरगेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए उन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे जलपोत गुजरने की अनुमति दी गई थी, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे संगीत का कार्यक्रम में कौस्तव घोष के गाए भजन। आपके साथ तबले पर थे सलीम अहमद, बांसुरी पर विनय प्रसन्ना थे और हारमोनियम पर थे दामोदर लाल घोष। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

कार्यक्रम की तुम भरी गुड मॉर्निंग में मैं दुर्गेश सारस्वत आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आकाशवाणी के इस सुरीले सवेरे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ मिनट्स आप मेरे साथ बिताने वाले हैं कुछ ऐसी बातों और कुछ ऐसे एहसासों के साथ जो आपकी सुबह को हल्का, ताज़ा और मुस्कुराहटों से भरा बना दें। दोस्तों, यूँ तो सुबह केवल सूरज के उगने का नाम नहीं है, वो एहसास है जब रात की थकान धीरे धीरे उतरने लगती है, खिड़की से आती हल्की हवा मन को छूकर कहती है एक नया दिन आपका इंतज़ार कर रहा है। किसी के लिए सुबह की चाय की पहली चुस्की है, किसी के लिए मंदिर की घंटियाँ, और किसी के लिए बच्चों की आवाज़ें, और किसी के लिए रेडियो पर बजता ये प्यारा सा गीत।

दोस्तों, इसी खूबसूरती एहसास के साथ आज के गीतों भरी गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं। और शुरुआत ऐसे गीतों से हो जाए तो सुबह की नरमी और मन की ताज़गी दोनों को अपने साथ लेकर आती है। वाह, कुछ गीत सचमुच सुबह की धूप जैसे होते हैं, धीरे धीरे मन पे उतरते हैं और दिन को आसान बना देते हैं। जिंदगी भी शायद ऐसी ही होनी चाहिए, बहुत तेज़ नहीं, बहुत भारी नहीं, बस हल्की हवा की तरह जो छूकर गुजर जाए और पीछे एक अच्छी सी मुस्कान छोड़ जाए। दोस्तों, अक्सर हम अपनी भागदौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना भूल जाते हैं। लेकिन कभी गौर कीजिए, सड़क किनारे खिलते फूल, छत पर बैठे कबूतर, सुबह की हल्की धूप या माँ की आवाज़, ये सब जीवन के वही छोटे छोटे संगीत हैं जिनसे हर दिन सुंदर बनता है। बिल्कुल इसी गीत की तरह।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: सुबह की हवा में ना सचमुच एक अलग सी बात होती है। कल की परेशानियाँ भी थोड़ी कम लगने लगती हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सुबह हमें धीरे से समझाती है, अरे बस करो यार, इतना भी मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। आजकल ज़िंदगी इतनी तेज़ हो गई है कि हम खुद से बात करना ही भूल जाते हैं, बस काम, जिम्मेदारियाँ और भाग दौड़। दोस्तों, कभी खिड़की के पास बैठकर चाय पीजिए और सुनिए कोई प्यारा सा गीत, मन अपने आप शांत हो जाएगा। और अब बारी एक ऐसे गीत की जो सफ़र जैसा लगता है, हल्का, खुला और सुकून देने वाला।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग और मैं हूं आपकी होस्ट दुर्गेश। कुछ लोग सुबह बहुत बातें करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे सुबह गुड मॉर्निंग बोल पाना भी एक बड़ी उपलब्धि होता है। लेकिन दोस्तों संगीत वो हर मूड में साथ निभाता है, चाहे आप रसोई में काम कर रहे हों, ऑफिस के लिए निकल रहे हों या बस आराम से बैठे हों, एक अच्छा गीत हमेशा साथ चल पड़ता है। और इसी तरह आइए सुनते हैं ये एक और प्यारा सा गीत जो मन को खुली हवा जैसा एहसास दे।

श्रोताओं, कितना रूहानी गीत है ये। बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई हवा सुबह पहाड़ों से उतर कर सीधे दिल तक आ गई हो। कभी कभी हम खुद को भी थोड़ा समय देना चाहिए। हर समय सबके लिए उपलब्ध रहना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा अपने लिए जीना भी ज़रूरी होता है। सुबह बस इसी बात का याद दिलाती है कि जीवन केवल जिम्मेदारियां नहीं हैं, कुछ सपने भी हैं, कुछ गीत भी हैं, कुछ रास्ते भी हैं। अक्सर होता क्या है ना कि ज़िंदगी हर दिन हमें कुछ नया सिखाती है और हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते। कभी धैर्य सिखाती है, कभी इंतज़ार, और कभी मुस्कुराकर आगे बढ़ना। सच कहें तो संगीत इन सबका सबसे अच्छा साथी है। एक अच्छा गीत कभी दोस्त बन जाता है, कभी

0: याद और कभी हिम्मत, तो कभी अपने किसी पुराने दोस्त की याद दिला जाता है।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों, धीरे धीरे ये सुरीला सफर अब जब अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा है, उम्मीद है कि इन गीतों ने आपकी सुबह को थोड़ा और खुशनुमा बना दिया होगा। याद रखिए, हर दिन बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होता है। कभी किसी की मुस्कान, कभी कोई गीत, कभी कोई याद, और कभी बस एक शांत सुबह। इसी खूबसूरत एहसास और इसी खूबसूरत गीत के साथ अपने दोस्त दुर्गेश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे गीतों भरी गुड मॉर्निंग। आकाशवाणी का ये दिल्ली केंद्र है और अब सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। भारत और स्वीडन ने आपसी सहयोग को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जैसी योजनाओं के तहत भारत में निवेश बढ़ाने का निमंत्रण दिया। केरलम में कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून के सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्वीडन ने आपसी साझेदारी को बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वीडन यात्रा की ये ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की। वे कल स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचे। भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व की पहचान के रूप में श्री मोदी को रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार, हरित बदलाव, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा, सुरक्षा, एसएमई, अनुसंधान और जनता के बीच संबंधों में सहयोग को प्रगाढ़ करने के तरीकों पर चर्चा की। दोनों नेता भारत यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी की भावना और हाल ही में संपन्न भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के अनुरूप जनहित के नए अवसरों की पहचान करने पर भी सहमत हुए। उन्होंने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की तात्कालिकता पर जोर दिया गया और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग आगे बढ़ाने पर सहमति बनी।
2: यात्रा के दौरान दोनों देशों ने वर्ष 2026 से 2030 तक की संयुक्त कार्य योजना अपनाई, जिसका उद्देश्य अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय आर्थिक आदान प्रदान को दोगुना करना है। इंडिया स्वीडन स्ट्रॉन्गर टुगेदर टुवर्ड्स 2047 थीम के तहत दोनों देशों ने 2027 में भारत में द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश शिखर सम्मेलन आयोजित करने पर सहमति जताई। स्वीडन उद्योगपति और प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत निवेश बढ़ाने का आह्वान किया, विशेषकर राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन और क्रिटिकल मिशन मिनरल मिशन जैसे क्षेत्रों में। दोनों देशों की साझेदारी अब सेमीकंडक्टर और मजबूत सप्लाई चेन जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर विस्तारित होगी। तकनीकी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में भी यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौते हुए। प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए स्वीडन का विशेष आभार भी व्यक्त किया।
3: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: इस यात्रा में साझा बौद्धिक विरासत और व्यापक क्षेत्रीय सहयोग को भी नहीं पहचान दी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। वे 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे।

0: करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। 43 वर्ष बाद भारत के कोई प्रधानमंत्री नॉर्वे जा रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कहा कि ये सम्मेलन 165 से अधिक देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों, गणमान्य जनों और सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर आज सुबह 10 बजे तिरुवनंतपुरम में आयोजित समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। मुख्यमंत्री पद के लिए नामित सतीशन ने कल शाम शपथ ग्रहण समारोह से पहले 21 सदस्यीय UDF मंत्रिमंडल की घोषणा की।
4: कांग्रेस के नेतृत्व वाली UDF सरकार आज केरलम में 10 साल के अंतराल के बाद शपथ ले रही है। मुख्यमंत्री और 20 अन्य मंत्री तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में आयोजित समारोह में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए UDF कार्यकर्ता कल दोपहर से ही बड़ी संख्या में राजधानी पहुंच रहे हैं। इस समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनाराई जयन और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल में नवनियुक्त और पदोन्नत मंत्रियों को विभाग आवंटित कर दिए हैं। 10 मई को हुए उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभागों का आवंटन किया गया है। इस फेरबदल में 2 कैबिनेट मंत्रियों और 4 राज्य मंत्रियों को सरकार में शामिल किया गया, जबकि 2 राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री के पद पर पदोन्नत किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 दिवसीय दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री शाह रायपुर और बस्तर में कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सुबह रायपुर में आपातकालीन सेवा डायल 112 के तहत नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वे बस्तर जाएंगे और जिले के नेतानार गांव में जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। इस केंद्र से दूरस्थ इलाकों में रहने वाले लोगों को शासकीय और डिजिटल सेवाएं आसानी से मिल सकेंगी। इसके बाद श्री शाह जगदलपुर पहुंचकर अमर वाटिका में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। शाम को वे बस्तर के संग लोक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के नक्सल मुक्त होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री का यह राज्य का पहला दौरा है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम तट पर पहुंचने की संभावना है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दक्षिण पूर्व अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और अंडमान सागर में अगले 2 से 3 दिन तक मानसून के आगे बढ़ने के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं।
6: मौसम विभाग ने अनुमान व्यक्त किया है कि आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिल

0: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना के पहले चरण मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल V.A. वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे नंबर हैं 0112331 0481 और 0112371 71। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जांच अब महाराष्ट्र के लातूर से नांदेड़ तक पहुंच गई है। एक अभिभावक पर अपनी बेटी के लिए प्रश्न पत्र 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर जांच के लिए पुणे कार्यालय में बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की CBI हिरासत में भेज दिया। एजेंसी के अनुसार मंधारे नीट जीव विज्ञान परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में मुख्य षड्यंत्रकारी हैं। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। मध्य प्रदेश के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलूट स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी के एक यात्री डिब्बे, सामान रखने वाले डिब्बे और जनरेटर वाले डिब्बे में आग लग गई थी। समिति घटना के कारणों, तकनीकी पहलुओं और सुरक्षा मानकों की विस्तृत जांच करेगी, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मैच दोनों टीम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। प्रतियोगिता में कल दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। इससे पहले रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में जगह बनाई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने HD देवेगौड़ा को सही मायने में धरती का सपूत बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद विशाल। भारत और नीदरलैंड्स का द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक ले जाने का निर्णय आज के सभी अखबारों की पहली खबर है। अमर उजाला की सुर्खी है, रक्षा, खनिज और AI में मिलकर काम करेंगे भारत नीदरलैंड्स, 17 समझौते हुए, 5 साल का रोड मैप तैयार। हॉर्मुज जलमार्ग में जहाजों पर हमले और आवागमन को रोकना मंजूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि का बयान जनसत्ता में है। सुरक्षित आवागमन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान किया जाना चाहिए। भारत को मिलने लगा निर्यात विविधता का लाभ, नए बाजार तलाशने की कवायद का दिखा नतीजा, अप्रैल में भी निर्यात 13% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार वैश्विक व्यापार में रुकावटों के बावजूद एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को निर्यात में हुई मजबूत वृद्धि। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं के नतीजों पर छात्रों के विरोध के बाद बोर्ड के पुनर्मूल्यांकन फीस में बड़ी कटौती के फैसले को दैनिक भास्कर ने प्रमुखता दी है। बोर्ड ने कहा, दोबारा कॉपी जंचवाने में एक नंबर भी बढ़ा तो पूरी फीस लौटाई जाएगी। NDA सरकारों पर लोगों का भरोसा, गृह मंत्री का ये बयान हिंदुस्तान में है। गुजरात के दौरे पर गए गृह मंत्री ने हाल के विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत पर कहा, भाजपा और NDA की सरकारें आज देश के 80% भूभाग पर शासन कर रही है। दिल्ली में महिलाओं को मिलेगा 10 करोड़ का कर्ज, नहीं देनी होगी कोई गारंटी। पंजाब केसरी के अनुसार दिल्ली सरकार राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों को बिना गारंटी देगी ऋण। तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर परिवारों को आर्थिक प्रोत्साहन देने की आंध्र प्रदेश सरकार की घोषणा पर नव भारत टाइम्स संपादकीय में लिखा है, ऐसे प्रयोग दूसरी जगहों पर भी हुए लेकिन खास सफल नहीं रहे। दक्षिण भारत के राज्यों ने बहुत मेहनत से जनसंख्या नीति लागू की थी, शिक्षा और जागरूकता पर बाकी राज्यों के मुकाबले अधिक खर्च किया गया, यही कारण कारण है कि आज दक्षिण के राज्य आगे खड़े दिखते हैं। पत्र लिखता है, आबादी को बढ़ाने की नाकाम कोशिशों के बजाय मौजूदा कार्य बल के बेहतर इस्तेमाल पर ध्यान देने होंगे।
0: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत की।

0: Sweden decide to elevate their bilateral ties to strategic partnership. Prime Minister Modi invites Swedish companies to enhance their presence in India under Make in India National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission initiatives. Congress leader V.D. Satheeshan to be sworn in as Chief Minister of Keralam today. Southwest monsoon likely to hit Keralam coast on 26th of this month, 6 days ahead of its normal date. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Rajasthan Royals by 5 wickets in Delhi. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन कोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपनी दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी.डी. सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जुनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कल रात गोटनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। वो इस मुल्क के 2 रोज़ा दौरे पर कल गोटनबर्ग पहुंचे थे। जनाब मोदी को स्वीडन के आला तरीन एजाज़ रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से नवाजा गया। उन्हें ये एजाज़ दोतरफा ताल्लुकात में उनके गैर मामूली तआवुन और उनकी दूरंदेश क़यादत को तस्लीम करते हुए दिया गया है। ये अवार्ड आला तरीन इम्तियाज़ है जो किसी सरबराह हुकूमत को दिया जाता है। ये वज़ीर-ए-आज़म मोदी का 31वां बैनुल अक़वामी एजाज़ है। वफ्द की सतह की बातचीत में दोनों रहनुमाओं ने भारत स्वीडन ताल्लुकात के पूरे मंजरनामे का जायज़ा लिया और दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने से इत्तेफाक़ किया, जो इन ताल्लुकात में एक बड़ी पेशरफ्त है। उन्होंने तिजारत और सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा, माहौल के लिए साजगार राहदारी, खला, उभरती हुई टेक्नोलॉजी, दिफा और सलामती, SMEs, रसाई और अवाम से अवाम के रिश्तों के मैदानों में गहरे तआवुन के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: इस दौरे का असल मकसद 2026 से 2030 तक के लिए एक मुश्तरका एक्शन प्लान इख्तियार करना है, ताकि दो तरफा इक्तसादी तबादलों को अगले 5 साल में 2 गुना किया जा सके। भारत स्वीडन मजबूत तर अंदाज में यकजा 2047 की जानिब मौजू के तहत दोनों मुल्कों ने 2027 में दो तरफा तिजारत और सरमायाकारी समिट मुनाकिद करने का आज़म किया। स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने मेक इन इंडिया और मेड विथ स्वीडन, खासतौर पर माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन और अहम मादनियात के मिशनों में मजीद सरमायाकारी को मदऊ किया। अब इस शराकतदारी को सेमीकंडक्टर्स, जदीद तरीन मैन्युफैक्चरिंग और मुस्तहकम सप्लाई चेन तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद भारत को स्वीडन की तरफ से हिमायत दिए जाने पर खासतौर पर शुक्रिया अदा किया, जो आलमी इस्तेहकाम के तई एक मुश्तरका अज़्म का इयादा है। गोटेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मदऊ किया है कि वो मेक इन इंडिया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन जैसी पहल के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। गोटेनबर्ग में स्वीडन के सीईओज के साथ बातचीत के दौरान जनाब मोदी ने स्वीडन की कंपनियों से जोर देकर कहा कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मिशन, साफ सुथरी तवानाई और दीगर शोबों में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। इस बात पर जोर देते हुए कि भारत और स्वीडन के दरमियान जमहूरियत, शफाफियत, इख्तिरा और पायदारी की मुश्तरका अकदार मौजूद हैं, जनाब मोदी ने स्वीडन की ताकत को इख्तिरा और पायदारी के मैदान में भारत की तरक्की, सलाहियत और नशोनुमा की रफ्तार के मुताबिक बनाने को कहा।
3: वोडाफोन, एरिक्सन, नोकिया, ओरेंज जैसी कंपनियों का भारत में विशाल अनुभव।

0: भारत 5G से 6G ट्रांजिशन, AI एनेबल्ड नेटवर्क्स, सिक्योर कनेक्टिविटी और डिजिटल इंक्लूजन में बड़ा पार्टनर बन सकता है।
1: वजारत खारजा ने कहा है कि स्वीडन में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने भारत में काफी दिलचस्पी जाहिर की है और पिछले कुछ बरसों में पायदार इक्तसादी इस्लाहात के जरिए मुल्क में यकसर तब्दीली की सताइश की है। यूरोपी गोल में सनती मीटिंग के बाद नामनिगारों से खिताब करते हुए वजारत खारजा में मगरबी उमूर के सेक्रेटरी CB जॉर्ज ने बताया कि CEOs और कारोबारी रहनुमाओं ने हालिया बरसों के दौरान भारत में देखी गई काबिल जिक्र तब्दीलियों को उजागर किया। जनाब जॉर्ज ने मजीद कहा कि वजीर आजम मोदी और स्वीडन के वजीर आजम उल्फ क्रिस्टरसन ने रविन्द्रनाथ टैगोर की मुश्तरका सकाफती विरासत के जश्न के तौर पर खसूसी तोहफों का तबादला किया। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के चौथे मरहले में तीसरी भारत नॉर्डिक समिट और दोतरफा सरगर्मियों के लिए आज नॉर्वे पहुंचेंगे। ये वजीर आजम मोदी का नॉर्वे का पहला दौरा तो है ही, अलबत्ता पिछले 43 साल में भारत के किसी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा भी है। जनाब किंग हेराल्ड 5 और जनाब मोदी किंग हेराल्ड 5 और क्वीन सोंजा से मुलाकात करेंगे और वजीर आजम जोनास गहर स्टोर के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। जनाब मोदी नॉर्वे के वजीर आजम के साथ साथ भारत नॉर्वे तिजारत और तहकीक की सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। कांग्रेस रहनुमा VD सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। केरलम के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर उन्हें तिरुवनंतपुरम में एक तकरीब में आज सुबह 10 बजे ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। नामजद वजीर आला ने कल शाम UDF की 21 रुकनी काबीना का ऐलान किया था। तफसील हमारे नमा निगार से।
2: कांग्रेस की क्यादत वाली UDF वजारती काबीना को आज केरलम में 10 साल के वक्फे के बाद हलफ दिलाया जा रहा है। वजीर आला और 20 वजीर तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में मुनक़द एक तकरीब में हलफ लेंगे। वजीर आला VD सतीशन समेत नई वजारती काबीना के 16 अरकान पहली बार वजीर का ओहदा संभालेंगे। UDF कारकुन हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए बड़ी तादाद में कल दोपहर से ही रियासत की राजधानी पहुँच रहे हैं। उम्मीद है कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के वज़ीरे आला सुबुकदोष वजीर आला पिनराई विजयन और BJP के रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर इस तकरीब में शिरकत करेंगे। तिरुवनंतपुरम से स्मृति M पल्लुरुति की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
1: यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह छत्तीसगढ़ के 2 रोज़ा दौरे पर कल शाम रायपुर पहुंचे। रियासत के अपने दौरे में जनाब शाह रायपुर और बस्तर में कई प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह अपने छत्तीसगढ़ दौरे के पहले दिन आज सुबह रायपुर में हंगामी खिदमात डायल 112 के तहत नई गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इसके बाद वो बस्तर के लिए रवाना होंगे, जहां जिले के नेतानार गांव में अवामी सहूलत मरकज के इफ्तिताह करेंगे। इस मरकज का मकसद दूर दराज के इलाकों में रिहाइश पजीर लोगों की हुकूमत और डिजिटल खिदमात तक रसाई को आसान बनाना है। इसके बाद जनाब शाह जगदलपुर पहुंचेंगे और अमर वाटिका पर शहीदों को खराज अकीदत पेश करेंगे। जनाब शाह का जगदलपुर की बादल एकेडमी में दोपहर में शहीदों के अफराद खानदान, हिफाजती अहलकारों, माओनवाजों के तशद्दुद से मुतासर अफराद और मुख्तलिफ मकामी बिरादरियों के नुमाइंदों से मुलाकात का भी प्रोग्राम है। वजीर दाखिला शाम को लोक सकाफती प्रोग्राम बस्तर के संग में मौजूद रहेंगे। मरकजी वजीर दाखिला कल 19 मई को जगदलपुर में वस्ती जोनल काउंसिल की 26वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के वज़ीरे आला शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ को माओनवाजों से पाक करार दिए जाने के बाद जनाब शाह का रियासत का ये पहला दौरा है। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फैसल खान।
1: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड अदा करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़द होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतालिक तकरीब के दौरान सिविल इन्वेस्टिचर तकरीब में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड्स अदा करेंगी। इस साल भारत सरकार ने मजमूई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वीं

0: अपनी सेहत असेंबली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए। ये 6 रोज़ा तकरीब आज से जिनेवा में शुरू होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब नड्डा ने कहा कि ये असेंबली 165 मुल्कों के वज़राए सेहत, मुअज़्ज़ज़ अफराद और अवामी सेहत माहरीन को यकजा करेगी, जहां मुस्तहकम ज़्यादा शमूलियाती और लचकदार सेहत देखभाल निज़ाम के तई मुश्तरका आलमी अज़्म की यकीन दहानी कराई जाएगी। मगरिब वस्ती रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल आग लगने के वाक़े की जांच के लिए आला इंतजामी ग्रेड सतह की इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी है। आग लगने का वाक़या ट्रेन के एक मुसाफिर कोच और एक लगेज ब्रेक और जनरेटर कार में उस वक्त पेश आया जब ट्रेन मध्य प्रदेश के लूनी रिचा और विक्रमगढ़ अलौत स्टेशनों के दरमियान थी। भारत ने मुत्तहिदा अरब अमारात के बारख न्यूक्लियाई मरकज को निशाना बनाकर किए गए हमले पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। एक बयान में वजारत खारजा ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं और कशीदगी के ख़तरनाक फैलाव की नुमाइंदगी करती हैं। नई दिल्ली ने सब्र व तहम्मुल की अपील करते हुए बातचीत और सफारतकारी की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया है। इससे पहले कल मुत्तहिदा अरब अमारात के अज़दफ़रा के बारख न्यूक्लियाई मरकज के अहाते में ड्रोन हमला किया गया, जिससे मरकज की अंदरूनी हदूद के बाहर इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई। भारत के महकमा मौसमियात ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के 1 जून की मुकर्रर तारीख से 6 दिन पहले 26 मई को केरलम पे आ जाने का इम्कान है। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि जुनूब मगरबी मानसून की अगले 2 से 3 दिन के दौरान जुनूब मशरकी बहरे अरब, खलीज बंगाल, अंडमान जजायर और अंडमान समंदर के हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए मौसमी हालात साजगार हैं। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अंडमान और निकोबार जजायर, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे में आज शदीद बारिश हो सकती है। महकमे मौसमियात ने मजीद कहा कि लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में भी इसी तरह के मौसमी हालात रह सकते हैं। महकमे मौसमियात ने मगरबी उत्तर प्रदेश में आज गर्मी की शदीद लू चलने की पेशगोई की है। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में कल शाम खेले गए इस दिलचस्प मैच में जीत के जरिए दिल्ली कैपिटल्स ने प्लेऑफ की अपनी उम्मीदें बरकरार रखी हैं। इससे पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान रॉयल्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेट के नुकसान पर 193 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 194 रन के निशाने के लिए खेलते हुए 19 ओवर्स और 2 गेंदों में 197 रन बनाए। इस जीत के साथ दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल पॉइंट्स टेबल में 8वें मकाम से 7वें मकाम पर पहुंच गई है और प्लेऑफ की दौड़ में शामिल है। एक दीगर मैच में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। पहले बल्लेबाजी करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर शानदार 222 रन बनाए। जवाब में 223 रन के लिए खेलते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रर ओवर्स में 8 विकेट खोकर 198 रन ही बना सकी। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फैसल खान।
2: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाली आज की तकरीबन सभी उर्दू अखबार ने वजीर आजम के नीदरलैंड दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, भारत और नीदरलैंड्स के दरमियान दो तरफा तालुकात को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक हुआ। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के स्वीडन पहुंचने पर उन्हें आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। रोजनामा प्रताप ने जजों की तादाद बढ़ाने की खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है, सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजों की तादाद 34 से बढ़ाकर 38 करने की मरकजी काबीना के फैसले को मंजूरी दे दी है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दाखिला अमित शाह के गुजरात दौरे की खबर को सुर्खी बनाया है। अमित शाह ने कहा कि गुजरात टेक्नोलॉजी के मैदान में भी मुल्क की क्यादत करेगा। अखबारात की कुछ अहम खबरें, बेंगलुरु मुंबई वंदे भारत स्लीपर सर्विस जल्द शुरू होगी, अश्विनी वैष्णव का बयान। अमरीका से चीन 200 से ज्यादा तैयारी खरीदेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के जौहरी पावर प्लांट पर ड्रोन हमला। ईरान ने अब नए हुरमुज से गुजरने वाले बहरी जहाजों के लिए टोल लगाने का मंसूबा बनाया।
0: और आखिर में खास खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टरसन गोटनबर्ग से दोतरफा बातचीत की। भारत और स्वीडन ने अपने दोतरफा ताल्लुकात को दिफाई शराकत दारी तक ले जाने का फैसला किया। वज़ीर-ए-आज़म ने स्वीडन की कंपनियों को मदद किया है कि वो मेक इन इंडिया, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के कौमी मिशन और अहम मादनियात के कौमी मिशन इकदाम के तहत भारत में अपनी सरमायाकारी में इजाफा करें। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतीशन को आज केरलम के वजीर आला के ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा। इम्कान है कि जनूब मगरबी मानसून इस महीने की 26 तारीख को केरलम के साहिल पर पहुंच जाएगा, जो मामूल की तारीख से 6 दिन पहले है। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से शिकस्त दी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
3: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 8:45 हुए हैं, आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत स्वर गंगा के कार्यक्रम में अर्चना सिंह का गाया राग तोड़ी। आपके साथ तबले पर संगत दे रहे हैं जितेंद्र स्वैन और सारंगी पर हैं शाहनवाज खान।

और इसी के साथ ये स्वर गंगा कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम आवर गेस्ट।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में अभी आप सुन रहे थे अर्चना सिंह से राग तोड़ी, तबले पर संगत कर रहे थे जितेंद्र स्वाइन, सारंगी पर शाहनवाज खान।

0: यही बोलते थे यार।
1: ना, समबॉडी इज जंकी, समबॉडी इज
0: यस
1: ट्रेजर। बट एज यू सेड दैट यू वेन एवर यू रोम्ड ऑन द असाइनमेंट्स द लेंथ ऑफ ब्रेथ ऑफ कंट्री एंड ओवरसीज ऑल्सो एंड यू ट्राई टू रीच आउट टू दोज पीपल। नाउ हाउ डिड दिस आइडिया केम टू यू दैट आई नीड टू कलेक्ट समथिंग लाइक कैमराज और थिंग्स रिलेटेड टू फोटोग्राफी?
0: इट वॉज प्योरली ड्रिवन बाय एन आइडिया ऑफ यार ये चीज को जरा खोल के देखूं ये कैसे चलती है। दैट क्यूरियोसिटी ऑफ रे दीज आर फैंटास्टिक इमेजेस ऑफ दैट प्लेस इन दैट सी 1880s दिस इज व्हाट दैट प्लेस लुक लाइक रे इट्स बीइंग थ्रोन लेट्स बाय देम सो आई कांट लेट एनीथिंग गो इफ आई सी एनी वैल्यू इन इट एंड इट इंटरेस्ट मी एंड आई वाज वन व्हाइल वर्किंग ऑन दीज असाइनमेंट्स वन हैड सम रिसोर्सेस एंड सम एक्स्ट्रा फंड्स टू बी indulging not too much but just enough and I'm glad I did it those days because today I will not be able to touch any of those things.
1: I understand you must be having a Midas touch and you actually converted all those kind of kabadi wala things into very nice artifacts but when you were collecting it most of the times even your family doesn't support you that why are you bringing all this garbage into your home.
0: Wo kuch nahi sir ek bar mere ko ek officer mile एयरपोर्ट पे यार ये क्या तुम कबाड़ लेकर के आते हो हमारे देश में तो ऐसे सर ये कबाड़ नहीं है लेट्स गेट दिस राइट नाउ बिकॉज आई एम वेरी अपसेट विद द वर्ड विद यू यूज्ड इसे आपका बैग खोला उसमें से 10 सड़े हुए कैमरे निकले हैं टूटे हुए तो मैंने कहा चलिए आई वेंट टू द कमिश्नर ऐसे सर इन्होंने मुझे बोला है कि ये कबाड़ है तो कमिश्नर लुक्ड एट इट एंड लुक्ड एट दैट मैन एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग टू मी अच्छा ये कब बना था ये कैसे हुआ था हाँ टूट गया मैंने कहा सर मैं इसको ठीक कर लूंगा ये मुझे एक अद्भुत चीज लगती है। ही टोल्ड दैट मैन लेट्स नॉट कॉल इट कबाड़ इन्होंने वैल्यू डिक्लेयर किया है प्लीज चार्ज हिम एंड दैट्स इट एज यू सेड somebody is कबाड़ एंड somebody is एंड आई सेड सर आई सी समथिंग इन दिस
1: So, I mean, your family, were they supportive that you are bringing all those things? Because when the studio came much later, you said you had the content and you the idea of making a museum was in 2017. Till 2017, you must be having a mountain of all those things with you. How were you keeping them? How were you preserving them? And were you actually allowed in the family?
0: I was very lucky. Parents lived in University, St. Stephen's College. There was a big house. One room could be converted into my store. Then later on, when I made the house in Gurgaon, I made a place for storage. In the neighborhood, many people came forward and said, "Yar, hamara bhi ek basement khali pada hua hai. Tumhe use karna hai? Kar lo." Oh, so I had neighboring basements, jisme sara kabad bhara rehta tha mera. जब म्यूजियम बना तो मैंने सारे खाली किए
1: सो इट वॉज नॉट क्राउड फंडिंग फॉर द म्यूजियम बट इट वॉज लाइक बेसमेंट फंडिंग ऑल्सो फॉर यूर कबाड़
0: स्टोरेज
1: स्टोरेज लेट्स डेल्व डीप इन टू यूर म्यूजियम नाउ वट काइंड ऑफ थिंग्स आर एट डिस्प्ले एंड विच इज द रेयरेस्ट वन वट इज आई मीन आई नो दैट एवरी थिंग मस्ट बी वेरी नियर टू यूर हार्ट बट वट एग्जैक्टली इज समथिंग दैट यू शो विद अ प्राइड दैट दिस इज समथिंग विच आई पोजेस नो बॉडी एल्स इज हैविंग इन द वर्ल्ड
0: So let's start with the word museum, जिसको पुराने जमाने में लोग बोलते थे अजायब अजीबो गरीब चीजें रखते थे लोग वहां पे दो सिर पैर वाले सांप या कोई अजीब गरीब चीज बट इन टूडेज टर्मिनोलॉजी वॉट इज म्यूजियम समथिंग विच शो केसेस थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड बाय कॉन्टेक्चुअलाइजिंग इट इन द प्रेजेंट सिनेरियो What does it do to some Gen Z who's walking in? It triggers a thought in somebody's mind कि यार वो ये ऐसे होता था ये आज के जमाने में ऐसे होता है oh so it also shows you way forward into future so it is a process of triggering curiosity ideas and kindling some kind of brainwave in The youngsters, एक बहुत बड़ा कैमरा है मेरे पास वो कुछ 300-400 किलो का है
1: so, 400 किलो
0: मतलब उसमें पहिए वहिए और खूब लकड़ और ये वो इट वॉज कॉल्ड अ प्रोसेस कैमरा
1: इट्स अ स्टिल कैमरा
0: हाँ और उसकी जो एक पिक्चर होती है वो A3 से भी बड़ी,
1: कट नेगेटिव, वन नेगेटिव
0: ग्लास प्लेट्स,
1: इट्स स्टिल इन वर्किंग कंडीशन।
0: हाँ, वो रेल्स पे चलता है, उसको तीन जने आगे पीछे करते थे। एक बच्चा आया मेरे,

0: सर ये किस जमाने का? मैंने कहा यार ये अर्ली सेंचुरी। सर ये आदमी क्या कुछ जायंट होते थे? मैंने कहा क्यों? कहते सर इससे सेल्फी कैसे लेंगे? देखो अब उस बच्चे का दिमाग और कहीं नहीं गया, वो कोई भी चीज देखते हैं तो पहले सोचते हैं सर इससे सेल्फी कैसे ली जाएगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो उस कैमरे से एक पिक्चर लेने में 1 घंटा लगता है और आधा घंटा लगता है, लेकिन उसका दिमाग तो सिर्फ वही चल रहा था।
1: सो दैट्स हाउ दे विल रिलेट के अभी पहले क्या था और अब कैसे, हाउ फार वी हैव कम. एंड यू सेड दैट यू हैव ओवर 8,000 कैमराज.
0: ऑब्जेक्ट्स,
1: जी
0: कैमराज, आई मैनी थाउजेंड्स ऑफ पेटेंट्स एंड स्टोरीज ऑफ ईच कैमराज। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड कि ये चीज का आविष्कार कैसे हुआ, किसने पेटेंट किया, इसके अंदर क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन कैसे देख सकते हैं, तो सब तरह की चीजें हैं।
1: When you got into photography, you were very interested and curious in the cameras also, and you brought them all.
0: So I did history. Let's get that right. History became a photographer. So history of my profession became my obsession.
1: Now you are also kind of somebody who is very treasured. What kind of a response this particular museum? What kind of a response it generated? I understand that even Pradhan Mantri Shri Modi ji himself in one of his Mann Ki Baat made a reference to this particular museum. Can you tell us
0: He
1: about
0: said
1: that story?
0: बहुत ही अद्भुत म्यूजियम है। एंड ही मेट मी एंड ही सेड ये कैसे बनाया आपने? मैंने कहा सर सरकार के साथ मिलकर। ऐसा भी होता है।
1: Did he visit that studio?
0: No, we had done a mock-up slightly larger than in Pragati Maidan in that big international museum expo, and he came to meet me and we had a long chat and then He sent his team and then he said, बहुत ही अद्भुत है, मैं चाहूंगा लोग देखें ऐसे म्यूजियम को।
1: And that is why he brought this into Mann
0: मन
1: Ki
0: की
1: Baat
0: बात
1: also. That's absolutely great. Now, and how was the response after that Mann Ki Baat episode?
0: हजारों लोग कनेक्ट करते हैं देश विदेश से। देखिए 7 साल हो गए और खुलने के 6 महीने के बाद कोविड हो गया। 6 महीने, 1 साल लगा, फिर वो दूसरा कोविड आ गया। तो बिकॉज इट्स अ पब्लिक प्लेस, पीपल वर वेरी स्केर्ड, बट इट इज अगेन बैक टू, जैसे आज सुबह 100-200 बच्चे थे एक इंस्टीट्यूट के जो मैसकॉम एंड जर्नलिज्म सीख रहे हैं। सो उनके लिए ये हिस्ट्री ऑफ फोटोग्राफी कि कैसे स्टार्ट हुआ था सब कुछ, और ये हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है सर। हम 2026 में हैं, पहली पिक्चर 1827 में ली। वी आर एंटरिंग द 200th ईयर ऑफ फोटोग्राफी। 2027 विल बी बाइसेंटिनल ऑफ फोटोग्राफी। मतलब एक ऐसा आविष्कार जो 200 साल में एक पिक्चर लेने में पहले 2 घंटा, आधा घंटा, कुछ मिनट, अब आप कुछ माइक्रोसेकेंड में 1,000 पिक्चर्स ले सकते हैं। हाउ द एवोल्यूशन हैज बीन एंड वी हैव ऑल दीज कैमराज टू शो यू एंड टेक यू थ्रू दिस होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन।
1: Well, I know that the kind of passion that you have for photography and for the cameras, we can talk for ages. Anything that you would like to address to and let our listeners know that what are the kind of problems that you face and what do you foresee the future?
0: So I don't say problems. I believe in problem solving. If you have an idea, leave a legacy behind. Do something unique. And this museum was created in collaboration with the Haryana Sarkar, Haryana government, with Municipal Corporation of Gurugram. When they asked me, ये आप यहाँ पे लोगों को आके देखने देंगे? मैंने कहा सर क्यों, मैं अपने साथ ये सब चीजें नहीं लेके जाने वाला हूँ, मैंने इकट्ठी की हैं तो मैं यहाँ छोड़ के जाऊंगा। सो आई कैन से दैट एवरीबडी इज इन अ स्टेट पोजिशन टू लीव अ लेगेसी बिहाइंड। आई वॉन्ट टू आस्क यू, वॉट आर यू गोइंग टू लीव बिहाइंड?
1: Great. Aditya Arya ji, it was so very nice to host you in today's program. And friends, I would just like to let you know that apart from having this museo camera, the camera museum in Gurgaon, Aditya ji has got various shades, various facets of his own personality. And I'm sure we are going to bring that to you in subsequent programs because he has worked with very fine directors and he has been photographer for some very inspiring movies. Aditya ji, I think in some other time, on some other date, we'll talk about that also. Thank you so very much for sparing your time.
0: Thank you.
1: Thank you.
2: You were listening to the weekly program Our Guest that is broadcast every Monday at 9:15 a.m. Don't forget to tune in next week, same day, same time and same frequency for more on Our Guest. Have a nice day.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को जन्मदिन की बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि HD देवेगौड़ा ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान देश के लिए बेहतरीन योगदान दिया है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने HD देवेगौड़ा को धरती का सपूत बताया। श्री शाह ने कहा कि किसानों और ग्रामीण भारत के लिए उनके आजीवन समर्पण ने देश पर अमिट छाप छोड़ी है। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांग शान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम आपकी पसंद।

और मैसेजेस पढ़ेंगे आपके, और आपके पसंद के गीत भी सुनवाएंगे। बहुत ही प्यारा प्रोग्राम लगता है मुझे भी, और एक मौका होता है आपसे मिलने का, आपकी बात जानने का। तो दोस्त बता दूं, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शोभा शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार, और स्वागत है आप सभी का हमारे इस कार्यक्रम में। आपकी पसंद के गीत बिल्कुल सुनवाए जाएंगे, और आपके मैसेजेस तो बिल्कुल लेने ही हैं हमने, पर हमारे जो नए श्रोता हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और अगर मेल करना चाहते हैं मैसेज, तो उन्हें हम अपना ईमेल आईडी भी बता दें अभी शुरुआत में ही, ताकि हमें उनके मैसेजेस भी आ जाएं। तो हमारा ईमेल आईडी है iprradiodelhi@gmail.com। तो एक बार फिर दोहरा दें, iprradiodelhi@gmail.com। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, सोच रहे हूँ कि आपके पसंद के गीत तो सुनवाते हैं, कुछ अपने पसंद का भी एक प्यारा सा गीत सुनवा दें, शायद आपको भी बहुत पसंद आएगा, और उसके बाद मैसेजेस लेकर आपकी पसंद बिल्कुल शामिल रहेगी। तो सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अरिजीत सिंह की आवाज़ में।

बहुत ही प्यारा गीत हमारे देश के सैनिकों को समर्पित। ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कुछ कुछ परिवेश मेरा भी वैसा ही रहा है, जहाँ पे जब भी मैं ये गीत सुनती हूँ तो मुझे कुछ यादें बिल्कुल आ जाती हैं जहन में। चलिए, ये तो बात मेरी हुई पर आपकी बात तो ज़रूर होनी चाहिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपने भी फरमाइश में भेजे और बहुत से संदेश आ चुके हैं, तो उन्हें हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमें ये संदेश आया है, ये बता दें आपको, आया है छत्तीसगढ़ से, है पहांदा पलारी से, नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशान देवांगन, लखनलाल देवांगन और सावित्री बाई देवांगन का। ये लिखते हैं ये कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगता है। तो दोस्त बहुत बहुत शुक्रिया, ये कार्यक्रम हमें भी बहुत अच्छा लगता है और बाकी कार्यक्रम भी अच्छे लगते हैं, पर इसमें आपसे भी मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये हमें आया है, ये है अनारकली बाज़ार जगराव से, है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, काव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। और हमारे पास ये संदेश हमें आया है गांव नधाना पंजाब से, है हरजिंदर सिंह, हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। और हमारे साथ जुड़े हैं पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और इनके साथ कैथल हरियाणा से है मधु नायक जी। और अगला संदेश हमें आया है नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से, है नुसरत जहानाज, तलत जहानाज, फरत जहानाज, रिफत जहानाज, नुजहत जहानाज, साजिया शाहीन नाज और नाजिया नूरी नाज। और लिख रहे हैं कि हम बहनों को प्रोग्राम में शामिल करें। तो दोस्त आप भी शामिल हुए हैं, जैसे जैसे संदेश आते रहते हैं हम लेते रहते हैं। ये अगला संदेश हमें आया धमधमा ग्राम सुखरी कला से, अमित झंगेल, सुकून झंगेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य झंगेल और अंजलि झंगेल का। और हमारे साथ जुड़े हैं जय जिनेन्द्र श्रोता संघ परभनी महाराष्ट्र से, रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, ब्रितेश संघई और उनका पूरा संघई परिवार। और ये संदेश हमें आया है बेताब रेडियो लिसनर्स क्लब पटना बिहार से, वसीम अकरम, सालेहा खातून और गुड़िया खातून का, इनके साथ डोंडी लोहारा छत्तीसगढ़ से प्रभा रानी जयपुरिया भी हैं। और अगला जो संदेश आया है वो हमें आया है संबलपुर कांकेर से, फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव का। तो चलिए आप सबकी फरमाइश पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

प्यारा सा गीत आप सबको भी उम्मीद करती हूँ बहुत पसंद आया होगा। आपकी पसंद बाकी लाजवाब है श्रोताओं, और ये आप ही की पसंद का गीत था। चलिए अगले श्रोता हैं, उन्हें भी हम ले लेते हैं जल्दी जल्दी। ये आए हैं हमारे साथ, मेल जुड़े हैं हमारे साथ, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मण देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये लिखते हैं माई रेडियो माई लाइफ। वाओ, बहुत अच्छी बात कही अपने दोस्त, दिल को छू गई। और अगला जो संदेश है वो आया है फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से, नासिर शेख, नाजिया नासिर, साजिद शाहिद, गोविंदपुरा अहमदनगर से जुड़े हैं हमारे साथ जुनेद मुजावर, सबिया मुजावर, मिखाइल मुजावर, जनेब मुजावर। और ये अगला संदेश हमें आया है लक्षनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू और तिरुपति साहू का। और हमारे साथ जुड़े हैं पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। और हमारे साथ ये जुड़े हैं दतरंगी भाटापारे छत्तीसगढ़ से, हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा। इन्होंने भी बहुत ही प्यारे गीत की फरमाइश की। जी हाँ, बिल्कुल गीत तैयार है। और चमन पार्क दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा भी हमारे साथ जुड़े हैं। और अगला संदेश आया है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी का, दादा बाबू रोड गिड्ढी झारखंड से हमारे साथ जुड़े हैं मोहम्मद यासीन, अनजान अनजान, साइमा नवाज़, हसन नवाज़, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज़, बेबी चाहत और सादिया। और सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, डॉक्टर अमनदीप, और इनके साथ हैं कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और अगला जो संदेश है वो हमें चंडीगढ़ सिटी से आया है सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, और ये लिखते हैं प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करते हैं दोस्त, आपका भी बहुत स्वागत है। मोहब्बत और दोस्ती खुदा के दो बेहतरीन तोहफे हैं जो आपको दिए गए हैं, इन्हें खुदगर्ज लोगों पे बर्बाद मत करना। वाकई बहुत ही प्यारी बात की है, क्योंकि बहुत ही बड़ा तोहफा होता है मोहब्बत और दोस्ती भी, क्योंकि दोस्ती भी अच्छी कहीं कहीं नहीं मिल पाती, और वाकई में ये लाजवाब होती है और ये जीने की एक नई राह दिखाती है, और कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं तो दोस्त ही हमें संभाल पाते हैं। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया है गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम सतौर, रितु सिंह का। ये लिखते हैं कि इन्हें कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है और कोई भी गीत सुनवा दीजिए, और धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और अगला संदेश हमें आया है बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया का, और ये हमारे साथ जुड़े हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशनलाल देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन।

0: अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत, और बहुत सारे संदेश आपके इंतज़ार में हैं। जी हाँ, बिल्कुल उन्हें हम ले लेते हैं। अगला जो संदेश आया है वो आया है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और भूमिका अरोड़ा का। और अगला संदेश ले लेते हैं, यह आया है मजनू का टीला से, दिल्ली से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से जुड़े हैं इनके साथ उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। और जो अगला संदेश है वो हमें आया है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन और इनके साथ हैं चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु रिधान खुराना। और लिख रहे हैं कि हम भी कनेक्ट हो गए हैं जी। तो दोस्त, हम भी तो आपके साथ कनेक्टेड हैं और आपके संदेश को भी हमने ले लिया है। अगला संदेश हमें आया बड़िंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। और अगला संदेश हमें आया है ये है हमारे साथ जुड़े कबीर, रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से है, देवशंकर तामोरिया, अजय देव तामोरिया, तुषार देव तामोरिया, टॉली बेबी, पूजा तामोरिया, राधिका और प्रभा देवी तामोरिया और साथ में है मास्टर अल कबीर। और इनके साथ जुड़े हैं किकीर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से, संतोष शर्मा, रुक्मणी शर्मा। और अगला जो संदेश हमें आया है वो है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से हैं पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर, उनके साथ हैं मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मोहरकर। और भी बहुत से संदेश हमारे अभी रह रहे हैं, तो दो तीन संदेश और लेते हैं और आप सबकी पसंद पे बहुत प्यारा सा गीत भी इंतज़ार में। तो चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, यह है वाइट फील्ड बेंगलुरु से है भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिवेंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। और ये हमें संदेश आया श्रोता रघुवीर नगर से, दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। ये लिखते हैं रिश्ते बने रहना इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, एक दूसरे को दिल से याद करते रहे इतना ही बहुत है। जी हाँ, थोड़ी सी भी कोशिश बहुत बड़ी कोशिश होती है क्योंकि वक्त निकालना पड़ता है हर चीज़ के लिए। चलिए आप सबकी पसंद पर अब सुनते हैं ये प्यारा सा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।
1: ठीक है ठीक है, जाओ, माफ किया।
2: थैंक यू, बोलो अंकल को। चलो धीरे धीरे
1: सुनो सुनो, अगर तुम लोगों को घंटे भर के लिए छत पे खेलने दिया तो शोर तो नहीं मचाओगे?
2: नहीं।

और आप सुन रहे कार्यक्रम आपकी पसंद, और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी दोस्त शोभा शर्मा। तो एक बार फिर से स्वागत है, और संदेशों को बिल्कुल ले लेते हैं हम। ये संदेश हमें आया उत्तम नगर दिल्ली से है, बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश जी का। और

अगला जो संदेश हमें आया है, जी हाँ, बहुत रिपीटेड संदेश आते हैं तो हमें आगे आगे बढ़ाना पड़ता है। ये संदेश हमें आया है चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा का, और अगला हमारे साथ जुड़े हैं ये पांडर कवड़ा से श्री अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे और धनश्री बुरांडे, और हमारे साथ जुड़े हैं, जी हाँ, संदेशों का जो सिलसिला है ना वो हम लेते रहें पर क्या कहें, संदेश है ना, एक साथ यूँ कहें 8-10 संदेश एक साथ एक ही श्रोता के द्वारा दिए जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम उनका लें और आपका ना लें, बस आप ही आपका संदेश लें। तो फिर अगले संदेश की ओर रुख करते हैं। ये संदेश आया है हमें ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहरा जहाँ और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से, और अगला जो संदेश है वो हमें आया है राजू अग्रवाल, निर्मला चौधरी का, और ये इन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से है पर ये लिख रहे हैं कि हमारे खास साथियों के नाम 5 बार शामिल हो चुके हैं और हमारा भी शामिल करें। तो दोस्त 5 बार तो हमने किसी का भी शामिल नहीं किया पर आपका नाम भी शामिल हो गया है दोस्त। और अगला संदेश लेते लेते हैं, यह है कानपुर देहात से, ये है रामेश कठेरिया, उमाकांत कठेरिया, कमलेश कठेरिया, पुत्रवधु निशा कठेरिया, प्रज्ञा कठेरिया, प्रतिमा कठेरिया और वेद बाबू कठेरिया, और लिखते हैं कि हमारा मेल शामिल नहीं होता, हमारे मेल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। तो दोस्त ऐसी कोई बात नहीं, आपका संदेश भी शामिल हुआ है। और अगला जो हमारा जो संदेश हमें मिला है ये है ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित दयाल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख और कुमारी सानवी देशमुख का, और साथ में लिखते हैं स्मस राजे जाधव देशमुख और वयाल परिवार की ओर से ये संदेश हमें आया है। ये अगला संदेश हमें आया है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से, हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिलू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक जी, और ये हमें संदेश आया है, ये हमारे साथ जुड़े हैं जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, माया कुमार, हरपाल कौर जी, इनके साथ है संदीप गुगलानी, सुधीर नूतन, मॉडल करनाल से, और लिखते हैं कि हमें ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लग रहा है, कोई भी सॉन्ग्स बिल्कुल सुनवा दे। तो दोस्त हमारी कोशिश रहती है और आपकी पसंद ही इतनी अच्छी है कि हम वही गीत आपको सुनवाते हैं। चलिए अगला संदेश ले लेते हैं, यह है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े का, तो चलिए आप सबकी पसंद पर सुनते हैं ये गीत।

और बहुत ही प्यारा गीत था ये भी, एक कह के याद आ जाती है हमारे को कि एक यादगार फिल्म है और यादगार गीत है जो हमारे श्रोताओं की पसंद पे हमने आपको सुनवाया, और बहुत ही अच्छा लगा मुझे भी, बल्कि यूँ कह के गीत बहुत समय बाद सुना तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी संदेश ले लेते हैं। ये संदेश हमें आया सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी का, शांति नगर सोनीपत से। और अगला जो संदेश हमें आया है वह है सतप्रकाश गोयल का, रोहिणी दिल्ली से, और इनके साथ हैं प्रकाश गोगिया जागृति एनक्लेव से, और ये है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से। हमारे साथ जुड़े रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी और बेबी बॉय हिमाक्ष, और चक 5 MD पतरोड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु और डॉक्टर सुनील जनागल। तो आपकी पसंद पर सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

वक्त का पहिया इतनी तेज़ से घूमता है कि पता ही नहीं चलता। दोस्तों, घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि अब मुझे आपसे विदा लेनी होगी। तो आज के इस कार्यक्रम को मैं यहीं संपन्न करती हूँ। मुझे यानी शुभा शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी पसंद। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब आप कुछ ही पलों में समाचार सुनेंगे। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद अंग्रेजी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
2: दामोदर मेनोन सतीशन നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടന

0: ദൈവത്തോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തതയും.
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई. नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और IUML नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं. तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है. समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की. श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे. प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया. ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है. ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है. प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई. प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की. प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे. श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे. श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है. किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है. यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं. उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं. सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा. इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी. श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है. उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई. वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे. ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ. भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं. जियांगशान में 6ठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है. तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheesan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers, former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chinnathala, present KPCC President Sunny Joseph,

पांच बार। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। दहेज प्रथा एक ऐसा शब्द है जो बेटी के पैदा होने की खुशी को छीन लेता है। जब जब बेटी का चेहरा देखते हैं, दहेज शब्द आंखों के आगे नाचने लगता है। बेटी का प्यार क्या होता है, दहेज शब्द के सामने नजरअंदाज होने लगता है। जैसे तैसे माता पिता दहेज समेट लेते हैं। खुशी दौड़ जाती है आंखों में कि अब इतना दहेज समेट लिया है कि बेटी को विदा कर पाएंगे और वो अपना जीवन खुशी से बिता पाएगी। वहीं दूसरी तरफ बेटी अपने माता पिता को तिल तिल बचत करते देखती है, अपनी खुशियों से, अपनी जरूरतों से समझौता करते देखती है। सिर्फ बेटी के ब्याह के लिए रख लेते हैं ये कहते हुए देखती है तो कहीं ना कहीं शायद उसे अपने होने पर अफसोस होने लगता है। और फिर आता है वो एक दिन जब पिता दहेज समेटने लायक खुद को समझने लगता है। तब तक वह समय भी नजदीक आ जाता है कि उसे ब्याहने की तैयारी शुरू हो। यही चिंता में एक पिता का जीवन निकल जाता है। बेटी की शादी का समय आ जाता है। खूब धूमधाम से लोग जश्न में आते हैं। सभी की नजरें चारों तरफ बस यही देखती है कि पिता ने कितना पैसा खर्च किया होगा, कितनी सुंदर सजावट है, क्या क्या दिया लड़के वालों को। रस्में चल रही हैं और सब लोग व्यस्त हैं देखने में कि कितना सोना मिला, कितना नगद मिला, रिश्तेदारों को क्या दिया, लड़की वालों ने खरीदारी कैसे की। पर कोई एक भी शख्स नहीं होता जो पढ़ सके उस लड़की की नजरों को, जो बार बार अपने चारों तरफ की शानो शौकत और लेन देन की रस्मों को देखकर सिर्फ ये सोचती है कि पता नहीं पापा ने कितने पैसे खर्च कर दिए होंगे, इतना सब करने की क्या जरूरत थी, थोड़ा कम कर लेते, कितना कर्ज उठा लिया ये सब करने में। वहीं दूसरी ओर कोई भी शख्स नहीं देखता उन माता पिता की नजरों को जो हर पल घबराई हुई सी नजरों से हर एक मेहमान के चेहरे पर खुशी देखना चाहती है कि जो भी किया सब लोग खुश तो है ना, या संतुष्ट तो है ना। जाते जाते जब कोई ये कह जाता है कि आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया या आपने कितना कुछ दे दिया, माता पिता एक सुकून की सांस लेते हैं कि चलो अब उनकी बेटी खुश तो रहेगी उस घर में। ये दहेज प्रथा समाज को दो तरह से कुदेड़ती है। एक तरफ जहां दहेज के कारण एक लड़की को दुनिया के सामने झुककर रहना पड़ता है, वहीं कम दहेज लाने या दहेज ना ला पाने के कारण ससुराल की प्रताड़ना का भी शिकार होना पड़ता है। आए दिन समाचार पत्रों में दहेज के कारण स्त्री का परित्याग, जिंदा जलाना, खुदकुशी आदि जैसी घटनाएं पढ़ने को मिलती हैं, जो कि दहेज जैसी बुरी प्रथा के कारण हुई है। वहीं दूसरी तरफ ये प्रथा कहीं ना कहीं लड़के वालों पर भी भारी पड़ रही है। ये प्रथा जहाँ कुछ धार्मिक लोगों ने कन्यादान के साथ दिए जाने वाले दान के रूप में फैलाई, वहीं एक बोझ डाल दिया कन्या पक्ष पर कि यदि बेटी को खाली हाथ विदा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बेचारा बेटी का पिता जैसे तैसे करके कुछ ना कुछ जोड़ता ही है कि बेटी को खाली हाथ विदा ना करे और धर्म के नाम पर होने वाले पाप से खुद को बचा सके। क्या बेटी पैदा करके माँ बाप कोई गुनाह करते हैं? शायद इसी डर से बेटी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। पर बेटी बोझ नहीं है। क्यों पूछा जाता है बेटी से कि ब्याह करके आई है तो साथ में क्या क्या लाई है, गाड़ी लाई है या नहीं, और लाई है तो कौन सी कंपनी की है, रिश्तेदारों के लिए क्या क्या तोहफे लाई है, वगैरह वगैरह। पर एक भी शख्स उसकी आंखों को नहीं पढ़ पाता जो भीगी हुई है और सबसे एक ही बात कह रही है कि मत पूछो क्या क्या लाई हूँ, बस एक बार इतना पूछो कि क्या क्या छोड़कर आई हूँ। भाई बहनों संग लड़ना झगड़ना और खूब मस्ती भरे दिन छोड़कर आई हूँ, अपना कमरा, अपना बिस्तर, अपनी सारी चीजें जो किसी को छूने नहीं देती थी वो सब कुछ छोड़कर आई हूँ, सखियों के संग खेले हुए खेल खिलौने छोड़कर आई हूँ। ये चीजें जो आप सब देख पा रहे हैं आपको कभी भी कहीं भी मिल जाएंगी, पर जो चीजें मैं छोड़कर आई हूँ वो चीजें मुझे इस घर में मिलेंगी क्या, कोई नहीं पढ़ पाता ये सारी बातें उन भीगी आंखों में, कोई नहीं कह

0: कि बेटी मैं तेरी माँ बनूंगी, मैं तेरा पिता बनूंगा, मैं तुझे भाई का प्यार दूंगा, बहन का प्यार दूंगी। क्यों? सिर्फ इसीलिए शायद कि वो किसी पराए घर से आई है, इसीलिए उसे वो जगह नहीं मिलती जिसकी वो हकदार है। उस लड़की के भी तो सपने होंगे, कुछ ख्वाब होंगे, वो क्यों नहीं दिखते? उसके अरमान है, वो कुछ उम्मीदें साथ लाई है, वो क्यों नहीं दिखती? वो अपने सारे फर्ज, सारी जिम्मेदारियां निभाती है, वो क्यों नहीं दिखती? दिखता है तो बस उसके साथ आया हुआ दहेज। आज हर बेटी इतनी लायक है और सक्षम है कि अपने ब्याह का पूरा खर्च खुद उठा सके, अपना दहेज खुद बना सके, अपने घर और गृहस्थी के साथ साथ आजीविका भी अर्जित कर सके। फिर भी बहू लाते समय सबकी नजर सिर्फ और सिर्फ दहेज पर ही होती है। क्यों? वर पक्ष इस तरह अपने बेटे को कन्या पक्ष के सामने पेश करते हैं जैसे अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर लायक बनाकर उन्होंने खुद पर नहीं, अपने बेटे पर भी नहीं, बल्कि कन्या पक्ष पर कोई एहसान किया हो। हमारा पढ़ा लिखा और सभ्य समाज इस बीमारी में सबसे ज्यादा पीड़ित है। दिखावे के नाम पर ऊंचे से ऊंचा दहेज लेना और देना उनके रीति रिवाजों में शामिल होता जा रहा है, जिसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ता है जो हैसियत ना होते हुए भी मजबूर होते हैं रस्मों के नाम पर ऊंचा दहेज देने के लिए। क्यों इस प्रथा का अभी तक अंत नहीं हो पाया है? क्या कारण है? यदि इस बारे में सोचा जाए तो कई कारण हो सकते हैं, वह हमारे सामने है भी। जैसे लड़कियों को शुरू से ही कमजोर व आश्रित रखना, सही शिक्षा का न दिया जाना, आवाज उठाने पर अपनी मान मर्यादा और इज्जत का हवाला देना, वहीं दूसरी ओर लड़कों को बलवान होने का पाठ पढ़ाना, खुद को समाज में सर्वोपरि समझना और समाज के बनाए गए पुराने और खोखले रीति रिवाजों को ना तोड़ने की समाज द्वारा दी गई एक छोटी सोच जो शुरू से ही लड़कों के मस्तिष्क में उपजा दी जाती है। पुरुष और नारी में फैला हुआ एक अंतर जो खत्म होते हुए भी कहीं ना कहीं अपनी जड़ों से जुड़ा है। समाज में फैली इस बीमारी का इलाज करने कौन आएगा? नहीं, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आइए सुनते हैं इस नाटक को जिसमें लड़का और लड़की दोनों ने ही पहल की।
1: हेलो सूरज।
2: हाँ रेखा, कैसी हो तुम?
1: मैं ठीक हूँ, लेकिन।
2: क्या लेकिन? मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है।
1: कहीं आप समाज और परिवार के डर से अपना फैसला तो नहीं बदल लोगे?
2: अरे रेखा, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? मैं एक पढ़ा लिखा और संपन्न परिवार का लड़का हूँ।
1: वो सब मुझे पता है, पर ये समाज और परिवार का डर मुझे खाए जा रहा है।
2: मैंने जो बातें तुमसे कही है और जो वायदे मैंने तुमसे किए हैं उनको जरूर मैं पूरा करूँगा, और मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नीचे नहीं दिखने दूंगा।
1: मुझे आप पर यकीन है कि आप कुछ गलत नहीं होने दोगे, और आपके साथ से ही इस गांव में शायद ये पहली शादी होगी जो बिना किसी दहेज के होने जा रही होगी।
2: आज मैंने माँ और बाबूजी को आपस में बात करते हुए सुना कि हम उस लड़की से कुछ भी नहीं ले रहे, लेकिन अगर गांव वालों ने ज्यादा सवाल किए तो क्या जवाब देंगे? लेकिन जैसे ही मैं उनके सामने दिखा तो वो दोनों चुप हो गए।
1: चुप क्यों?
2: पता है तुम्हें तो, मेरे इस निर्णय को मम्मी पापा ने साथ नहीं दिया था, फिर मेरे समझाए जाने के बाद मान गए, लेकिन मुझे देखते ही वो दोनों चुप हो गए।
1: बस अब सब अच्छे से निपट जाए, दो दिन बाद हमारी शादी है।
2: हाँ, इस बार नई शुरुआत भी हमें ही करनी है। चलो अब तुम आराम करो, घर में मेहमान भी आए हुए हैं।
1: ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे।
2: ध्यान रखना अपना।
1: बस परमेश्वर करे सब अच्छे से हो जाए, मेरे बाबू और माँ का सर नीचे ना होने देना।
0: देखते देखते शादी का दिन आ गया और सभी लोग गांव वाले शादी और दहेज का सामान देखने फुसफुसाने लगे। कुछ का कहना था आजकल के बच्चे अपनी मर्जी चलाते हैं, तो कुछ कहते सुनाई दिए कि ये सब लड़की के माँ बाप की चाल है। इन सब के बीच रेखा के घर वालों ने भी शादी और मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रखी। अच्छा स्वागत, स्वादिष्ट खाना, यहाँ तक कि बरातियों के विदाई तक का पूरा ध्यान रखा गया। और देखो वह समय आ ही गया जब सूरज और रेखा शादी के बंधन में बंधने ही जा रहे थे कि पंडित जी ने पूछ ही लिया, वधू के माता पिता

0: वर को कन्यादान के रूप में क्या सामान और राशि दे रहे हैं। तभी सूरज बोल पड़े कि सामान में कोई कमी ना होने के कारण हम कुछ नहीं ले रहे और राशि के रूप में 11 रुपए भी बहुत हैं। लोगों के फुसफुसाने पर कहा कि मुझे मेरे घर में कोई कमी नहीं जान पड़ती, कमी तो बस एक बहू की है, तो हम बस वही ले जाएंगे। सभी गांव वाले और बरातियों का मुंह बंद हो गया, कोई कुछ बोलने लायक ही नहीं रहा। और बोलते भी क्या, सूरज खुद एक सरकारी नौकरी पर कार्यरत है और रेखा भी तैयारी कर रही है, जल्द ही रेखा की मेहनत रंग लाएगी। विदाई का समय आ गया। सभी की नजरें थी कि भले ही कितने भी ऊंचे विचारों के क्यों ना हो, लेकिन किसी भी लड़की के माता पिता लड़की को घर से खाली हाथ विदा नहीं करते। और हुआ भी ऐसा ही, रेखा के घर वालों से जो बन पड़ा वो सब नकदी के रूप में विदाई के समय रेखा के हाथों में थमा दिया। लेकिन सूरज ने भी सभी का सम्मान करते हुए कहा कि अगर आपको देना ही है तो ये रेखा के नाम से उसके खाते में डलवा दें, ताकि जरूरत पड़ने पर आपको मुझसे नहीं वरन अपनी बेटी से हक से मांग सके। सूरज की बातों ने वाकई सबका मन मोह लिया था। सभी कहने लगे, दामाद मिले तो सूरज जैसा मिले। इसी के साथ कुछ पंक्तियां बोलकर मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी। क्यों जला दिया उसे दहेज की होली में, बैठकर वो आई थी ख्वाबों की डोली में। क्यों पूछा उससे साथ क्या क्या लाई हो, क्यों ना पूछा उससे क्या छोड़कर आई हो। कितना रोई, कितना चीखी, कितना चिल्लाई होगी, अपनी जान बचाने को कितना गिड़गिड़ाई होगी। क्या बीती होगी माँ पर जिनकी बेटी तुमने जलाई होगी, रो रो कर उस बाप ने इंसाफ की गुहार लगाई होगी। क्या जानोगे दर्द उस भाई का जिसने अपनी राखी गवाई होगी। क्यों उन सब ने घर तुम्हारे अपनी बेटी बिहाई होगी। जीने दो माँ की लाडली को, भर दो प्यार से झोली को। श्रोताओं, इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगी और आशा करती हूँ कि हमारी ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से जुड़े अपने सुझाव विचार हम तक जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आप एक बार नंबर हमारा फिर से नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है
1: 9311504004। जी हाँ, 9311504004।
0: हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। फिर से दोहराना चाहूंगी, कार्यक्रम हमारी बेड़िया, पोस्ट बॉक्स नंबर 6, नई दिल्ली 1। इसी के साथ मुझ राखी की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम हमारी बेड़ियाँ, और आप सुनते हैं सबरस में संगीता पंत की आवाज़ में ये गीत।

दबंग की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये गीत। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और आप सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम, यहाँ सुरमंजरी कार्यक्रम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। इसमें आज आप सुनेंगे अंशु थपलियाल नवानी से राग मियाँ की तोड़ी। तो चलिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम के कार्यक्रम सुरमंजरी में अभी आप सुन रहे थे अंशु थपलियाल नवानी से राग मियाँ की तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। बारह बजने को है, अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार। पहले हिंदी में समाचार प्रसारित किए जाएंगे, ठीक उसके बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी 2 दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर

0: ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्तुम।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026, to 2030.

हर आंगन। घर सिर्फ दीवारों में नहीं बसता, वो बसता है उन आवाजों में जो सुबह चाय की भाप के साथ उठती हैं और

बनकर लौटती हैं। घर वो है जहां बातें कभी पूरी नहीं होती और खामोशियां भी अपनी सी लगती हैं। नमस्कार दोस्तों, 100.1 मेगाहर्ट्ज़ एफएम गोल्ड पर इन्हीं एहसासों, इन्हीं छोटी छोटी जिम्मेदारियों और रिश्तों की गर्माहट को समेटे आप सुन रहे हैं कार्यक्रम घर आंगन। साथ ही आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल 366.3 मीटर पर भी। आज इस सफर में आपके साथ मैं हूं, आपकी रेडियो हम सफर सोनाली। आइए इस आंगन में कुछ देर ठहरते हैं जहां जिंदगी धीरे धीरे चलती है और हर बात दिल तक उतरती है।

फिल्म दूसरा आदमी में आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, आकाशवाणी अपनी स्थापना के 90 वर्ष पूरा कर रहा है और इसी विशेष अवसर पर हम बात कर रहे हैं इस प्रतिष्ठित संस्था से जुड़ी उन स्मृतियों, ध्वनियों और कहानियों की जिन्होंने पीढ़ियों तक श्रोताओं को और उनके जीवन को छुआ है। इस कड़ी में आज बात आकाशवाणी की उस संकेत धुन की जिसे सुनते ही बरबस एक आत्मीय एहसास मन में उतर आता है। कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, कुछ धुनें समय के साथ पुरानी नहीं होती, वे पीढ़ियों की स्मृतियों में बस जाती हैं। आकाशवाणी की संकेत धुन भी ऐसी ही एक धुन है जो आज भी सुनाई दे जाए तो बीते समय की सुबहें, रेडियो के आसपास बैठा परिवार और एक अलग सी आत्मीयता याद आ जाती है। सुबह के प्रसारण के आरंभ में बजने वाली यह धुन केवल संगीत नहीं बल्कि आकाशवाणी की पहचान है। इस ऐतिहासिक धुन की रचना ऑस्ट्रियाई मूल के संगीतकार वॉल्टर कॉफमैन ने की थी, जो 1930 के दशक में आकाशवाणी मुंबई केंद्र से जुड़े थे। भारतीय शास्त्रीय संगीत से प्रेरित इस धुन में राग शिवरंजनी, जी हाँ, राग शिवरंजनी पर आधारित है हमारी ये संकेत धुन और इसे प्रसिद्ध वायलिन वादक महली मेहता ने इसको स्वर देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समय बदला, तकनीक बदली, सुनने के माध्यम भी बदल गए, लेकिन आकाशवाणी की यह धुन आज भी वही अपनापन लिए हुए है जो कभी करोड़ों भारतीय घरों की सुबहों में गूंजा करती थी। वैसे भी अभी हम दोपहर में हमारे कार्यक्रम आपके समक्ष लेकर आए हैं, लेकिन उस धुन को याद करते हुए हम सुबह को क्यों न याद करें जब इस धुन की वजह से सभी की सुबह एकदम संगीतमय और एक अलग ही जिंदगी को एक अलग ही मंत्र देती हुई शुरू होती थी।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।
2: जी हाँ, आकाशवाणी के इन्हीं यादों को संजोए हमने आपके साथ बात की थी हमारी आकाशवाणी के संकेत धुन की। और देखिए ना, आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं पड़ती हमारा और आपका जो रिश्ता है वो किस तरह से कायम होता है, फिर भी बता देती हूँ। एक ईमेल है, जी हाँ, एक ईमेल आईडी है जो है fmgoldga@gmail.com। तो बस इसके ज़रिए आप पर हम जुड़ पाते हैं, आपकी बातें, आपकी राय, आपके मशवरे, आपकी बातें सब हम यहाँ पर शुमार कर पाते हैं। तो बस आपको और इंतज़ार मत करवाइए हमें और अपनी बातें हमारे साथ साझा ज़रूर कीजिए। देखिए, इसी सिलसिले में हमारे साथ हमारे नियमित श्रोता है नवीन भाटिया जी, मोतीनगर दिल्ली से। वो लिखते हैं, सोनाली जी नमस्कार, आकाशवाणी पे बात करके और उसकी धुन के बारे में बता के आपने बचपन की याद दिला दी, थैंक्स। जी हाँ, अब देखिए ना, गोल्ड हमारा जो FM गोल्ड है वो बना ही इसलिए है कि पुरानी सारी यादों को आपके साथ बांटता रहे, भले ही वो पुराने गाने हों और पुरानी बातें हों। लेकिन देखिए, इन दिनों तो हम आकाशवाणी के 90 सालों को यहाँ पर बहुत खूबसूरती से मना रहे हैं, तो आप भी सुनना न भूलिएगा मंगलवार और

रविवार को हमारा ये जो विशेष कार्यक्रम है वो है ना यादों की रंग जो है। तो बस हम बात कर रहे हैं किसकी, घर आंगन की। और आज आपके साथ मैं हूँ आपकी रेडियो हम सफ़र सोनाली। तो अब हम बात करती हैं एक बहुत अलग सी एक योजना के बारे में। जी हाँ, मैं बता रही हूँ ना आपको, ऐसा है कि माँ बनना किसी भी स्त्री के जीवन का अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण चरण होता है ना। और ऐसे समय में सही पोषण, पर्याप्त आराम और स्वास्थ्य देखभाल केवल माँ के लिए ही नहीं बल्कि शिशु के स्वस्थ भविष्य के लिए भी आवश्यक मानी जाती है। इसी सोच के साथ भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की शुरुआत की। ये योजना वर्ष 2017 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि गर्भावस्था के दौरान उन्हें बेहतर पोषण और स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। योजना के अंतर्गत ना जो महिलाएं हैं उनको DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से सीधे बैंक खाते में सहायता राशि प्रदान की जाती है। और वर्तमान प्रावधानों के अनुसार ना पहले जीवित बच्चे के लिए 5,000 की सहायता दी जाती है। वहीं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना 2.0 के अंतर्गत दूसरी संतान यदि बालिका हो तो ₹6,000 की सहायता का प्रावधान भी है। इस योजना का जो उद्देश्य है वो केवल आर्थिक सहयोग देना ही नहीं है दोस्तों, बल्कि महिलाओं को समय पर स्वास्थ्य जांच, संस्थागत प्रसव और शिशु टीकाकरण के प्रति जागरूक करना भी है। कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ माँ केवल एक बच्चे को जन्म नहीं देती, वह आने वाले समाज की नींव गढ़ती है। योजना से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप सभी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट जो है www.wcd.gov.in या pmmvy.wcd.gov.in पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इस योजना की जानकारी अपने आसपास जो भी गर्भवती स्त्री हो उस तक ज़रूर पहुंचाएं और इस योजना का लाभ उठाएं।

0: फिल्म ना खुदा में आप सुन रहे थे नितिन मुकेश के साथ लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलियाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 29 मई तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। अपने सुझाव नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भी भेज सकते हैं। तो याद रखें रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
0: तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर। जी हाँ, कार्यक्रम है घर आंगन और आप सुन रहे हैं इसे हमारे साथ कहाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं, जी हाँ, आपकी, आप लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो हमारा कार्यक्रम करने का जो मन है वो और ज़्यादा लगने लगता है। तो हमारे साथ अभी कौन जुड़े हैं? हमारे साथ जुड़े हैं सुदर्शन मुखी जी, उनके साथ अनीता मुखी, सिमरन मुखी शांतिनगर सोनीपत से, और ये हमें नमस्ते, अच्छा सादर प्रणाम करते हैं। सर आपको भी हमारी तरफ से बहुत बहुत नमस्ते यहाँ से। और आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम इन्हें अच्छा लग रहा है, मनभावन गीत हैं, प्रस्तुति इन्हें अच्छी लग रही है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं, हम भी आपके भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, धन्यवाद आपका। और इसके साथ ही हमारे साथ उग्रसेन यादव जी जुड़े हैं नई दिल्ली से। लिखते हैं, सोनाली जी आपको दिल से नमस्कार, आकाशवाणी ने बहुत कुछ हमें यानी देश को दिया है, ये देश की ऐसी धरोहर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी को याद दिलाता जाएगा कि बहुत पहले और अब में क्या अंतर है। वह क्या बात है, सही बात है सर, और ऐसी धरोहरों का सम्मान करना तो बनता है ना। और देखिए 90 साल पूरे कर चुकी है आकाशवाणी, कर रही है इस साल, और बहुत सारे हम लोग विशेष कार्यक्रम भी लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़े रहा कीजिए, कहाँ, FM गोल्ड 100.1 MHz पर। तो अब हम बात करते हैं किस बारे में, जी हाँ, अब हम बात करते हैं गर्मी की, और गर्मी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, पानी। अब क्या होता है कि गर्मी का मौसम आते ही पानी का जो महत्व है वो और ज़्यादा महसूस होने लग जाता है। कहीं जलस्तर घटने की खबरें सुनाई देती हैं तो कहीं लोगों को दूर दूर तक पानी के लिए जाना पड़ता है। ऐसे समय में जल संरक्षण केवल जागरूकता का विषय नहीं बनता बल्कि हमारी सामूहिक जिम्मेदारी बन जाता है। अक्सर हमें लगता है कि पानी बचाने के लिए बहुत बड़े प्रयासों की आवश्यकता होगी, जबकि सच ये है कि घर की छोटी

छोटी आदतों से भी हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। कैसे? जी हाँ, ऐसे। ब्रश या शेव करते समय नल को खुला ना छोड़ें। सब्जियां धोने या आरओ के जो अत्यधिक जो एक अलग सा पानी उसमें से गिरता रहता है ना, उसको आप इकट्ठा करके पौधों में डाल सकते हैं। सब्जियों का पानी भी आप अपने बगीचों में डाल सकते हैं। फिर बाल्टी से स्नान को आप प्राथमिकता दें, क्योंकि शावर में ना बहुत ज़्यादा पानी व्यर्थ होता है। फिर वर्षा का जो जल संचयन है यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। फिर बच्चों को बचपन से ही पानी का महत्व समझाना बहुत ज़रूरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम पानी को सुविधा नहीं बल्कि अमूल्य संसाधन समझें, क्योंकि जो पानी आज सहज उपलब्ध है ना, वही आने वाले समय में बहुत बड़ी चुनौती भी बन सकता है। हाँ, और विशेषज्ञों के अनुसार ना, यदि हर घर थोड़ी सी सावधानी बरते तो प्रतिदिन हजारों लीटर पानी बचाया जा सकता है। और कहा भी जाता है ना दोस्तों कि जल बचाना केवल प्रकृति को बचाना नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना भी है।

फिल्म शोर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ मुकेश की आवाज़ में ये गाना। और हम बात कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले ही हमने कहा था ना, बच्चों को भी जल संरक्षण ज़रूर बताएं। तो हम बच्चों की बात करते हैं अगर, तो आजकल आपने एक चीज़ बहुत महसूस की होगी कि आज का जो बचपन है वो पहले की तुलना में काफ़ी बदल चुका है। कभी बच्चों की दुनिया खेल के मैदान, कहानियों और दोस्तों के साथ बीतती थी, लेकिन अब मोबाइल और स्क्रीन उनकी दिनचर्या का बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। ऑनलाइन पढ़ाई, खेल और सामाजिक माध्यमों के कारण ना बच्चों का जो स्क्रीन समय है वो लगातार बढ़ रहा है। और अगर हम लंबे समय तक, अगर आप भी मानते हैं इस बात को कि लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहने से ना बच्चों की आँखों, नींद और उनकी जो कंसंट्रेशन है यानी एकाग्रता पर बहुत प्रभाव पड़ता भी है और इसका बहुत दुष्परिणाम भी होता है। ऐसे में ज़रूरी है कि जो बच्चे तकनीक से जुड़े रहें, देखिए बहुत ज़रूरी है कि उन्हें तकनीक से तो जुड़े रहना है, लेकिन ना एक संतुलन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम, जी हाँ हम अभिभावक, कुछ छोटी बातों का ध्यान हमेशा रख सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए ना हमेशा हर दिन ना एक सीमित स्क्रीन का समय तय कर दीजिए और उन्हें खाना खाने के समय और सोने के समय मोबाइल से दूर रखें। और ये हमारी हमारी ही जिम्मेदारी है ये सारी। और ना भोजन बच्चों को ना जब खुले मैदान में, उन्हें हमेशा ये प्रेरित करें कि वो खुले मैदान में खेलने जाएं, पुस्तकें पढ़ें और बहुत सारी ना रचनात्मक गतिविधियों को भी वो करने की कोशिश करें, उनको उसमें लगातार जोड़ कर रखिए। और सबसे ज़रूरी, परिवार के साथ कुछ समय उनके साथ आप भी बिना मोबाइल के बिताएं, क्योंकि देखिए बच्चा वही सीखेगा जो हम उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अगर हम मोबाइल से दूरी रखेंगे तो हमारा बच्चा भी सीखेगा इस बात को। और फिर ना कहते भी हैं कि आप पहले उस चीज को खुद करें, फिर आप किसी और को उसके बारे में प्रवचन दें। जी हाँ, है ना। तो आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आप अपने बच्चों को नहीं कह सकते कि आप अपने मोबाइल से दूर रहिए। और क्योंकि बचपन केवल उम्र का पड़ाव नहीं है और बल्कि ये वो समय है जहाँ जीवन की सबसे सुंदर यादें बनती हैं और उनकी यादों में माँ, पिता, घर के अन्य सदस्यों के साथ, दोस्तों के साथ, बाहर घूमना फिरना, थोड़ा सा खेल कूद, मतलब थोड़ा भी नहीं, बहुत सारा खेल कूद होना चाहिए। और उनको आप लेकर जाइए बाहर, कभी कुछ खेलिए, कभी कुछ खेलिए, क्यों ना आप उनके साथ में छुपा छुपी खेलिए, है ना। ये भी बहुत अच्छा जरिया है, बच्चा अपने माँ बाप के साथ जुड़ा रहता है, अपने भाई बहनों के साथ जुड़ा रहता है, दोस्तों के साथ जुड़ा रहता है।

फिल्म ड्रीम गर्ल में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर के साथ साथियों की आवाज में ये गीत। दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की भूमिका आजकल लगातार मजबूत हो रही है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब इस क्षेत्र में महिलाओं की उपस्थिति बहुत सीमित थी। ऐसे दौर में डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय ने अपने साहस, मेहनत और समर्पण में एक नई मिसाल कायम की। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय भारतीय वायुसेना की पहली महिला एयर मार्शल बनी। उन्होंने न केवल चिकित्सा सेवाओं में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं के लिए नए रास्ते भी खोले। ये भारतीय वायुसेना में एविएशन मेडिसिन की विशेषज्ञ रहीं और कठिन परिस्थितियों में कार्य करते हुए अनेक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किया गया। डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय की यात्रा ये साबित करती है कि दृढ़ संकल्प और लगन के साथ महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकती हैं। उनकी कहानी केवल एक उपलब्धि नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का संदेश है ना? और बस हम तो यही चाहेंगे कि हम में से हर महिला बहुत ऊंचाई तक पहुंचे, आसमान छुए और उसके पैर कभी जमीन पर ना टिके।

फिल्म घर में आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत। दोस्तों, हमने आज के कार्यक्रम में हर पहलू की बात कर ली जीवन की, है ना। और चलते चलते आज हम बात करते हैं फैशन की। देखिए, फैशन केवल बदलते परिधानों का नाम नहीं होता, बल्कि समाज, संस्कृति और समाज की बदलती सोच का भी एक दर्पण होता है। भारतीय फैशन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ परंपरा और आधुनिकता साथ साथ चलती है। एक समय था जब भारत में हथकरघा से बने वस्त्र ही पहचाने जाते थे, है ना। बनारसी हो गया, चंदेरी, महेश्वरी, कांचीवरम और भागलपुरी जैसे वस्त्र केवल कपड़े नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा थे। अलग अलग प्रदेशों की बुनाई, रंग और डिजाइन अपनी अपनी कहानी कहते थे। समय के साथ फैशन की दुनिया बदलती गई। फिल्मों, दूरदर्शन, फैशन डिजाइनरों और वैश्विक प्रभावों ने भारतीय पहनावे को नया रूप दिया। साड़ियों के साथ फ्यूजन शैली, पारंपरिक कपड़ों में आधुनिक डिजाइन और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय परिधानों की उपस्थिति ने फैशन को एक नई पहचान दी। आज उच्च फैशन का दौर है जहाँ विशेष डिजाइन, हथकला और व्यक्तिगत शैली को महत्व दिया जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आधुनिक फैशन की चमक के बीच भी हथकरघा और हैंडलूम की लोकप्रियता फिर भी बढ़ ही रही है। लोग अब ऐसे परिधान पसंद करते हैं जो सुंदर होने के साथ साथ आरामदायक, टिकाऊ और अपनी जड़ों से जुड़े हों। भारतीय फैशन की यह यात्रा हथकरघा की सादगी से लेकर उच्च फैशन की भव्यता तक जरूर पहुंची है, लेकिन इसकी आत्मा आज भी भारतीय संस्कृति और उसके रंगों और विविधता में ही बसती है।

दोस्तों, अब घड़ी इजाजत नहीं देती कि आपके साथ और बातें की जाए, तो आज के इस कार्यक्रम से मुझे यानी आपकी रेडियो हमसफर सोनाली को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

आपका घर आंगन। घर आंगन,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों

0: से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पी के कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृहमंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolising the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defense of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh's visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now expanded the service to all 33 districts. In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheeshan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers.
2: Yana Vadasheri Damodara Menon Sadishan Yanmanyan Niyamamari Stabida Maya Bharatat in the Baranagaranayodu Nirvyaja Maya Vishwasadayam.
1: Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chennithala, present KPCC President Sunny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P. K. Kunyalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Prime Minister Narendra Modi has congratulated V.D. Satheeshan on taking oath as the Chief Minister of Kerala. In a social media post, Mr. Modi said the central government will assure all possible support for the newly formed Keralam government in fulfilling the aspirations of the people. A vessel carrying 20,000 metric tons of liquefied petroleum gas, LPG, has arrived at Deen Dayal Port Authority in Kandla in Gujarat after crossing the Strait of Hormuz amid the West Asia crisis. The Marshall Islands flagged MV Semi started its journey from Qatar and docked at the port in Kandla on Saturday. Since early March, 13 India-flagged vessels comprising 12 LPG tankers and one crude oil tanker have crossed the Strait of Hormuz. In a landmark decision, the Shubh Hindu Adhikari-led BJP government in West Bengal has raised the upper age limit for entry into state government jobs. The upper age limit for recruitment to Group A posts has now been set at 41 years. For Group B posts, the limit has been raised to 44 years. And for Group C and Group D posts, the maximum age is now 45 years. The government clarified that where higher age limits are already in place, the existing rules will continue. And with that, we end this news bulletin.

0: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही फिल्म का। एक ही फिल्म कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: कार्यक्रम एक ही फिल्म में आप सभी श्रोताओं का स्वागत खैर मकदम करते हुए मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी, स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही फिल्म और आज इस कार्यक्रम में हम एक ऐसे रेलवे स्टेशन पर जाएंगे जहां एक रात रुक कर दो मुसाफिरों ने अपनी पूरी जिंदगी की अधूरी दास्तान को पूरा किया। जी, आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या सफ़र रेलवे स्टेशन की बातें मैं कर रही हूँ। तो दोस्तों, आज इस सफ़र में हम लेकर आए हैं रिश्तों की उलझन, प्यार की कसक और खामोशियाँ। जब इन सब को मिलाकर कोई कहानी बनती है तो हमारे जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है और वो आता है गुलजार साहब की फिल्म इजाज़त। ये एक ऐसी फिल्म है जो कि इंसानी जज्बातों को एक नज्म के रूप में सुनाती है, जिसे आप जितनी बार भी सुनेंगे उतनी बार ये आपको अलग लगेगी, अपनी सी लगेगी।

जी बिल्कुल, छोटी सी कहानी जिसको लेकर आए सुबोध घोष जी की कहानी है ये। जी हाँ दोस्तों, फिल्म इजाज़त जिसकी कहानी एक बहुत ही बड़े बंगाली लेखक सुबोध घोष की कहानी जातू ग्रह पर आधारित है। इस कहानी पर 1964 में बंगाली निर्देशक तपन सिन्हा ने कलाकार उत्तम कुमार को लेकर एक बंगाली फिल्म भी बनाई थी और उसी से इंस्पायर हुए गुलजार साहब। उन्होंने कहानी तो जादूग्रह से ली, लेकिन उसके जो जो कहानी का ताना बाना था उसको लेकर के उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने अपने अंदाज में लिखा और उसमें एक किरदार को जोड़ा, वो किरदार का नाम माया। उसके बाद ये तैयार हुई कहानी इजाज़त। फिल्म में माया का किरदार जोड़ा गया जो कि एक चुलबुला, बेपरवाह, थोड़ा सा पागलपन से भरा हुआ किरदार था और उस किरदार के लिए चुना गया अनुराधा पटेल को, जो उनके पूरे फिल्मी सफ़र का एक सबसे ज़्यादा यादगार रोल रहा। लेकिन इस रोल के लिए अनुराधा पटेल को चुनने से पहले गुलजार साहब की जो पहली पसंद थी वो परवीन बॉबी या जीना तमान जैसी ग्लैमरस एक्ट्रेस को लेना था, लेकिन उनकी तरफ से हाँ नहीं हुई और बाद में अनुराधा पटेल को ये रोल मिला। तो उन्होंने इस किरदार में अपनी पूरी जो जान थी वो लगा दी और सादगी और संजीदगी की एक अलग ही मिसाल उन्होंने तैयार करके दी इस किरदार के रूप में।

जी दोस्तों, फिल्म इजाज़त, जिसके बारे में आज हम कर रहे हैं इस कार्यक्रम एक ही फिल्म में बातें। वैसे एक तरह से हम देखें तो जो फिल्म इजाज़त है, ये एक बहुत अलग तरीके का एक अनोखा सा एक्सपेरिमेंट था बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, और शायद ये एक अपने आप में एक पहला एक्सपेरिमेंट था जिसमें उस वक्त 8 सिनेमा के हीरो नसरुद्दीन शाह साहब को लिया गया, और दूसरी तरफ उनके ऑपोजिट थी कॉमर्शियल सिनेमा की ग्लैमरस क्वीन रेखा। ये जोड़ी को पर्दे पर एक साथ लाने का काम किया गुलजार साहब ने, और उन दोनों को इस किरदार के लिए चुनने के पीछे गुलजार साहब की भी एक अपनी अलग तरह की सोच थी। क्योंकि फिल्म का जो मुख्य कैरेक्टर है, जो मेन कैरेक्टर है महेंद्र, जो कि निभाया है नसीर साहब ने, वो कोई विलन नहीं है, बल्कि ना ही वो कोई धोखेबाज इंसान है। वो एक ऐसा इंसान है जो कि अपनी पत्नी को भी नहीं धोखा देना चाहता, वहीं वो अपनी पुरानी मोहब्बत को भी नहीं भूल पा रहा है। अब इसी कश्मकश में वो है, इसी कमज़ोरी में, इसी उधेड़बुन में वो लगा हुआ है इस पूरे फिल्म के दौरान, और गुलजार साहब को इस किरदार के लिए एक ऐसा अभिनेता चाहिए था, एक ऐसा हीरो चाहिए था जो बिना विलन लगे अपनी लाचारी, अपनी मासूमियत से उस कैरेक्टर में इस तरह से दिखाए कि हाँ, उसकी कोई गलती नहीं है, वो अपने हालातों से या अपने दिल के हाथों मजबूर है। यानी कि विलन वाले काम तो करे, लेकिन उसके साथ नफरत ना की जाए। और वाकई में नसीर साहब ने उस चीज़ को जो गुलजार साहब चाहते थे, उस काम को उन्होंने बखूबी किया, बखूबी अंजाम दिया। उन्होंने उस सोच को जो गुलजार साहब के मन में थी, और नसीर साहब जब भी स्क्रीन पर नज़र आए तो उनके चेहरे पर एक ठहराव, एक नेचुरलिटी थी, और इस किरदार को उन्होंने इस तरह से बना दिया था कि हर किसी को महेंद्र से नफरत नहीं थी, बल्कि उसके दर्द को हर किसी ने समझा। और इस किरदार को निभाने के लिए नसीर साहब ने उस किरदार में ढलने के लिए अपनी दाढ़ी बनाई, और एक पूरी तरह से एक शायर वाले लुक में वो ढल गए थे। वहीं दूसरी तरफ सुधा का किरदार, जो कि नसीर साहब की पत्नी का किरदार था सुधा का, जो कि निभाया रेखा जी ने, जिसके लिए गुलजार साहब को चाहिए थी एक स्वाभिमानी महिला हो, समझदार, थोड़ी सी संजीदा भी हो, जो अपने पति के ज़िंदगी में दूसरी महिला के आने पर उसे बर्दाश्त तो ना ही करे, लेकिन जब घर छोड़े तो वो भी पूरी गरिमा के साथ में। और बिल्कुल इस किरदार के लिए पहली और आखिरी पसंद गुलजार साहब के लिए रेखा थी। जी हाँ, क्योंकि रेखा उनके साथ पहले भी घर फिल्म में काम कर चुकी थी, उससे पहले उमराव जान में भी वो काम कर चुकी हैं, और उस तरह के जो संजीदा किरदार रेखा जी ने निभाए हैं, उसके बाद गुलजार साहब के मन में सिर्फ और सिर्फ रेखा जी ही थी सुधा के किरदार निभाने के लिए। और वाकई में उनकी उस पूरी सोच पर खरी उतरी रेखा जी, उन्होंने बहुत ही खूबसूरती के साथ उस किरदार को निभाया, बहुत ही प्यार के साथ उस किरदार को उन्होंने अपने लाइफ में उतारा। एक तरह से कह सकते हैं कि रेखा जी ने एक बार ये कहा भी था कि जो ये सुधा का किरदार है वो उनकी ज़िंदगी के बहुत करीब था।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम में की फिल्म के साथ और आशा जी की आवाज़ में जो भी आपने गीत सुना, वाकई में ये गीत एकदम दिल को छू जाता है। इस गीत में माया की वो तड़प, वो ज़िंदगी को अपनी शर्तों पर थोड़ा थोड़ा कर जीने की जो ख्वाहिश है वो एकदम साफ दिखाई देती है। वाकई में इस गाने में पंचम गाने कमाल किया है। वैसे एक तरीके से मैं यही कहूँगी कि अगर हम फिल्म इजाज़त की बात करें, उस फिल्म के संगीत की बात ना करें, तो मतलब बिल्कुल ही गलत होगा। इस फिल्म की रीढ़ की हड्डी है संगीत। जी हाँ, कहें कि ये फिल्म की अगर हम बात करें तो इस फिल्म के संगीत के बिना ये इस फिल्म के बारे में बात करना बिल्कुल बेमानी है। आर डी बर्मन साहब और गुलजार साहब और आशा जी, इस तिगड़ी ने मिलकर जो कमाल किया है ना, वो जादू आज भी हर किसी के दिल पर छाया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और यही वजह है कि जो भी गीत बने हैं वो बहुत ही खूबसूरती के साथ, बहुत ही दिल को छू लेने वाले बने हैं। लेकिन इस फिल्म में एक और अहम किरदार था, वो था शशि कपूर साहब का। एक कैमियो का रोल उन्होंने इस किरदार में निभाया था और वो था सुधा के नए पति के रूप में। जी हाँ दोस्तों, गुलजार साहब इस रोल के लिए किसी ऐसे स्टार को चाहते थे जिसके फेस पे रुआब हो। स्क्रीन पर जब वो आए तो उसको देखते ही जो देखने वाले हैं वो समझ जाएं कि नहीं, अभी जो सुधा है वो एकदम सेफ हाथों में है, सेफ व्यक्ति के साथ में है। और शशि कपूर साहब ने गुलजार के सम्मान में बिना किसी हिचकिचाहट के इस छोटे से किरदार के लिए हाँ किया। वैसे यही कहेंगे कि छोटा किरदार था, लेकिन हाँ बेहद अहम किरदार था इस फिल्म के लिए। इस फिल्म में एक और खूबसूरत सा गीत है जो हम अभी आपके लिए लेकर आने वाले हैं, लेकिन इस गीत के लिखने के पीछे भी एक मज़ेदार कहानी, एक किस्सा है। और वो किस्सा है कि जब इस गीत को लेकर बर्मन साहब गए इनके पास, बर्मन साहब गए गुलजार साहब के पास में, तो उन्होंने कहा, यार पंचम जी ये क्या आप मतलब मुझे लेकर आ रहे हैं, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर की कटिंग आप लेकर आएंगे, बोलेंगे कि जी इसके ऊपर गाना बना दें, ऐसे थोड़ा ना होता है। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये बहुत खूबसूरत है, ज़रा इसके ऊपर आप एक बार बनाओ। उन्होंने धुन बनाई और जो धुन बनी है वो गीत बनकर तैयार हुआ है कि वाह, आज भी वो गीत हर किसी की पसंद है। वो गीत हम आपको सुनवाएंगे अभी कुछ ही देर में, लेकिन हाँ उससे पहले हम संदेश अपने शामिल कर लेते हैं जो हमारे श्रोताओं ने हम तक पहुंचाए हैं। और ये संदेश आया हमारे पास गांव लोहगढ़ ठाकुरा वाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज सिंह का, नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर और पुनाराम कृष्णा देवगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है पलारी छत्तीसगढ़ से। अगला संदेश आया है समडल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा गुप्ता, अदिति, राधे, दीपक गुप्ता, श्रीमती अंकु राघव गुप्ता के साथ। पिपरिया से हमारे साथ जुड़े कमलकांत गुप्ता, श्रीमती दीपा रिमझिम गुप्ता के साथ। सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी हमारे साथ जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से। सुनील पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अगला जो संदेश हम तक आया है उसको पहुंचाने वाले हैं ग्राम नागर कोहरा, जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू के साथ। मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, लवली, पिंकी, आरती अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नलेश्वर नगर नरविल महाराष्ट्र से पीएस नववानकर, निर्मला, विशाल नववानकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीबी राणा नेहरू विहार दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सांबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांव फरा से जिला हिसार से राजकुमार डूड़ी, प्रमोद कुमार डूड़ी जुड़े हैं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा

पीलू नायक जी हमारे साथ जुड़े हुए कैथल हरियाणा से, मधु नायक, देव शंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनता वर्मा, रुद्र वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीरगांव गुजरात से जुड़े हैं अजित भावसर, प्रमिला भावसर, भावेश सन्नी भावसर जुड़े हुए हैं, अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान, मास्टर जिव्यम जैन हमारे साथ एक बार फिर से सरधना से जुड़े हुए हैं, अजित भावसर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत जानकारी इन्होंने हम तक पहुंचाई है इस फिल्म से जुड़ी हुई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उषा मोहन जी जुड़े हैं पीटीआई संसद मार्ग से, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार जी हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, भूषण खेरा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इनके फजिलका पंजाब से, खेड़ा परिवार हमारे साथ जुड़ा है, भूषण खेड़ा, विशु, विशाल, लाड़ी, शालिनी, टिवानशी, वाणी, आरबी खेड़ा जी, जीवन सिंह भूख हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मोहम्मद सईद अब्बासी जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से, निगत परवीन अब्बासी, शहनवाज फरजान, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्यों के साथ। अगला संदेश जो हम तक आया है लालगिरी गोस्वामी हेमलता जी का है, रघुनाथपुरा जिला, श्री गंगानगर, राजस्थान से। तो ये थे वो संदेश जिनके ज़रिए सभी हम तक जुड़े दोस्तों, और सभी संदेशों को हमने शामिल किया। और जाने से पहले दोस्तों यही कहूँगी मैं आप सभी से कि जो हमारी फिल्म है इजाज़त, जो कि ट्रेन के सफ़र में शुरू हुई और अब इस सफ़र को मैं यहीं पर रोकूंगी, ज़रूर उम्मीद करूँगी कि इस कहानी ने, इस इन किस्सों ने आपके दिल को छुआ होगा। फिर से मिलेंगे किसी और फिल्म के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और हाँ, ज़िंदगी को खुलकर जीने की अपने आप को दीजिए इजाज़त। तो अब मुझे भी दीजिए इजाज़त इस कार्यक्रम की समाप्ति की, छोड़े जाती हूँ आप सभी के लिए आशा जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से, लीजिए सुनते हैं समाचार।
1: खबरां दी नाल मैं सरबजीत कौर, पहले इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पांच देशां दे दौरे दे चौथे पड़ाव ते अज नॉर्वे दे ओस्लो पहुंचे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम ते दक्षिणी कोरिया दे दौरे ते रवाना। केरल में सीनियर कांग्रेसी नेता ने आज केरल विच मुख्यमंत्री वजो सहु चुकी। पंजाब विच 26 मई नूं होण वाले नगर निगम चोणां लई 10,809 उम्मीदवारां दे नामजदगी पत्र दाखिल कीते। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खेड़ी जिले विच इक सड़क हादसे विच 9 लोगों की मौत। आईपीएल क्रिकेट विच चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद नाल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज पांच देशों के दौरे के चौथे पड़ाव च नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए ने। इस दौरे च भारत नॉर्वे दरमियान दवली गलबात तीजा भारत नॉर्डिक सिखर सम्मेलन शामिल है। ए दौरा नॉर्डिक देशों दे नाल भारत दे संबंधां नूं गति प्रदान करेगा। अज प्रधानमंत्री नॉर्वे दे राजा हेराल्ड 5वें ते राणी सोनिया नाल मुलाकात करनगे। इस तों बाद ओह नॉर्वे दे प्रधानमंत्री योनास गारस्टोरे नाल तवल्ली गल्लबात करनगे। ओह भारत नॉर्वे व्यापार ते खोज सिखर सम्मेलन नूं भी संबोधन करनगे। कल प्रधानमंत्री तीजे भारत नॉर्डिक सिखर सम्मेलन च हिस्सा लैणगे। मौजूदा समय विच भारत ते पांच नॉर्डिक देशां दरमियान करीब 19 अरब डॉलर दा व्यापार हुंदा है। व्यापार दे प्रमुख खेत्रां विच नवीआं काढ़ां, रक्षा, ऑप्टिक अते लोक संपर्क जिहे कई खेत्र शामिल ने। इस तों पहलां श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट विच कहा कि उन्हां दी स्वीडन यात्रा दौरान कई अहम नतीजे सामने आए जो दवल्ले संबंधां विच नवीं गति लियाउणगे। उन्हें कहा कि अपने दवल्ले संबंधां नूं रणनीतिक भाईवाली तक वधाउण, संयुक्त नवीनता भाईवाली 2.0 ते भारत स्वीडन तकनालोजी ते आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस कोरीडोर की शुरुआत करन तों लैके अगले 5 सालां विच दवल्ले व्यापार नूं दुगणा करन दे इक उद्देश पूर्ण टीचा तय करन तक चर्चावां बेहद लाभकारी रहीआं।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हमनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन का 2 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद अब नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं। उनके इस दौरे में भारत और नॉर्वे के दरमियान बाहमी बातचीत होगी, साथ ही तीसरी भारत नॉर्डिक सरबराह मीटिंग में भी वो शिरकत करेंगे। जनाब मोदी के इस दौरे से नॉर्डिक मुल्कों के साथ भारत के ताल्लुकात को तकवियत मिलेगी। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे के अपने पहले दौरे पर ओस्लो पहुंच गए हैं। पिछले 43 बरस में भारत के किसी भी वजीर आजम का नॉर्वे का पहला दौरा है। जनाब मोदी आज नॉर्वे के शाह हारल्ड पंजुम और मलका सोंजना से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के वजीर आजम योनास गहर स्टोरेस के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वो भारत नॉर्वे कारोबारी और तहकीकी समिट से भी खिताब करेंगे। इस दौरे में माहौलियात के लिए साजगार टेक्नोलॉजी और समुद्री मीशत जैसे शुबों पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। इसके अलावा तजारत सरमाकारी के मौाक़े को भी फ़रोग हासिल होने की तवक्को है। कल वजीर अजम तीसरी भारत नॉर्डिक सरबरा कॉन्फ्रेंस शिरकत करेंगे। हाल ही में नाफिज किए गए तजारती और इकतदी शराकतदारी माहदे के तनाजुर में तवक्को की जा रही है कि सरबरा कॉन्फ्रेंस रुकन मुल्कों के साथ इकतदी ताल्लुकात को मजीद मुस्तक करने में मददगार साबित होगी। सरजद भारत और 5 नॉर्डिक ममालिक के दरमियान दो तरफा तजारत 19 अरब डॉलर मालियत की है। नॉर्वे के ओस्लो से संगीता गोडबुले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि स्वीडन के उनके दौरे में ऐसे कई अहम नतायज सामने आए हैं जिनसे बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह तक पहुंचाने से लेकर मुश्तरका इख्तराई साझेदारी के दूसरे मरहले के आगाज और भारत स्वीडन टेक्नोलॉजी और मसनूई जहानत कॉरिडोर से लेकर अगले 5 साल में दो तरफा तजारत को दोगुना करने का बड़ा मकसद तय करना उनके दौरे की के खास निकात रहे और बातचीत काफी मुफीद साबित हुई। जनाब मोदी ने स्वीडन के आवाम, वहां की सरकार और वजीर आजम उल्फ क्रिस्टर्सन का गर्मजोशी और दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा किया। हमारे नामनिगार ने बताया है कि बाहमी ताल्लुकात को कलीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचाने में 2026 से 2030 तक के भारत स्वीडन मुश्तरका अमली मंसूबे का अहम रोल रहा। जामे खाके का मकसद अगले 5 साल में दो तरफा इकतसादी लेन देन को दोगुना करना और मेक इन इंडिया और मेड विद स्वीडन पहल के तहत इश्तराक को मजीद मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम ने मोदी ने कहा है कि भारत आज सरमायाकारी इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग के लिए दुनिया के सबसे पुरकशिश मुल्कों में से एक है। जनाब मोदी स्वीडन के अपने 2 दिन के दौरे में गोथेनबर्ग में सनअत से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि मुल्क में सभी कंपनियों के लिए अच्छे मौके दस्तियाब हैं। साथ ही उन्होंने यकीन दिलाया कि आने वाले बरसों में भारत के सरकर्दा प्रोजेक्टों का हिस्सा बनने के लिए उनके वास्ते एक इदारा जाती निज़ाम समेत मुख्तलिफ इकदाम भी किए जा सकते हैं। अपने खिताब में जनाब मोदी ने भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तजारत के तारीखी समझौते के मुज़ाकरात कामयाबी के साथ मुकम्मल होने समेत भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात में तेजी आने का खैर मकदम किया। केरलम में कांग्रेस के सरकर्दा लीडर वीडी सतीशन की सरबराही में नई यूडीएफ वजारत को आज तिरुवनंतपुरम में हलफ दिलाया गया। रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए वजीरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। साबिक अपोजिशन लीडर और केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के साबिक सदस्य रमेश चिन्नीथाला, केपीसीसी के मौजूदा सदस्य सनी जोसेफ, केपीसीसी के साबिक सदस्य के मुरलीधरन और IUML के लीडर PK कुनाहली कुट्टी नई वजारत में सरकर्दा रहनुमाओं में शामिल हैं। मजमूई तौर पर 21 अरकान को हलफ दिलाया गया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर VD सतीशन को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मरकजी सरकार अवाम की उमंगों की तकमील में केरलम की नई तश्कील शुदा सरकार की हर मुमकिन मदद को यकीनी बनाएगी। मगरबी बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की जेर क्यादत BJP सरकार ने एक अहम फैसला करते हुए रियासती सरकार की मुलाजमत में आने वाले उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में इजाफा कर दिया है। ग्रुप ए असामियों में भर्ती के लिए उम्र की हद अब 41 साल तय की गई है, जबकि ग्रुप बी के ओहदों के लिए इसे बढ़ाकर 44 साल कर दिया गया है। ग्रुप सी और ग्रुप डी असामियों के लिए ज्यादा से ज्यादा उम्र अब 45 साल होगी। सरकार ने यह वजाहत की है कि जहां कहीं उम्र की बालाई हद पहले ही नाफिज है वहां मौजूदा जाब्ते बरकरार रहेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज रायपुर में अगले सिलसिले की 400 डायल 112 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला विष्णुदेव साई, रियासती असम्बली के स्पीकर रमन सिंह और नायब वजीर आला विजय शर्मा भी मौजूद थे। अब तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में डायल 112 की खिदमत दस्तियाब थी। प्रोग्राम के बाद जनाब शाह बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वो नेतानार गांव में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कैंप के अहाते में कायम करदा सरकारी खिदमात के मरकज का इफ्तिताह करेंगे। ये मरकज दूर दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों को सरकार और डिजिटल खिदमात तक आसानी से रसाई हासिल करने में मदद फराहम करेगा। उत्तर प्रदेश के लखीमपुरी खेरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में कम 9 अफराद की मौत हो गई। मालूम हुआ है कि एक तेज रफ्तार ट्रक सामने से आने वाली एक गाड़ी से टकरा गया। इस गाड़ी में 2 खवातीन समेत 10 अफराद सफर कर रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में लोगों की अमवात पर रंजोगम का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर सदर जमहूरिया

द्रौपदी मुर्मू ने उन कुंभों से ताजियत का इजहार किया है जिनके अरकान खानदान इस हादसे में चल बसे हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मरने वालों के लवाहिकीन के लिए वजीर आजम के कौमी इमदादी फंड से 2-2 लाख रुपए की इमदाद का ऐलान किया है, जबकि जख्मियों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। जनाब मोदी ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की है। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा 79वें आलमी सेहत असम्बली में शिरकत के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये 6 रोजा तकरीब आज जनेवा में शुरू हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि इस साल का मौजू आलमी सेहत की असर नौ तश्कील एक मुश्तरका जिम्मेदारी आलमी सतह पर सेहत से मुतालिक चैलेंजों को दूर करने के लिए इज्तिमाही अमल की अहमियत को उजागर करता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज वियतनाम और जनूबी कोरिया के दौरे पर रवाना हो गए हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इस दौरे से इन दोनों मुल्कों के साथ भारत के राबतों के दायरे में मजीद वसअत आएगी। जनाब सिंह ने कहा कि इस दौरे में कलीदी फौजी इश्तराक को फरोग देने, दिफाई सनती साझेदारी को मुस्तहकम बनाने और भारत बहरुल काहिल खित्ते में बहरी तालमेल को बढ़ावा देने पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ताजा तरीन पॉइंट्स टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद फिलहाल 12 मैचों में 14 पॉइंट्स के साथ तीसरे मकाम पर है। उसने अब तक 7 मैचों में जीत हासिल की है और प्लेऑफ में अपनी जगह बनाने के लिए मजबूत दावेदार है। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंच गए हैं, जहां वो नॉर्वे के अपने हम मनसब योनास गहर स्टोरे के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि स्वीडन के उनके दौरे से बाहमी ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। दोनों मुल्कों ने अगले 5 साल में दो तरफा तिजारत दोगुना करने से इत्तेफाक किया है। कांग्रेस के लीडर वीडी सतीशन को केरलम के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। 20 काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में इमरजेंसी की सूरत हाल में काम करने वाली 400 गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मेजबान चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।

0: points from 12 matches, having won 7 matches so far and remain firmly in the playoff race. Chennai Super Kings are 5th, with 12 points from as many matches, having registered 6 wins this season. India finished the Asian Weightlifting Championships 2026 in Gandhinagar with 10 medals, including 1 silver and 9 bronze, marking a big improvement from the previous edition in Chiang Shan, where India returned without a medal. Commonwealth Games bronze medalist Lovpreet Singh delivered India's best performance on the final day by finishing 5th in the men's 110 kg+ category. The India Meteorological Department IMD has forecast heat wave to severe heat wave conditions over the plains of northwest India and central India during many days of the week. According to IMD, heat wave conditions are likely to prevail over Uttar Pradesh till Saturday. Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi will also experience similar conditions. The weather agency predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over northwest parts of the country. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi arrives in Oslo to hold bilateral talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre this evening. Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double trade in next 5 years. Congress leader V.D. Satheeshan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 cabinet ministers. West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन

0: संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
1: इस यात्रा के दौरान छह प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को 2 गुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
2: നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता PK कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए ये सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है।

0: जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
1: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
2: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
3: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

0: इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
2: बदलो बदलो आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत, खैर मकदम करती हूँ मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। कार्यक्रम एक ही कलाकार में स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, कार्यक्रम है एक ही कलाकार, और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम हर रोज़ आपको रूबरू कराते हैं, हर बार एक अलग शख्सियत से। आज भी इस कड़ी में हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी ही शख्सियत को, जिसकी वैसे लोग कहते हैं कि जो रंगमंच का सिकंदर होता है ना, वो रुपहले पर्दे पर इस जो सिल्वर स्क्रीन होती है उसकी चकाचौंध में खो जाता है। लेकिन आज इस कार्यक्रम में कहानी हम एक ऐसे शख्स की करेंगे जिसने जब स्टेज संभाला तो एक हिस्ट्री बन गई, और जब कैमरे के सामने कदम रखा तो कॉमर्शियल सिनेमा के दौर में उसने पैरेलल सिनेमा का भी परचम लहराया। जब कैमरे के पीछे गया तो भी उसने एक अलग ही कमाल दिखाया। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस कड़ी में बात करने वाले हैं एक ऐसे ही मल्टी टैलेंटेड व्यक्ति के बारे में, एक ऐसी शख्सियत से आज हम आपको रूबरू करवाने वाले हैं जो कि बहुत से गुणों की खान है, जो एक अभिनेता है, एक निर्देशक है, एक लेखक है, मतलब आप कह सकते हैं कि वो बहुत से गुणों की खान है। और अगर हम बात करेंगे उसके सम्मानों की, पुरस्कारों की, तो राज्योत्सव पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री, पद्मभूषण, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, कालिदास सम्मान, और दक्षिणी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से भी उन्हें अवार्ड मिला है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे भाई इतने सारे अवार्ड

सारी चीज़ों के साथ में आखिर आज वो शख्सियत कौन है जिससे हम आपको रूबरू कराने वाले हैं। तो दोस्तों, थाम के बैठी अपनी कुर्सी की पेटी, हम लेके चल रहे हैं आपको अपने साथ गिरीश कर्नाड के बारे में जानकारी देने वाले इस खूबसूरत से सफ़र पर। तो लीजिए, करते हैं शुरुआत इस खूबसूरत से गीत के साथ, जो कि है उन्हीं की फिल्म से। जी हाँ दोस्तों, भूपिंदर की आवाज़ में सुनते हैं फिल्म निशांत से यह खूबसूरत सा गीत।

जी दोस्तों, आप जुड़े हैं कार्यक्रम एक ही कलाकार के साथ और आज हम बात कर रहे हैं 19 मई सन 1938 को जन्मे गिरीश कर्नाड के बारे में, जो सिर्फ एक नाटककार नहीं थे बल्कि एक बेमिसाल अभिनेता, दूरदर्शी निर्देशक और एक बहुत अच्छे विचारक थे। उन्होंने बहुत कुछ लिखा कन्नड़ भाषा में, लेकिन उनके लिखे हुए जो नाटक थे वो सिर्फ कन्नड़ भाषा तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि हिंदी, अंग्रेज़ी और यहाँ तक कि दुनिया भर की जो भाषाएं हैं उसमें उन नाटकों को ढाला गया और उन नाटकों ने स्टेज पर आग लगा दी। और उन्हीं नाटकों में से कुछ नाटक ययाति, तुगलक, हेवदन और नागामंडल, ये कुछ ऐसे नाटक थे जो कि सिर्फ हम कहेंगे कि नाटक नहीं थे बल्कि हमारे भारतीय थिएटर की जो इंडस्ट्री है उसमें एक मील का पत्थर साबित हुए। मतलब आज भी अगर किसी को थिएटर में कुछ सीखना है तो इन नाटकों के ज़रिए वो बहुत कुछ सीख सकता है। और जो कर्नाड साहब थे उनके लिखने की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो अपनी जो लिखने के लिए थीम या जो सोच आती थी वो हिस्ट्री में से निकालते थे या फिर मिथ में से लेते थे और उन चीज़ों को उठाकर वो प्रेजेंट के टाइम पर आज के दौर से उनको जो

छोड़ करके उस नाटक को लिखा करते थे। वहीं जैसे है वदन जो नाटक उन्होंने लिखा, उसमें उन्होंने जो एक इंसान है, जो एक आदमी है, वो किस तरह से अपने आप को पूरा करने की चाह दिखाता है, उसके अंदर की जो चाह होती है उसको दिखाया गया। वहीं दूसरी ओर नागा मंडल जो नाटक है, उसमें उन्होंने छोटी छोटी लोक कथाओं के जरिए दिखाया कि एक महिला का, एक औरत का जो अस्तित्व है, उसकी इच्छाओं का जो उसकी इच्छाओं की जो आवाज़ है वो किस तरह से पूरी हो सकती है। उन्होंने बहुत कुछ चीज़ों को छोटे छोटे रूप में दिखाया अपने नाटकों के जरिए।

ये दोस्तों गिरीश कर्नाड जी के बारे में हम बात कर रहे हैं और बात करते हैं उनके फिल्मी सफ़र के बारे में। साल था सन 1970, कन्नड़ फिल्म आई संस्कार और इस फिल्म से कर्नाड ने बतौर स्क्रिप्ट राइटर और मेन अभिनेता के रूप में अपना फिल्मी सफ़र शुरू किया। पहली फिल्म और सीधा लिया नेशनल अवार्ड पर कब्ज़ा। पहली फिल्म से दिखा दिया कि भाई कुछ तो है इस बंदे के अंदर, सिर्फ चेहरा दिखाने के नहीं बल्कि सिनेमा की परिभाषा बदलने के लिए आया है ये व्यक्ति, और बिल्कुल वही किया। हिंदी सिनेमा को एक

नया रास्ता दिखाया गिरीश कर्नाड ने। और तभी निर्देशक श्याम बेनेगल की नज़र जब उनकी उस कड़क कद काठी और दमदार आवाज़ पर पड़ी तो बनाया उन्होंने अभिनेता और इतिहास बना दिया। जी हाँ दोस्तों, अंकुर, निशांत और मंथन जैसी फिल्मों में उन्होंने काम किया और अभिनय किया, दिखाया कि किस तरह से शोषित और शोषक के बीच में जो द्वंद होता है वो सब उन्होंने अपनी इन फिल्मों के ज़रिए दिखाया। और अपने हर सिनेमा में, अपनी हर फिल्म में अपनी संजीदा अदाकारी से उन्होंने हर सिनेमा प्रेमी का दिल जीता। लेकिन ठहरो भाई ठहरो, कर्नाड सिर्फ कैमरे के सामने अपना जादू नहीं दिखाना चाहते थे या सिर्फ लिख कर अपना जादू नहीं दिखाना चाहते थे, और धीरे धीरे उन्होंने कमान संभाली कैमरे के पीछे की। वो आ गए बतौर निर्देशक और उन्होंने सबसे पहले डायरेक्ट की कन्नड़ फिल्म वंशवृक्ष और तबलियो। ये दोनों इतनी बेहतरीन फिल्में बनी कि उसके बाद इन्हें लगा कि वाकई मुझे अब सिनेमा के निर्देशन में भी उतरना चाहिए, और उन्होंने कन्नड़ फिल्में बनाना शुरू किया। लेकिन उसके बाद वो हिंदी फिल्मों में भी निर्देशन के लिए उतरे और साल सन 1984 में उन्होंने बनाई फिल्म उत्सव। ये फिल्म एक संस्कृत नाटक मृच्छकटिकम पर आधारित था और इस फिल्म में उन्होंने रेखा और शेखर सुमन को मुख्य भूमिकाओं में लिया। कला, सौंदर्य, संगीत का ऐसा बेजोड़ तालमेल दिखाया गया फिल्म उत्सव में जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा। और वही फिल्म का गीत अभी आपने सुना सुरेश वाडेकर की आवाज़ में। तो दोस्तों, सुरेश कर्नाड जी के बारे में बातें चलती रहेंगी, ये सफ़र अभी यूं ही चलता रहेगा। और अभी हम सुनते हैं लता जी की आवाज़ में खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फिल्म स्वामी से।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: जी दोस्तों, वक्त बदला, सिनेमा बदला, लेकिन कर्नाट का जलवा नहीं बदला। नई पीढ़ी ने उन्हें देखा बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की फिल्म एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, जिसमें उन्होंने रॉकी चीफ शाह साहब का किरदार निभाया। वही पुरानी कड़क आवाज़, रौबदार शख्सियत देखकर थिएटरों में तालियां गूंज उठी। वैसे दोस्तों, बहुत ही खूबसूरती के साथ उन्होंने किरदार निभाया। और लीजिए, सुनते हैं उसी फिल्म से ये शानदार गीत।

ये संदेश हम शामिल कर लेते हैं अपने इस कार्यक्रम में। ग्राम लोहगढ़ ठाकुरावाला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वर्ण सिंह गिल, तलचीत राजदीप गुरनूर, गुरनाल अविराज सिंह, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार हमारे साथ जुड़े हैं, फारूक अली खान जी हमारे साथ जुड़े हैं कस्बा गन्नौर यूपी से, फैजी फराज, फरहीन, फरहान, फारिया, ताहिरा के साथ मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, चिरमिरी कोरासिया कालरी से जुड़े हैं इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे के साथ, अनिल मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं पीटीआई बिल्डिंग संसद मार्ग से, ग्राम फरासी जिला हिसार से जुड़े राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी। अगला संदेश भेजा है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव के साथ में। ये अगला संदेश हम तक पहुंचाया है संदीप मक्कर, ज्योति मन्नत मक्कर जी ने, भारत मक्कर के साथ कमल साहनी, पिंगा वाला चौक, गुरैया, जालंधर, पंजाब से। मोहम्मद सईद अब्बासी जी हमारे साथ जुड़े हैं ऊपरकोट मोहल्ला चौकेटी बुलंदशहर से, और इनके साथ हैं निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। अगला संदेश हम तक आया है और इसको पहुंचाने वाले हैं अनिल मोहन जी, और इनके साथ हैं उषा मोहन, मधु नायक जी, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से जुड़े हैं पीएस नववानकर, निर्मला, विशाल नववानकर जी। और अगला संदेश आया है भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा का, दत्रेंगी से। संजय डिंगिया, नमन अपार डिंगिया हमारे साथ जुड़े हैं बागपत उत्तर प्रदेश से, सुदर्शन मुखी, अनिता, सिमरन मुखी जी जुड़े हैं शांतिनगर सोनीपत से, और ये अगला संदेश हम तक आया है इसको पहुंचाने वाले हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास, और इनके साथ हैं आशा देवी। दोस्तों ये थे वो संदेश, और ये अगला संदेश एक और हम शामिल कर लेते हैं। ये आया है ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, इसको भेजने वाले हैं उदयभान पाल, जय हिंद, दीक्षा, प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश बघेल और उनके परिवार के सभी सदस्य। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमने ये संदेश शामिल किए, और आज हमने बात की कर्नाड साहब के बारे में, गिरीश कर्नाड जी, गिरीश कर्नाड जी जिन्होंने ना रंगमंच पर रुके ना सिनेमा पर, और उन्होंने हर जगह पर अपना जो जलवा है वो यूं ही बिखेरा। वैसे आपने देखा होगा कि वो सिर्फ सिनेमा, रंगमंच और यहीं तक सीमित नहीं थे, बल्कि उन्होंने टीवी पर भी अपना जलवा बिखेरा। मालगुड़ी डेज तो आपको याद ही होगा, और भाई उस वक्त में मालगुड़ी डेज, इंद्रधनुष, खानदान, अपना अपना आसमान जैसे कार्यक्रमों से वो टीवी के ज़रिए हर घर में, हर किसी की, बच्चे बच्चे की पहचान में थे। दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में आज हमने इनकी बात की, और जाते जाते यही कहूँगी कि थिएटर का जो ये महान अदाकार था उसका एक संवाद मैं आपके सामने ज़रूर बोलूँगी, उनकी ही ज़बानी था ये। उन्होंने कहा था कहानियाँ कभी ख़त्म नहीं होती, वो बस एक होठ से दूसरे होठ तक का सफ़र तय करती हैं। तो दोस्तों अब कर्नाड साहब की कहानियाँ अब आपके पास भी हैं, तो आप भी उन्हें ज़िंदा रखिएगा। तो इसी के साथ ये सफ़र हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, तो मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति इस सफ़र को ख़त्म करने की। जाइएगा कहीं नहीं, छोड़े जाती हूँ बहुत ही खूबसूरत सा गीत उन्हीं की फ़िल्म शिवाय से। इसी के साथ मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही कलाकार, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। वक्त हुआ है NCERT के प्रायोजित कार्यक्रम उमंग का, तो लीजिए सुनते हैं कार्यक्रम उमंग।

0: जाए सब दंग।
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है उमंग कार्यक्रम में।
1: और आपके मित्र अजीत का भी नमस्कार और जोहार।
2: बिना संघर्ष के सफलता बिना नमक के भोजन की तरह होती है, इससे हमारी भूख तो मिट जाएगी लेकिन ये स्वादिष्ट नहीं लगेगी।
1: श्रोताओं, ये सुंदर विचार हमें भेजा था बिहार से वसीम अकरम और गुड़िया खातून जी ने। बिल्कुल सच कहा है, बिना श्रम के सफलता का सच्चा आनंद नहीं मिलता
2: जी।
1: आप दोनों का धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव, तुषार देव तामुरिया, डॉली बेबी, पूजा, पुष्कर लेहान, जिज्ञासा, विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: और भटीपुरा महुआ उत्तर प्रदेश से कृष्ण कुमार गुप्ता, कमला देवी गुप्ता, सुधा, कविता, पंकज, आयुषी और मीहू का संदेश हमें मिला है। लिखते हैं,
2: गुरुवार 23 अप्रैल को सुविचार को स्पष्ट रूप से समझाने के लिए आपने जानकारी देते हुए एक दोहा का उदाहरण दिया। इस दोहे में कबीरदास जी विश्वास को न तोड़ने की सीख देते हैं। दोहा इस तरह से था, रहिमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर न जुरे, जुरे गांठ परे जाए।
1: आपने आगे लिखा है, आपके द्वारा इस दोहे के रचनाकार कवि का नाम कबीरदास बताया गया। वास्तव में इस दोहे को रहीम ने लिखा है, न कि कबीरदास जी ने। धन्यवाद और आभार।
2: आपका भी बहुत बहुत आभार। कृष्ण कुमार जी, आपको भी हमारा विशेष धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रमों को बड़ी बारीकी से सुनते हैं और उन पर प्रतिक्रिया भी देते हैं।
1: तो हम कहना चाहते हैं कि आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है हमेशा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया संदेश भेजते रहिए। अगला संदेश सुनते हैं जो हमें मिला है।
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलऊदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी।
1: और करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर।
2: छोटी बलिया मुंबई से आमना अंसारी, जुबैदा और नेहा अंसारी।
1: और बेगूसराय बिहार से हमें संदेश मिला है इकबाल मोगा, देव अजय मोगा और अहमद मोगा का।

0: लिखते हैं।
1: आज की प्रस्तुति कल्पना चावला जो सितारों में खो गई हमें बहुत अच्छी लगी, आपको साधुवाद।
0: और आप सबको हमारा हार्दिक आभार। आइए बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
1: इस प्रश्न का उत्तर है, नीली वेल को आकार में समुद्र का सबसे बड़ा जीव माना जाता है। इसका वजन लगभग 100 से 150 टन का होता है, यानी किलोग्राम के अनुसार ये 1 लाख से 1.5 लाख किलोग्राम की होती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, थर्मल लैग किसे कहते हैं।
1: इसका उत्तर जान लेते हैं साथियों, गर्मियों में सूर्य की किरणें जब सीधी पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है। सुबह से सूर्य के ताप के कारण धरती गर्म होती रहती है और 12 बजे सूर्य की किरणें धरातल पर सीधी पड़ती हैं।
0: जी
1: बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसीलिए उनका ताप कम होने लगता है। लेकिन इस दौरान यानी 12 बजे के बाद भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है, जिसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: और हमारा तीसरा प्रश्न था कि प्रकृति को हमारे भले की चिंता रहती है, ऐसा क्यों कहा गया है।
1: इसका उत्तर है साथियों, प्रकृति जलवायु के अनुसार हर मौसम में वही उपज देती है जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। इसके अनेक उदाहरण हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में जो फल आते हैं उनमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है ताकि हमें गर्मी के मौसम में इसका लाभ मिले।
0: और हमारा अगला प्रश्न श्रोताओं प्राथमिक उपचार से संबंधित था। हमारा प्रश्न था कि लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीले करने से उसे किस प्रकार की राहत मिलती है।
1: तो साथियों इसका उत्तर भी जान लेते हैं, लू से पीड़ित व्यक्ति के कपड़े और बेल्ट ढीली करने से सांस लेने में आसानी होती है और शरीर का रक्त संचार आसानी से हो पाता है।
0: और अब हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, बच्चे अपनी गर्मियों की छुट्टी में और क्या क्या कर सकते हैं।
1: इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे विद्यार्थी कोई भी शास्त्रीय नृत्य या वाद्य यंत्र सीख सकते हैं, जैसे हारमोनियम, तबला या बांसुरी।
0: जी विमरेश जी, ये सचमुच एक बड़ी अच्छी सलाह है। तो श्रोताओं अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है।
0: 8800440559 हमारा IVRS नंबर है और audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमें भेज सकते हैं। और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम शो ऑफ क्लाउड्स।
1: कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की एक कविता पर आधारित ये कार्यक्रम बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे प्रकृति का ध्यान से अवलोकन करें और उसकी सुंदरता का अनुभव करें। कार्यक्रम एक सुंदर गीत के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें एक बच्ची आकाश में बादलों को ध्यान से देखकर उनके विभिन्न आकारों में पशु पक्षियों की छवि की कल्पना करती है।
2: Hello children, how are you?
3: We are fine, sir.
4: I am fine.
5: I am good, sir.
2: Fine, good. Okay, so tell me, what do you like most?
4: I like playing, sir.
6: I like painting, sir.
2: Very good. Anyone else?
7: Sir, I like singing.
8: I like playing with my pets.
2: Oh, that's great. Now tell me, do you like looking at the beautiful flowers in the garden?
3: Yes, sir.
6: We like.
2: Lovely butterflies?
3: Yes, sir.
2: And lovely colorful chirping birds?
3: Yes, sir. We like it.
2: That's very nice, children.
6: Sir, I go to the park with my parents on holidays.
2: Okay. It's always wonderful to see the beautiful nature, isn't it? The rivers, the mountains, and the green trees.
3: Yes, sir.
2: Okay, so let me tell you the story of a sweet child like you.
3: Like us?
2: Would you like to listen?
3: Yes, sir.
6: We love to listen the story.
2: To know what the child did, you have to listen to a beautiful poem. After listening to the poem, you will know what the child did. Okay?
3: Okay, sir.
2: Very good. Now I am going to read this poem. You have to repeat after me. Okay?
3: Okay, sir. We love to recite it.
2: As I lie on my back.
3: As I lie on my back.
2: Looking up at the sky.
3: Looking up at the sky.
2: I see a big white bear. Looking down at me.
3: Looking down at me.

0: ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି।
1: ଇନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଅଫ୍ ଦ ଫରେଷ୍ଟ ସ୍ପିସିଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା।
0: ଜଙ୍ଗଲୋ କି ଇନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ କହି ଜାନେ ବାଲି ତୁଲସୀ ଗୌଡ଼ା
2: କୋ ଦେଶ କେ ଚୌଥେ ସବସେ ବଡେ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ସେ ନିବାଜା ଗୟା ହୈ।
3: ୟେ ଆକାଶବାଣୀ ହୈ। प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रपति भवन के एक भव्य समारोह में श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा सन 2020 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
4: श्रीमती तुलसी गौड़ा, समाज सेवा, पर्यावरण।
3: यह सम्मान पर्यावरण संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देश भर में प्रसन्नता की लहर।
5: आठ नवंबर 2020 को भारत सरकार ने श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया, जो भारत के नागरिकों को दिया जाने वाला चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है। राष्ट्रपति भवन के रेड कार्पेट पर नंगे पांव चलते हुए श्रीमती तुलसी गौड़ा पद्मश्री सम्मान लेने जब महामहिम राष्ट्रपति के पास पहुंची, तो सादगी और विनम्रता की प्रतिमूर्ति इस आदिवासी महिला को देखकर सभागार देर तक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजता रहा।

0: उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र पर्वतों और सघन जंगलों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। पहाड़ों से उछलती कूदती नदियां जब घाटियों और समतल मैदानों से कल कल करती हुई गुजरती हैं, तो एक अनोखा नजारा पेश करती हैं।
1: इस सुरम्य वातावरण को और भी संगीतमय बना देता है पक्षियों का कलरव। इस क्षेत्र में अनेक जनजातियां रहती हैं। उनके जनजातीय संगीत और नृत्य तो मानो संपूर्ण सौंदर्य में चार चांद लगा देते हैं। ये जनजातियां मुख्य रूप से खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर हैं। यहाँ के आदिवासी विशेष रूप से नर्सरियों में बागबानी करके औषधीय पौधों को उगाने का कार्य करते हैं।
0: समृद्ध आदिवासी संस्कृति और प्रचुर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच तुलसी गौड़ा का जन्म 1944 में होनाली गांव के हलक्की आदिवासी परिवार में हुआ था। पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र से नर्सरी में काम करना शुरू किया। निर्धनता के कारण कभी वो स्कूल नहीं जा पाई।
1: बड़ी हो जाने पर तुलसी ने अपनी माँ और बहनों के साथ गांव की ही एक सरकारी नर्सरी में दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करना शुरू किया। पौधों से उनका बहुत लगाव था। तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
0: एक बार की बात है, उनके गांव की नर्सरी में वन विभाग द्वारा कुछ पौधे लाए गए। वो औषधीय पौधे थे और बहुत महंगे भी। वन विभाग की योजना थी बड़े पैमाने पर इन औषधीय पौधों की खेती करने की। पौधे रोप दिए गए, लेकिन एक दो दिनों के बाद वो मुरझाने लगे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो तुलसी की कार्य निष्ठा और लगन को देखते हुए उन्हें उन पौधों की देखरेख का विशेष काम सौंपा गया।
1: कुछ ही दिनों में उन पौधों में जान सी आ गई और वो खूब हरे भरे होकर पनपने लगे। इस घटना से तुलसी का नाम स्थानीय वन विभाग में फैल गया और सबने उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। इस घटना को याद करते हुए वो बताती हैं।
2: उन दिनों में करीब 20 वर्ष की थी। पौधों के बारे में मेरा अनुभव बहुत नहीं था। मुझे उस नर्सरी में बुलाया गया था। वहां जाकर मैंने देखा

0: सब कुछ ठीक था। रोज उन्हें पानी दो बार दिया जाता था और खाद की भी कोई कमी नहीं थी।
1: अच्छा,
0: अक्सर मैंने देखा था कि कई बार ज्यादा पानी देने से कुछ पौधे मर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इन पौधों को जरूरत से बहुत ज्यादा पानी मिल रहा है, क्यों ना पानी की मात्रा कम करके देखा जाए। जब ऐसा किया तो दो दिनों में पौधों में कुछ अच्छे बदलाव आए। हाँ।
1: ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई तुलसी जी।
0: जी, पौधों के बारे में ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें कितना पानी दिया जाए
1: और कितना नहीं दिया जाए। हाँ। तुलसी जी, ये तो हुई पानी की बात। क्या आपने उन पौधों के बारे में कुछ और भी अनुभव किया था?
0: हाँ हाँ, मैंने एक और बात पर गौर किया था कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि यदि उन्हें साथ साथ रखा जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं।
1: अरे वाह, ये तो बहुत ही सचमुच गौर करने वाली बात है।
0: हाँ, और अगर अलग अलग रखा जाए तो वो उस तरह से नहीं बढ़ पाते। कुछ पौधे तो अकेले लगाए जाने से बढ़ते ही नहीं हैं और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर सूख जाते हैं।
1: अच्छा,
0: मुझे लगा कि क्यों ना इन्हें एक दूसरे के आसपास रोप कर देखा जाए। फिर हमने ऐसा ही किया तो पाया कि आश्चर्यजनक रूप से ये पौधे बढ़ने लगे थे। हाँ।
1: अरे, ये तो बड़ी ही अद्भुत बात बताई आपने तुलसी जी। हाँ, लेकिन इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं?
0: देखो, पहली बात तो ये कि पौधों में भी जीवन होता है।
1: बिल्कुल होता है।
0: और मुझे लगता है कि वे भी दुख सुख अकेलापन का अनुभव कर सकते हैं, इसीलिए यदि उन्हें उचित दूरी पर आसपास रखा जाए तो वे बेहतर ढंग से पढ़ते हैं।
1: ये तो बड़ी ही दिलचस्प बात है तुलसी जी,
0: है ना?
1: जी।
0: और उचित दूरी पर आसपास लगाए जाने से वे एक दूसरे के साथ नमी और पोषण को साझा कर सकते हैं।
1: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे?
0: हाँ, बिल्कुल देना चाहूंगी। मेरा कहना है कि देश को बचाने के लिए वन को बचाना होगा। वन बचाओ, देश बचाओ।
2: उन्होंने पेड़ पौधों और जंगल को अपनी जिंदगी में पूरी तरह से शामिल कर लिया था। उनके अंदर पेड़ पौधों की सेवा करने का जज्बा आ गया था। एक बार उन्होंने कहा था,
0: मुझे नहीं मालूम कि जंगल के बारे में मैंने इतना ज्ञान कैसे एकत्रित किया, लेकिन धीरे धीरे मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मैं पौधों से, जंगल से बातें कर सकती हूं। मैं जंगल की भाषा बोल सकती हूं।
2: कहते हैं कि वो जहां भी जाती थी वहां के सभी पेड़ पौधों के बारे में भली भांति बता सकती थी। वो विस्तार से चर्चा कर सकती थी कि किस पौधे को कितना पानी देना है, उन्हें खाद किस मात्रा में देना है और बीजों का संग्रह व भंडारण किस तरह से करना चाहिए।
3: श्रीमती तुलसी गौड़ा जी को जंगल और उसके पौधों के बारे में उनके ज्ञान के कारण पर्यावरणविदों द्वारा जंगल के विश्वकोश और उनकी जनजाति द्वारा वृक्ष देवी और जंगल अम्मा के रूप में जाना जाता है। वो जंगल में हर प्रजाति के पेड़ की माँ या मातृ वृक्ष की पहचान करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती हैं, चाहे वो कहीं भी हो। किसी भी पेड़ का मात्र एक सूखा पत्ता भी उठाकर वो बता सकती हैं कि इसकी माता पेड़ कहाँ है।
2: आइए जानते हैं कि मातृ वृक्ष या माता पेड़ किसे कहते हैं। नाम से ही विदित

0: होता है कि एक बच्चे को पालने में माता की जो भूमिका होती है वही भूमिका इन पेड़ों की भी होती है। तो आइए सुने कैसे। तुलसी जी, अक्सर माता पेड़ों या मातृ वृक्षों के बारे में बात की जाती है, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि माता पेड़ों या मातृ वृक्षों को आखिर पहचानते कैसे हैं?
1: बड़ा अच्छा सवाल है। माता पेड़ या मातृ वृक्ष अपने आकारों से पहचाने जाते हैं।
0: अच्छा।
1: ये जंगल के सबसे पुराने, बड़े, लंबे और घने पेड़ होते हैं। और हाँ, पुराने होने की वजह से इनकी जड़ें बहुत गहरी और दूर दूर तक फैली होती हैं।
0: अच्छा।
1: इनकी जड़ों से आसपास के बहुत से छोटे और समान वृक्ष भूमि के अंदर जड़ों से जुड़े होते हैं और मातृ वृक्ष से भोजन लेते हैं।
0: अच्छा, ये तो बड़ी दिलचस्प बात बताई आपने। अच्छा, मैंने तो ये भी सुना है कि मातृ वृक्ष मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही सुना है आपने। मातृ वृक्ष गोंद की तरह मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं।
0: अच्छा।
1: और आंधी तूफान के समय दूसरे पेड़ों को गिरने या उखड़ने से बचाते हैं।
0: अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात बताई आपने।
1: इतना ही नहीं, यदि कई मातृ वृक्ष आसपास हों, तो छोटे पेड़ों के लिए आसपास की नमी को बनाए रखकर प्राकृतिक ग्रीन हाउस बनाते हैं। वे छोटे और युवा पेड़ों को नाइट्रोजन और कार्बन प्रदान करके उन्हें पालते हैं। समझे?
0: जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियां आपने दी हैं। और अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और बताइए ना मातृ वृक्षों के बारे में।
1: हाँ हाँ, बिल्कुल। देखिए, जड़ें गहरी होने के कारण ये अपनी जड़ों द्वारा आसानी से भूमिगत जल और फास्फोरस जैसे मिट्टी के पोषक तत्वों को खींच लेते हैं और उन पेड़ों को देते हैं जिनकी जड़ें अभी बहुत गहरी नहीं है। ठीक है ना?
0: तुलसी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतनी दिलचस्प और उपयोगी जानकारियां दी हैं आज। एक बार फिर से बहुत धन्यवाद।
1: आपका भी बहुत धन्यवाद।
0: तुलसी गौड़ा जी को 300 औषधीय पौधे और 1,00,000 से भी अधिक पेड़ लगाने का गौरव प्राप्त है। कहते हैं कि उनके द्वारा लगाया गया एक भी पेड़ सूखा नहीं है। उनके द्वारा लगाए गए औषधीय पौधों के इस्तेमाल से उस क्षेत्र की जनजातियों का बड़ा कल्याण हुआ है।
2: 78 वर्षीय श्रीमती तुलसी गौड़ा ने 60 वर्षों तक कर्नाटक वानिकी विभाग में अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो अवकाश प्राप्त जीवन बिता रही हैं। लेकिन आज भी उनकी ऊर्जा कम नहीं हुई है। इन दिनों भी वो अपने गांव की नर्सरी और वानिकी विभाग के दफ्तर में बीजों का संग्रह लेकर पैदल चलती हुई दिखाई देती हैं। किसी ने कहा है, महानतम चीजें हमेशा अति साधारण होती हैं, यानी ग्रेटेस्ट थिंग्स आर ऑलवेज सिंपलेस्ट। तुलसी गौड़ा जी, आपका हार्दिक अभिनंदन।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जंगल इंसाइक्लोपीडिया तुलसी गौड़ा। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटीलैंग लिंगडो, कलाकार अश्विनी वालिया, शिमाहिला परवेज, परवेज गौहर, पूनम एस कुदेसिया और अंजलि, आलेख अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800044559। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in. यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया. अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम तुलसी गौड़ा, और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है. तो अपने मित्र अजीत
4: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए. नमस्कार.
5: उमंग उमंग उमंग उमंग.
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग. ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर. आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम उर्दू मजलिस.

वाला खलाई जहाज में खला के मदार में भेजना है। ये मिशन टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ज़बरदस्त संगे मील की हैसियत रखता है, जिसकी कामयाबी के लिए जदीद तरीन लाइफ सपोर्ट सिस्टम अमले के तहफ़ टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। इसके लिए भारत ने मुमकिन मशीनों के मंसूबों का जामे खाका पेश किया है। अगर हम मुस्तकबिल पर नज़र डालें तो हिंदुस्तान ने अपने स्पेस विज़न 2047 के ज़रिए नहायत अहम और तवील मुद्दती मिशन को वाज़े कर दिया है, जिसमें खला के अंदर इंसानी मौजूदगी बरकरार रखने और एक भारतीय खलाई स्टेशन कायम करने की कोशिशें की हैं। अगर हम 2024 से 2026 की मुद्दत के दौरान इसरो के अहम इकदाम पर नज़र डालें तो चांद की नक्शा साजी, चंद्रयान 3 की कामयाबी, विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान ने चांद की सतह की हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें और डेटा भेजा है। अब इसरो चंद्रयान 4 की तैयारी कर रहा है, जिसका मकसद चांद की सतह से नमूने जमा करना और उन्हें ज़मीन पर वापस लाना है। जैसे जैसे भारत अपनी आज़ादी की शानदार 100वीं सालगिरह के करीब पहुंच रहा है, उसके तरक्याती सफ़र की कामयाबी में साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है। अब बात करते हैं दिफाई साइंस पर। जैसा कि हम जानते हैं, एटमी साइंस के मैदान में भारत एक मजबूत मुल्क है। इसके अलावा दिफाई नुक्ता नज़र से भी भारत ने अपनी हैसियत मजबूत की है। जदीद तहकीकियाती इदारे मुसलसल नए मंसूबों पर काम कर रहे हैं। दिफाई साइंस में भारत मुमकिना कामयाबी पहले ही हासिल कर चुका है। जदीद मिसाइल निज़ाम, जंगी तैयारे, सैटेलाइट और दिफाई टेक्नोलॉजी हमारे मुल्क की ताकत में मजीद इजाफा कर रही हैं। मकामी सतह पर दिफाई साजो सामान तैयार करने की कोशिशें भी जारी हैं, जिससे भारत खुद इन्हसारी और ख़ुद मुख्तारी की तरफ बढ़ रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी में भी हमारा मुल्क तेज़ी से तरक्की कर रहा है, जिसके ज़रिए बेहतर फसलें, नई दवाएं, शोबा सेहत और ज़रात दोनों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं। अब बात करते हैं माहौलियात और साइंस पर। माहौलियाती साइंस के मैदान में भी भारत नए मंसूबों पर काम कर रहा है। शमसी तवानाई, हवा से बिजली, पानी का तहफ्फुज आने वाले वक्त की ज़रूरत हैं। आज हमारा मुल्क दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जो काबिले तरदीद तवानाई की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े सोलर प्लांट्स और इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के मंसूबे मुस्तकबिल के लिए उम्मीद अफजा हैं। हालांकि आलूदगी पर काबू पाने और जंगलात के तहफ्फुज पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। तिब और सेहत के शोबे में बात करें तो भारत दुनिया की बड़े तिब्बी मराकज़ में शामिल है। जदीद हस्पताल, तहकीकियाती इदारे, तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स अहमियत के हामिल हैं। कोरोना के दौरान कई ममालिक को भारत ने वैक्सीन फराहम की और जदीद इलाज के तरीक़ों में भी वसअत पैदा की, जिसके बाइस भारत ने साइंस तरक्की से आलमी सतह पर अपनी ख़ास पहचान बनाई है। कोरोना वबा के दौरान भारत की साइंसी सलाहियत दुनिया के सामने वाज़ह तौर पर उजागर हो गई है। कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत ने इस मैदान में भी नुमाया कामयाबी हासिल की है। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारतीय माहिरीन इंजीनियर्स पर एतमाद कर रही हैं। सॉफ्टवेयर साजी, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मस्नूई जहानत और ऑनलाइन खिदमात में भारतीय कंपनियां भी शामिल हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इन्फोसिस, विप्रो और दीगर भारतीय कंपनियां दुनिया भर में अपनी खिदमात अंजाम दे रही हैं। इसके साथ साथ डिजिटल इंडिया मुहिम के तहत भारत में तकनीकी और इंतजामी सतह पर बड़ी तब्दीलियां सामने आ रही हैं, जिनमें ऑनलाइन बैंकिंग, UPI, डिजिटल लॉकर, डिजिटल शनाख्ती निज़ाम और ई गवर्नेंस ने अवाम की ज़िंदगी में आसानियां पैदा की हैं। आज एक आम शहरी भी मोबाइल फ़ोन के ज़रिए पैसे का लेन देन कर सकता है, सरकारी कागजात हासिल कर सकता है और घर बैठे सस्ती और मुफ्त तालीम भी हासिल कर सकता है। ये सब साइंस और टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन हो पाया है। इसके साथ साथ सनती मैदान में भी भारत ने साइंस के ज़रिए नुमाया तरक्की हासिल की है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल और मशीनरी के शोबों में भारत मेक इन इंडिया मुहिम के तहत आगे बढ़ रहा है। ये मुहिम मकामी पैदावार को फ़रोग देने, रोज़गार के मौके बढ़ाने

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, इसके ठीक बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉरस्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि यह दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
1: आज वे नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ का उनका स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉ. ट्रेडोस अगोनोम गेब्रेसस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की और साझा प्राथमिकताओं पर WHO के साथ सहयोग और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। श्री नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए कल रात स्विट्जरलैंड पहुंचे। स्वास्थ्य सभा का समापन शनिवार को होगा। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता VD सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने UDF सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नए मंत्रिमंडल में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने VD सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल में राज्य विस्तार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक

0: ceremony held at the Central Stadium in Thiruvananthapuram this morning. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Satheesan. A 21-member cabinet took office alongside the chief minister. 16 members in the new ministry are becoming ministers for the first time. Immediately following the swearing-in ceremony, the newly formed government convened its first official cabinet meeting today. Defence Minister Rajnath Singh has reached Hanoi, Vietnam this afternoon on a two-nation visit to Vietnam and South Korea. In a social media post, the Defence Minister said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, boosting maritime collaboration and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. India Meteorological Department IMD forecast heat wave to severe heat wave conditions over plains of northwest India and central India for several days during the week. In Uttar Pradesh, Rajasthan, Punjab, Haryana, Chandigarh and Delhi, heat wave conditions are likely to prevail till Saturday. The weather agency has predicted gradual rise in maximum temperatures by 3 to 5 degrees Celsius over many parts of northwest parts of the country. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए अब सुनते हैं गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। पहली जो सूचना हमें मिली है वो है जिया प्रवीण पुत्री सिकंदर। इनकी उम्र है 17 वर्ष। शरीर की बनावट सामान्य है। कद की अगर बात करें तो कद है इनका 5'6". इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन नंदनगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना है आशिमा से संबंधित। ये हैं शाहबुद्दीन की पत्नी। इन्हें अंतिम बार 12 मार्च 2026 में देखा गया था। इनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है, रंग गोरा है। कद की अगर बात करें तो इनका कद है 5'2". इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन नंदनगरी दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना जिनसे संबंधित है वो है आज़ाद पुत्र मोहम्मद शरीफ। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। शरीर की बनावट सामान्य है, पतले हैं ये। इनके कद की अगर बात करें तो 5'5". इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी मिलती है तो स्टेशन हाउस ऑफिसर पुलिस स्टेशन नंदनगरी दिल्ली में ही संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना है वो है एक अज्ञात शव से संबंधित। ये लगभग 45 साल के पुरुष हैं जिनका कद 5'2", मध्यम शरीर, सांवला रंग है। ये लाल रंग की टी शर्ट व काला लोअर और पैरों में लाल रंग के जूते पहने हुए हैं। इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप स्टेशन हाउस ऑफिसर पीएस मानसरोवर पार्क डिस्ट्रिक्ट शहादरा दिल्ली में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना जिनसे संबंधित हैं वो हैं राज सिंह पुत्र निरंजन सिंह। इन्हें अंतिम बार 25 फरवरी 2025 को घर पर देखा गया था। इनकी उम्र लगभग 46 वर्ष है और अगर इनके कद की बात करें तो ये हैं 5'7". ये घर से नौकरी करने हरिद्वार के लिए निकले थे, उसके बाद वापस नहीं आए। इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप भास्कर कुमार मिश्रा क्षेत्राधिकारी सिकंदराबाद जनपद बुलंदशहर में संपर्क कर सकते हैं। अगली जो सूचना मिली है वो है तनु पुत्री लोकेश निवासी मोहल्ला सराय कुंदन कस्बा व थाना डिबई जनपद बुलंदशहर से। इन्हें अंतिम बार 12 मार्च 2026 को देखा गया था। इनकी उम्र है 18 वर्ष। कद इनका 157 सेंटीमीटर है। शरीर की बनावट की अगर बात

नगरालिया उदयभान थाना अर्निया जनपद बुलंदशहर से। इनकी उम्र लगभग 26 वर्ष है। कद 5 फुट है। शरीर की बनावट सामान्य है। चेहरे का रंग गोरा है। इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप थाना अध्यक्ष थाना अर्निया जनपद बुलंदशहर में संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना जिनसे संबंधित है वो है निशा पत्नी बिनामी पुत्र ब्रजपाल पट्टी हरनाम सिंह कस्बा व थाना सयाना बुलंदशहर से। इनकी उम्र लगभग 19 वर्ष है। कद 5 फुट 1 इंच। शरीर की बनावट सामान्य है। रंग गोरा है। इनसे संबंधित अगर कोई भी जानकारी आपको मिलती है तो आप क्षेत्राधिकारी सयाना जनपद बुलंदशहर में संपर्क कर सकते हैं। तो ये थी गुमशुदा व्यक्तियों से संबंधित सूचना।

30 मिनट का समय रहेगा परिक्रमा का। ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 5:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। पाँच बजकर 10 पर आप सुनेंगे लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंजनी। 5:30 का समय रहेगा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी का। ठीक 6 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 6:05 का समय रहेगा अंग्रेजी में समाचारों का। बजकर 10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संस्कृत सौरभम। 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। छः बजकर 30 का समय रहेगा कार्यक्रम ग्राम संसार का। ठीक 7 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। सात 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत। 7:30 पर आप सुनेंगे गजल और कव्वाली पर आधारित कार्यक्रम। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। 8 आप सुनेंगे गीत मालिका। 8:45 पर आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। ठीक 9 आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 9:15 का समय रहेगा उर्दू में समाचारों का। नौ 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। ठीक 10 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 10:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गुलदस्ता। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। 11 आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। 11:10 का समय रहेगा फिल्म संगीत के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का।

ये थी जानकारी उन कार्यक्रमों की जो आप सुन सकते हैं हमारे साथ यानी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, DRM 810 किलोहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़।

0: for five posts in the budget press on deputation or absorption basis. The vacancies include press assistant, maintenance, foreman, bindery, offset machine man, grade 2, plate maker and bindery assistant. These posts are meant for eligible central government employees with experience in printing technology, offset machine operations, bindery, maintenance and related technical trades. The pay scales range from level 2 to level 6 as per the 7 CPC. Applicants must send their applications through proper channel along with APARS, vigilance clearance, integrity certificate and supporting documents within 60 days from the date of publication in the Employment News. For details, do refer to the website at www.dea.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: Samachar Seva Prabhag prastut karta hai Rozgar Samachar. नमस्कार, रोजगार समाचार के साथ हाजिर हूँ मैं विनीता। आइए कुछ जानकारी लेते हैं रेतियों से संबंधित। राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान IRGIPT तेल और प्राकृतिक गैस मंत्रालय भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। IRGIPT संविदात्मक पदों में नियुक्ति के लिए उच्च प्रेरक और पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। पद का नाम है सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल, कैंपस जॉयस, रिक्ति एक होगी, अधिकतम आयु सीमा होगी 45 वर्ष की और उन्हें समेकित वेतन मिलेगा 90,000 का। सहायक अभियंता सिविल शिवसागर और बेंगलुरु, ये हैं कैंपस। रिक्ति है 2 और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, इन्हें मिलेगा समेकित वेतन 50,000 रूपए। योग्य उम्मीदवारों के लिए उच्चतर वेतन पर विचार किया जा सकता है। सहायक कार्यपालक अभियंता सिविल के लिए BE, BTech सिविल में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम उन्हें 3 साल का अनुभव होना आवश्यक है। हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो। सहायक अभियंता सिविल में BE, BTech सिविल इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी, साथ में निर्माण में कम से कम 3 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 5 वर्षों का अनुभव, या फिर प्रथम श्रेणी डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग, साथ में निर्माण कम से कम 5 वर्ष हाई राइज बिल्डिंग सहित न्यूनतम 8 वर्षों का अनुभव। आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं rgipt.ac.in/en/page/nts-contractual-position। किसी भी पूछताछ के लिए ईमेल भी उपलब्ध है, जो है recruitment_nts@rgipt.ac.in। साथ में हम जानकारी ये दे दें कि आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तारीख है वो है 31 मई 2026। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड अनिडको में उप महाप्रबंधक पर्यटन के एक पद को नियमित आधार पर लेवल 11 में प्रतिनियुक्ति सह प्रत्यक्ष भर्ती पद्धति के तहत भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवश्यक योग्यता और अन्य नियम एवं शर्तों के साथ आवेदन पत्र का विवरण वेबसाइट andamannicobar.gov.in से आप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख होगी 12 जून 2026 शाम 5 बजे तक। निगम किसी भी स्तर पर चयन प्रक्रिया को वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती है। यदि आपको अधिक स्पष्टीकरण चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं aniidco@gmail.com। यहाँ पर आप इस ईमेल आईडी पर जानकारी ले सकते हैं। सैनिक स्कूल सतारा। सैनिक स्कूल सतारा में कुछ रिक्तियों के लिए पात्र उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किया जाता है। TGT गणित में अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर इनकी नियुक्ति होगी। TGT हिंदी के लिए अनारक्षित 2 पद रिक्त हैं, संविदात्मक आधार पर। TGT सामाजिक विज्ञान अनारक्षित 1 स्थान रिक्त है संविदात्मक। TGT मराठी में अनारक्षित 1 पद रिक्त है संविदात्मक। कला शिक्षक अनारक्षित 1 पद रिक्त है जो कि संविदात्मक ही होगा। संगीत शिक्षक में भी 1 पद रिक्त है अनारक्षित और प्रयोगशाला सहायक विद्यालय चिकित्सा अधिकारी दोनों में 1-1 स्थान अनारक्षित संविदात्मक आधार पर आवेदन कर सकते हैं। वार्ड बॉय मेट्रन छात्रावासों के लिए अनारक्षित है ये पद 3 स्थान यहाँ रिक्त है संविदात्मक। इच्छुक अभ्यर्थी 1 जून 2026 तक प्रधानाचार्य सैनिक स्कूल सतारा पीओ बॉक्स नंबर 20 सदर बाजार जिला सतारा महाराष्ट्र के पास आवेदन जमा कर सकते हैं। पात्र और लघु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को बाद में सूचित की जाने वाली तिथि को चयन प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। इससे संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं स्कूल का www.sainiksatara.org.in। आवेदन करने वाले सभी आवेदकों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही, कल हम इसी कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
2: This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
3: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
4: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम परिक्रमा में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और मेरे सहयोगी हैं अभिषेक मुखोपाध्याय। हेलो अभिषेक।
5: हेलो प्रियंका।
4: जी हाँ, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि उनके पास क्या है खास। इसके अलावा खेल के मैदान की भी हलचल रहेगी, आर्थिक जगत पर भी हम डालेंगे नजर, तो बहुत कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। आगाज करते हैं आज का कार्यक्रम अपने सहयोगी अभिषेक के साथ।
5: यस हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द न्यूज मैगजीन प्रोग्राम परिक्रमा ऑन 100.1 FM गोल्ड। I am Abhishek Mukhopadhyay and with me, of course, today is my co-host Priyanka Arora. Well, listeners, he was an 11th century Persian polymath, famous worldwide for his profound philosophical poetry, pioneering mathematical discoveries, and highly accurate astronomical calendar. Yes, he's none other than the Persian poet and polymath Umar Khayyam. And today we observe his birth anniversary. We shall talk about him late in the program. But first of all, we start with the news headlines at this hour.
4: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर के बीच वार्ता जारी।
5: Prime Minister Modi says his Sweden visit adds new momentum to bilateral relations as both countries agree to double the trade in the next 5 years.
4: कांग्रेस नेता वी डी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
5: West Bengal government approves 7th pay commission for state government employees.
4: गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया।
5: And in IPL cricket, host Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. Yes, and now listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about International Museum Day. Well, Priyanka, International Museum Day has been celebrated today. And this year's theme, Museums Uniting a Divided World, highlights the role of museums in fostering dialogue, understanding, inclusion and peace across cultural, social and geopolitical divides. And the objective of International Museum Day is to raise awareness about the fact that museums are an important means of cultural exchange, enrichment of cultures and development of mutual understanding, cooperation and peace among peoples.
4: जी हाँ, आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के बारे में बात करें तो उससे पहले बहुत ही सुंदर पंक्तियाँ हैं मेरे पास और किसी ने क्या खूब लिखी है कि एक वस्तु जब किसी को अपना हृदय देती है तो जीवन भर के लिए दे देती है, वह अपना शरीर भी उसको करती है समर्पित और इतनी अंतरंग हो जाती है कि सिर्फ उसी को देखकर पहचान लिया जा सकता है आदमी को। पटरियों के किनारे या अनजान सड़कों पर कितनी ही शिनाख्त वस्तुओं से हुई और वस्तुओं ने लोगों को लावारिस नहीं रहने दिया। कई बार वे कहानियों के सिंहासन की तरह या वरदान में मिली पोशाक की तरह पेश आती हैं। जी हाँ, संग्रहालय में रखी अमूल्य वस्तुएं सदियों पुरानी सभ्यता को सहेजे हुए हैं। महाद्वीपों और पीढ़ियों तक संग्रहालय मानव सभ्यता के निशानों को सहेज कर रखते हैं, अपने साथ यादें, संस्कृति और वे कहानियां लिए हुए जो लगातार इस बात को आकार देती हैं कि हम दुनिया को किस नज़र से देखते हैं। हालांकि वे अलग अलग इतिहासों और परंपराओं से गढ़े गए हैं, फिर भी वे ऐसे स्थान बने रहते हैं जहां लोग समय और स्थान की सीमाओं को पार करते हुए एक दूसरे से रूबरू होते हैं।
5: Yes, Priyanka, and museums are trusted public spaces.

0: people encounter stories, objects, and one another, and in times of social fragmentation, polarization, and unequal access to knowledge and culture, museums help rebuild connection across generations, across communities, and across borders, fostering dialogue, understanding, inclusion, and peace within and between communities worldwide.
1: जी हाँ, राज, शुरुआत में जैसे आपने इस बार का जो विषय है बताया है कि संग्रहालय विभाजित दुनिया को जोड़ने वाले, और इस लिहाज से ये विषय बहुत ही सटीक है क्योंकि ये सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक विभाजनों के बीच सेतु का काम करते हैं। ये दुनिया भर के समुदायों के भीतर और उनके बीच संवाद, समझ और शांति को बढ़ावा देते हैं। सांस्कृतिक, सामाजिक और भू राजनीतिक दृष्टि से जो मतभेद हैं, ऐसा नहीं है कि संग्रहालय इन्हें एकदम से मिटा देते हैं, बल्कि ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जिनमें मतभेदों को समझा जा सके और उनका सम्मान के साथ समाधान किया जा सके। ऐसा वे विरासत और स्मृतियों को सुरक्षित रखकर सीखने और चिंतन के अवसर प्रदान करके तथा ऐसे स्वागत योग्य स्थान उपलब्ध कराकर करते हैं जहां विविध आवाजों को सुना जा सके। खुले और सभी के लिए सुलभ होने के कारण संग्रहालय विविधता और निरंतरता को बढ़ावा देते हैं।
0: Since its inception, Priyanka, UNESCO has recognized museums as one of its most important partners for building peace in the minds of women and men. Today, museums specialize in everything from human ingenuity and cultural expressions to natural heritage. They may be indoors, open air, underwater, and virtual, attracting and inspiring millions of visitors each day. And as museum attendance continues to grow around the world, UNESCO is working to link their work with sustainable development and peace building.
1: बिल्कुल सही कहा, और संग्रहालय न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा दे सकते हैं बल्कि वे सांस्कृतिक मध्यस्थता और संवाद के लिए महत्वपूर्ण स्थलों के रूप में भी काम कर सकते हैं। नई तकनीकों के उपयोग के माध्यम से संग्रहालय संस्कृति तक सभी को पहुंच बनाने में एक अनिवार्य भूमिका निभाते हैं। हाल के वर्षों में विविधता, संवाद और खुलेपन के इन मूल्यों को दर्शाने के कारण संग्रहालयों को निशाना बनाया गया है, लूटा गया है और उन पर हमले किए गए हैं। संग्रहालयों की सुरक्षा और संवर्धन, उनकी विविधता तथा समाज में उनकी भूमिका से संबंधित 2015 की यूनेस्को की सिफारिश को अपनाने के बाद से ये संगठन विशेष रूप से संरक्षण, शिक्षा, संचार, अर्थव्यवस्था और जीवन की गुणवत्ता से संबंधित मामलों में दुनिया भर की सरकारों, स्थानीय हितधारकों और संग्रहालयों पेशेवरों के साथ मिलकर इसके कार्यान्वयन में सहायता के लिए काम कर रहा है।
0: As part of these efforts, UNESCO established a high-level forum on museums, which met for the first time in Shenzhen, China, in November 2016 and resulted in the adoption of the Shenzhen Declaration, which stresses the importance of museums in reinforcing ethical, professional and technological standards, preserving heritage in times of peace and conflict, and increasing international cooperation.
1: अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाने के लिए संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत मुंबई स्थित नेहरू विज्ञान केंद्र ने प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं, क्विज, हेरिटेज वॉक, आकाश अवलोकन सत्रों और परिवार उन्मुख विज्ञान गतिविधियों का आयोजन किया है, जिनका उद्देश्य विशेष रूप से बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच, रचनात्मकता और जिज्ञासा को बढ़ावा देना है।
0: And the celebration aims to showcase the immense power of museums in shaping an informed, creative and progressive society. Museums and science centers today are not merely places for preserving objects and artifacts. They are vibrant centers of education, innovation, scientific awareness, cultural understanding and community engagement. They inspire curiosity, encourage lifelong learning and connect people with science, heritage, history and sustainability through interactive and meaningful experiences. And a special attraction of this year's celebration is the exhibition, My Own Collection, showcasing rare and fascinating historical objects along with unique personal collections, reflecting the richness of India's cultural and scientific heritage.
1: सही कहा आपने अभिषेक, इस अवसर पर पणजी स्थित गोवा विज्ञान केंद्र ने गोवा सरकार के संग्रहालय निदेशालय के सहयोग से कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की, जिनमें सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विरासत को संरक्षित करने में संग्रहालयों के महत्व को रेखांकित किया गया, और इन समारोहों के एक हिस्से के रूप में माई ओन कलेक्शन यानी मेरा अपना संग्रह शीर्षक से एक प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें गोवा के विभिन्न हिस्सों से 25 लोग अपने अनूठे संग्रह प्रदर्शित कर रहे हैं। इन संग्रहों में सिक्के, डाक टिकट और जीवाश्म कलाकृतियां, खिलौने, पुरानी वस्तुएं, दुर्लभ पुस्तकें और अन्य वस्तुएं शामिल की गई हैं।
0: And as the world celebrates International Museum Day today, to underscore the importance

0: So museums in our lives. Let us go to Mumbai and explore a museum which not only offers an iconic collection of where we came from, but also shows us how brilliantly an architect can bring together different styles of architecture to create a marvelous structure. We have more from a Mumbai correspondent.
1: Standing in the bustling streets near the Shyama Prasad Mukherjee Chowk in Mumbai, one simply can't help but take a second glance at the iconic building of Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya, which partially resembles the Taj Mahal in Agra, Gol Gumbaz in Vijaipura, and fort-like structures serving as reminders of Maratha forts. Considered the biggest museum in the financial capital of India, it not only offers an intricate tour of our past, but the museum itself has a story in store for us. Let's listen to archaeologist and historian Ruta Vaghmare Baptista.
2: Situated on the southern tip of Mumbai, on the Crescent site, the museum was founded in 1905 by prominent citizens of the city with the help of the government to commemorate the visit of the Prince of Wales, who later becomes George V, Emperor of United Kingdom. The museum building was finally completed in 1915, but was used as a children's welfare center and a military hospital during the First World War before being handed over to the committee in 1920. The museum was inaugurated on 10 January 1922 by Lady Lloyd, was the wife of George Lloyd, former governor of Bombay.
1: A part of the Gothic and Art Deco ensemble, which is one of UNESCO's World Heritage Sites, let's learn how the Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya presents a fine example of a blend of multiple architectural styles from Ruta Vaghmare Baptista. As the famous quote goes, every step in a museum is a dance with history. Places like Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya offer history lovers and commoners a place, inspiration and passion to enjoy every bit of it. This is Ankita Apte for Parikrama from Mumbai.
3: जी हाँ, हमने मुंबई के छत्रपति शिवाजी संग्रहालय के बारे में जाना अपनी संवाददाता से। इसके अलावा हमारे देश में ढेर सारे संग्रहालय हैं, जैसे नेशनल म्यूजियम दिल्ली, जो भारत के सबसे बड़े और प्रसिद्ध संग्रहालयों में से एक है। यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मुगल काल तक की दुर्लभ वस्तुएं मौजूद हैं। या अगर बात करें इंडियन म्यूजियम कोलकाता की, जो सबसे पुराना और ऐतिहासिक संग्रहालय माना जाता है, या अगर आप राजस्थान के रेगिस्तानी जीवन और लोक संस्कृति को करीब से समझना चाहते हैं, तो अरणा झरना द डेजर्ट म्यूजियम ऑफ राजस्थान आप देख सकते हैं। इसके अलावा श्रेयस फोक म्यूजियम है गुजरात में। और अगर 1947 के भारत विभाजन की जो दर्दनाक यादों को संजोए है अमृतसर का एक संग्रहालय, अगर आप जाते हैं द पार्टीशन म्यूजियम, उसको देखना बहुत ही बेहद भावुक अनुभव रहता है। तो अभिषेक, गर्मियों की छुट्टियां हैं और बच्चों को अगर आप दिखाना चाहते हैं कि हमारी जो देश की विविध सांस्कृतिक विरासत कैसी है, तो संग्रहालय बहुत अच्छा माध्यम हो सकते हैं।
0: Absolutely, I completely agree with you. It would be a very enriching vacation for them.
3: और अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास जाने का और ये देखने का कि उनके पास क्या है विशेष। सबसे पहले रुख करते हैं छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को ऊर्जा क्षेत्र में सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए महत्वाकांक्षी द्वीप्ती योजना को मंजूरी दी है। क्या है ये योजना और कैसे ये महिलाओं को लाभान्वित करेगी, इस पर खास रिपोर्ट है हमारे रायपुर संवाददाता विकल्प शुक्ला की, आइए सुनते हैं।
4: दीप्ति योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। योजना के तहत गांवों में सोलर दीदी यानी ऊर्जा सखी का एक विशेष समूह तैयार किया जाएगा। चुनी गई महिलाओं को सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना, संचालन और रखरखाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये महिलाएं गांवों में सोलर मिल, कोल्ड स्टोरेज, सिंचाई प्रणाली और अन्य सौर उपकरणों का संचालन करेंगी। क्लस्टर लेवल फेडरेशन को महिला ऊर्जा सहकारी समितियों के रूप में विकसित किया जाएगा। महासमुंद और बस्तर जिले के कुछ समूह पहले ही अधिकृत विक्रेता के रूप में पंजीकृत हो चुके हैं। योजना में पे पर यूज और पे एज यू गो जैसी व्यवस्था भी लागू की जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी। बिहार नेटवर्क के जरिए लागू होने वाली इस योजना में लगभग 270,000 स्व सहायता समूहों की भागीदारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का हर गांव ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बने और इस बदलाव का नेतृत्व सोलर दीदियां करें। दीप्ति योजना छत्तीसगढ़ को महिला नेतृत्व आधारित हरित विकास मॉडल के रूप में राष्ट्रीय पटल पर एक नई पहचान दिलाएगी। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
0: Yes, and from

0: बॉलीवुड में माँ के किरदार में कई अदाकाराओं ने अपनी खास जगह बनाई है, जैसे निरुपा राय, ललिता पवार और सुषमा सेठ। और इसी फहरिस्त में एक और लोकप्रिय नाम है रीमा लागू का। जी हाँ, आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा था। फिल्म मैंने प्यार किया की सपोर्टिव माँ हो या वास्तव की कठोर माँ या फिर ये दिल लगी की माँ, रीमा लागू की इन भूमिकाओं का कोई सानी नहीं था। उन्होंने नए जमाने की जो माँ की भूमिकाओं को खूब चरितार्थ किया। उन्हीं की फिल्म मैंने प्यार किया का ये बहुत ही प्यारा डायलॉग सुनते हैं।
1: सुमन जरा चल तो।
2: कहाँ आंटी जी?
1: चल जरा प्रेम से उसकी शादी की बात कराए।
2: जी जी
1: हाँ, सोचती हूँ जितनी जल्दी हो सके इस घर में बहू ले आओ। चल आजा।
2: जी
1: आजा प्रेम।
3: हाय माँ।
1: दफ्तर जा रहा है बेटे?
3: हाँ क्यों?
1: कुछ नहीं, नाश्ता कर ले और थोड़ी देर बैठ हमारे साथ।
3: श्योर माँ।
1: आओ, क्या हुआ?
3: ना कुछ भी।

0: हम लोग तेरी शादी की बात करने आए हैं।
1: शादी?
2: हाँ।
0: तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है ना मैंने?
3: जी हाँ, उन्होंने सलमान खान के लिए कई फिल्मों में उनकी माँ की भूमिका निभाई और ऐसी मैंने प्यार किया थी, और एक इसके अलावा एक फिल्म और थी, उसी की फिल्म का एक आपका डायलॉग सुनते हैं, हम आपके हैं कौन। और समय कह रहा है आपसे अनुमति लेने का, तो प्रियंका और अभिषेक को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।
4: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी इस समय संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
1: स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: श्री मोदी आज नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री कल तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो आपसी संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत विधि और न्याय मंत्रालय कल से गुजरात के गांधीनगर में ब्रिक्स वरिष्ठ अधिकारियों SOM की 2 दिवसीय बैठक की मेजबानी करेगा। विधि और न्याय मंत्रालय ने कहा कि SOM बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के वरिष्ठ अधिकारी वैकल्पिक विवाद समाधान ADR से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। वहीं विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं, ताकि समय पर सहायता प्रदान की जा सके और वे देश के नागरिकों की सक्रिय रूप से सहायता कर रहे हैं। केरला में नई UDF सरकार ने राज्य परिवहन की बसों में महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए अन्य निर्णयों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायकों और रसोईया कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करना शामिल है। राज्य में नई विधानसभा का सत्र इस महीने की 21 तारीख को आयोजित किया जाएगा, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चुनाव होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्विट्जरलैंड के जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रियसिस से मुलाकात की। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि श्री नड्डा ने वैश्विक स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। बैठक के दौरान WHO के महानिदेशक ने भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारों और वैश्विक स्वास्थ्य साझेदारियों में नेतृत्व की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Anuja Kumar. In Norway, Prime Minister Modi held bilateral talks with Norway's Prime Minister Jonas Gahr Støre in Oslo a short while ago. Both leaders addressed the gathering after conclusion of their talks. Prime Minister Modi said India-Norway trade ties are strong and promising.
1: Norway ki yatra karke mujhe bahut khushi ho rahi hai. Yeh desh nature aur human progress ke beech harmony ka एक सुंदर उदाहरण है. सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री जी का इस आत्मीयता भरे स्वागत के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और कल नॉर्वे के कॉन्स्टिट्यूशन डे के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की ओर से नॉर्वे जैसे सुदृढ़ और जीवंत लोकतंत्र की यहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं.
2: And now we go live to the Prime Minister's address there.
1: Partnership ka naya adhyay likhe. Aapka bahut bahut dhanyawad.
2: Our Prime Minister just ended the address. Moving on, Defence Minister Rajnath Singh has reached Hanoi in Vietnam this afternoon. He is on a two-nation visit to Vietnam and South Korea. In a social media post, the Prime Minister said that he is looking forward to visiting the Asian nations to further expand the scope of bilateral engagement. He said the focus will be on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, boosting maritime collaboration, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today launched the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi. Mr. Goyal said that India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. He emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly.
3: India-made products and services should expand even more rapidly across the world. We should not be satisfied merely because we are the world's fastest growing economy. We must never become complacent and should always think about bigger leaps forward. We need to continuously reflect on what more can be done, keep working tirelessly and keep bringing new ideas and innovations forward.
2: The government has said that refineries in the country are operating normally and India has sufficient crude inventories despite the import disruption due to the ongoing West Asia crisis. Addressing the interministerial briefing in New Delhi today on recent developments in West Asia, Joint Secretary in the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Sujata Sharma said the country has sufficient stock of petrol, diesel, LPG and natural gas.
4: 1.72 crore LPG cylinders have been delivered against the booking of 1.69 crore request. Regarding American waiver on Russia, I will like to emphasize that we have been purchasing from Russia earlier and before waiver also, during waiver also and now also. So it is basically the commercial sense which should be there for us to purchase. There is no shortage of crude. Enough crude has been tied up. This whatever waiver or no waiver, it will not affect our supplies and all efforts have been taken to that effect.
2: The West Bengal government has constituted two inquiry commissions to investigate alleged institutional corruption and atrocities against women in line with its election promises. Chief Minister Shuvendu Adhikari announced the decision today after approval by the state cabinet. Retired Calcutta High Court Justice Biswajit Basu will head the commission probing institutional corruption. Senior IPS officer

लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार। देखिए शाहिद भाई, हम अपने भाइयों के लिए प्यारे से लोकगीत लेकर आए हैं। आज हम लोकगीत सुनवाएंगे उन्हें लोक रंजनी में, तो सबसे पहले सुनवाते हैं ये प्यारा सा लोकगीत करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज़ में। तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: तो बहनों भाइयों, अभी आप सुन रहे थे कर्मपाल शर्मा और मंजू शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।
1: जी
0: और
1: हाँ,
0: इसमें देखिए, बड़ी ही सुंदरता के साथ मंजू शर्मा और कर्मपाल शर्मा दोनों ने ही रिश्तों की अहमियत, उसका महत्व बताया। ये बताया कि जहाँ पे लोग खुशी खुशी रहते हैं वो घर जन्नत बन जाता है,
1: जी
0: स्वर्ग जैसा हो जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये कि जिस मन में खोट नहीं होता है वहाँ बिल्कुल सब कुछ जो है ना चंगा हो जाता है।
1: देखिए, ये तो हमारे लोकगीतों की महिमा है कि उसमें नोकझोंक बनी रहती है।
0: जी
1: अब अगला जो हमारा लोकगीत है वो नोकझोंक से ही भरा हुआ है, तो सविता शर्मा की आवाज़ में सुनते हैं ये प्यारा सा लोकगीत।

0: ननद भौजाई के बीच जो रिश्ता होता है, जो प्यार होता है, जो है कि तकरार होता है,
1: जी
0: वो एक जो है कि ननद के जो है कि मेले में खो जाने के
1: देखिए,
0: बाद भौजाई ने इस तरह से बयां किया है।
1: बिल्कुल देखिए, ये तो एक प्यार होता है। जब हम लोग गीत गाते हैं बैठ के, तो ननद भी मजे लेती है और
0: जी
1: भौजाई भी मजे लेती है।
0: हाँ,
1: ये तो असलियत नहीं है कि वो भौजाई या ननद को ताने दे रही
0: नहीं,
1: है।
0: ये रिश्ते की
1: जी
0: सुंदरता है।
1: जी बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं रेणु बर्मन की आवाज में ये लोकगीत।

0: देखिए साजिद भाई, अभी हमारे
1: जी
0: भाई सुन रहे थे रेणु बर्मन की आवाज में प्यारा सा लोकगीत, और आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं एक और लोकगीत अशोक कुमार की आवाज
1: जी
0: में।
1: हाँ।

बेटवा तो दोनों छोटा छोटका बड़का पैसा बिना कैसे पड़ी पही लड़का बेटवा दोनों छोटा छोटका बड़का पैसा बिना कैसे।

0: अभी हमारे भाई सुन रहे थे अशोक कुमार की आवाज़ में ये प्यारा सा लोकगीत। और देखिए इसी के साथ हमारा आज का लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करता है तुषार पराशर और संयोजक शिव नंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से कुछ देर में आप सुनेंगे कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।

0: नमस्कार साथियों, मैं अभिनव कुमार झा
1: और मेरा नाम है दर्पण त्रिकिया और आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा खेल खिलाड़ी, वो कार्यक्रम जहां रोजाना हम आपको खेल जगत से जुड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराते हैं और सुनाते हैं खिलाड़ियों के संघर्ष और सफलता की किस्से कहानियां, इस उम्मीद में कि वो आपको प्रेरित करेंगी और साथ के साथ जीवन में आगे बढ़ने की सीख और हौसला देगी। खेल में कई बार असली कमाल तब होता है जब सब कुछ हाथ से निकलता दिखाई दे रहा होता है, समय कम हो, हालात मुश्किल हो और सामने वाला आपसे कहीं ज्यादा मजबूत लगे, उसी वक्त कुछ खिलाड़ी हार मानने के बजाय अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर निकालते हैं।
0: जिंदगी भी ऐसे ही पल देती है, जब जिम्मेदारियां अचानक बढ़ जाए, जब रास्ते बंद लगें, जब लगे कि अब संभलना मुश्किल है, लेकिन अक्सर इंसान की असली ताकत आराम में नहीं, मुश्किल घड़ी में बाहर आती है।
1: खेल हमें यही सिखाता है, दबाव से मत घबराइए, कई बार वही पल आपके पुराने स्तर से ऊपर आपको उठा देते हैं, क्योंकि जब पीछे हटने की जगह कम पड़े तब इंसान को आगे बढ़ना सीखना पड़ता है। तो यही आज की सीख है, यही आज का संदेश है और इसी संदेश के साथ आइए कार्यक्रम को शुरू करते हैं।

0: खेल खिलाड़ी कार्यक्रम में आज चर्चा का केंद्र रहेंगे क्रिकेट, आर्चरी, साथ के साथ वेट लिफ्टिंग पर बात करेंगे और कुछ अन्य खेलों पर भी नजर डालेंगे।
1: आईपीएल में प्लेऑफ्स की दौर गर्मा रही है, एक टीम ने तो टॉप चार का टिकट भी कटवा लिया है। सारी संभावनाओं पर करेंगे आकलन और विश्लेषण।
0: साथ के साथ हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में हुई एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में कैसा रहा भारतीय दल का प्रदर्शन और क्या उम्मीदें आने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए, एशियन गेम्स के लिए और भविष्य के लिए हम कर सकते हैं, उस पर डालेंगे नजर।
1: और हॉकी, चेस और फुटबॉल में क्या चल रहा है उस पर भी नजर डालेंगे।
0: फिर आपको ले चलेंगे रैकेट स्पोर्ट्स की दुनिया में। टेनिस में फ्रेंच ओपन की शुरुआत होने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बैडमिंटन में मलेशिया मास्टर्स भी शुरू होने वाला है, कल से आगाज हो जाएगा। तो इन सभी खेल खबरों के साथ मैं हूं दर्पण, मेरे साथ है अभिनव, आप सुन रहे हैं खेल खिलाड़ी।

0: जी हाँ, आईपीएल में अब करो या मरो की परिस्थिति है सभी टीमों के लिए। लेकिन आपको सबसे पहले बता दे कि एक टीम ने टिकट हासिल कर लिया है टॉप फोर का।
1: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पहुंच चुकी है क्वालिफायर्स में।
0: जी हाँ, डिफेंडिंग चैंपियंस ने सबसे पहले टिकट कटवाया है प्लेऑफ्स का। क्वालिफायर वन या क्वालिफायर टू, कौन से मुकाबले में ये शिरकत करते नजर आएंगे, इस बात का फैसला इस बात पे होगा कि ये क्या टॉप दो में खत्म कर पाएंगे या फिर तीसरे या चौथे स्थान पर रहेंगे लीग स्टेज पर खत्म करने के बाद। हालांकि अभी 18 पॉइंट्स लेने के बाद ये बात लगभग तय हो चुकी है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टॉप टू में फिनिश कर सकती हैं। खैर, डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, बल्कि उनके कप्तान रजत पाटीदार बार बार हमने आपको हमारे कार्यक्रम में भी सुनाया, ये कह चुके हैं कि हम अपने आप को डिफेंडिंग चैंपियंस के तौर पर देखते ही नहीं। शायद यही मानसिकता है जिसकी वजह से इनका प्रदर्शन इतना खास इस साल भी रहा है।
2: मतलब हम यहाँ पे इस सीजन एज ए डिफेंडिंग चैंपियन नहीं खेल रहे हैं, हमको एक अपॉर्चुनिटी है, हमको एक बार और चैंपियन बनने की अपॉर्चुनिटी है। तो हम कुछ भी इस माइंडसेट से नहीं है कि हमको डिफेंड करना है कुछ, हमको हमें अटैकिंग ही गेम खेलना है और अटैकिंग माइंडसेट से हमको एक और अपॉर्चुनिटी की इस साल भी हम चैंपियन बने। तो

0: डिफेंसिव माइंडसेट और डिफेंसिव फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं है कि हमको कुछ भी हमको डिफेंड करना है, हम टाइटल जीते हैं। ये नया सीज़न है, हमने जो किया था वो 2025 में था और ये नया सीज़न है, तो हमको कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रेजेंट में रहकर जितना हो सकता है उतना बेस्ट करें टीम के लिए।
1: हालांकि कल रजत पाटीदार नहीं खेल रहे थे और कप्तानी जितेश शर्मा ने की।
2: जी, धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ ये मुकाबला हुआ जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल 23 रन से जीत पाकर टिकट कटवा लिया प्लेऑफ्स का। और एक बार फिर उनके तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड ने अच्छा प्रदर्शन किया। और कमाल की बात यह है कि जो क्वालिफायर वन का मुकाबला होने वाला है प्लेऑफ्स में, वो भी धर्मशाला में होगा। तो आरसीबी के पास सिर्फ ये एडवांटेज नहीं कि वो क्वालिफाई कर चुके हैं, बल्कि कल क्योंकि धर्मशाला में उन्होंने मुकाबला खेला, वहां की परिस्थितियों को भी समझने में कल के मैच में उनको मदद मिली। यही कहते हैं जॉश हेजलवुड।
3: Yeah, I guess it's good to get a hit out on this field. We're going to come up similar conditions, maybe not against the same opposition, but great to get a game here before that qualifier one. Yeah, just the things we learnt tonight, bat and ball and in the field, take that forward. We've got some nice breaks. We've got a few days before Hyderabad game and then a few days again before Q1. Nice time to freshen up this time of the tournament and yeah, come back here all guns blazing.
2: दूसरी तरफ पंजाब किंग्स के खेमे में तस्वीर बिल्कुल ही उलट है। वो निराशापूर्ण है, वो थोड़ी सी झुंझलाहट भरी है। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, इस सीजन क्या रहा है। पहले 7 मुकाबलों में एक भी नहीं हारा, 6 में जीत हासिल की, एक बारिश की वजह से धुल गया। लेकिन 7 मैचों के बाद ये टीम टेबल के टॉप पर थी और अजय थी, लेकिन पिछले 6 में से एक भी मुकाबला ये टीम नहीं जीत पाई है। और अब प्लेऑफ्स की राह पंजाब किंग्स के लिए बहुत कठिन है। और जिस निराशा, हताशा, झुंझलाहट की हमने बात की, उसको एक्सेप्ट किया है, उसको स्वीकारा है टीम के कोचिंग स्टाफ का एक अहम हिस्सा बने हुए जेम्स होप्स ने।
4: Frustrating, to be honest. Yeah, we are staring in the face now. There's still hope, but we need to turn it around. We need to tidy up some areas. We need to, today, once again, we were just always, I felt like we were always with the ball, chasing our tail, not creating enough opportunities early. We control the power play pretty well, but they just, every time we'd get back the momentum, there'd be a big over, they'd get back on top. And then in the chase, we sort of got going, but then, then yeah, just petered out. We lost too many wickets early, but it was just tonight's game, the way we lost was less frustrating than the other games, to be honest. Yeah, it was just another disappointment.
2: Yeah, kal nirasha thodi kam thi kyunki ab to haar 6th बार मिली है। आपको बता दें कि पंजाब किंग्स की जो टीम है वो इस वक्त पॉइंट्स टेबल में जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। खैर, अभी भी 4th स्थान पर टीम बनी हुई है, लेकिन अब उनका केवल एक मुकाबला बकाया है। उनके पास 13 पॉइंट्स इस वक्त है। आखिरी मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा, जिसको जीतकर भी वो कुल 15 पॉइंट ही हासिल कर सकेंगे। यानी और टीमें हैं जिनके पास उनसे आगे बढ़ने का मौका है, यानी कि कच्चे धागे से अब पंजाब किंग्स की उम्मीदों की डोर बंधी हुई है। लेकिन इम्पॉसिबल इज नथिंग, नामुमकिन कुछ भी नहीं, दिल्ली कैपिटल्स से पूछ लीजिए, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स की करीब 10 दिन पहले ही यह परिस्थिति हो गई थी। मैथमेटिशियंस ने उनकी जो संभावनाएं हैं उसको 1% से भी कम बता दिया था और काफी सारे रिजल्ट्स उनके फेवर में जाने चाहिए थे इस मुकाबले में जिंदा रहने के लिए, इस प्लेऑफ्स की दौड़ में जिंदा रहने के लिए। और आलम आज 10 दिन बाद यह है कि दिल्ली कैपिटल्स अभी भी जिंदा है, क्योंकि जो रिजल्ट्स उनके फेवर में जाने चाहिए थे वो गए हैं और साथ के साथ टीम ने भी अपने स्तर को उठाया है। जैसा हमने बताया कि जब डूबो या तैरो की परिस्थिति आती है तो अक्सर अपना स्तर खिलाड़ी बढ़ा देते हैं, और वैसे ही कुछ दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने किया कल राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। पहले 15 ओवर तो राजस्थान रॉयल्स की टीम ने डोमिनेट किया, हालांकि उसके बाद 15वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने 3 विकेटें ली, जिसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम, जो एक समय लग रहा था कि 250 का आंकड़ा छू जाएगी, वो केवल 193 रन बना सकी। मिचेल स्टार्क कितना अहम हिस्सा रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स की इस टीम का, बता रहे हैं कोच हेमंग बदानी।
5: आई थिंक ही इज पॉसिबली वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल्स एनीवन कैन हैव इन स्पोर्ट। हिज वर्क एथिक टू हिमसेल्फ, हिज प्रिपरेशन बिफोर द गेम विद हिज ओन प्लान्स एंड हिज ट्रेनिंग इज अबव पार। आई डोंट इवन सी दैट विद अ लॉट ऑफ द यंगर बॉयज। दैट्स द रीजन व्हाई ही सस्टेन फॉर सो लॉन्ग। एंड इफ यू गो बैक एंड सी द रीसेंट एशेज सीरीज, ही सिंगल हैंडेडली वन द एशेज। देयर वाज नो पैट कमिंस, देयर वाज नो जॉश हेजलवुड। दैट प्रीटी मच टेल्स यू व्हाट दैट मैन कैन डू। एंड स्पीकिंग ऑफ द काइंड ऑफ वर्क दैट ही पुट्स इन विद द यंगर लैड्स, ही इज ऑलवेज टॉकिंग टू देम, ही इज ऑलवेज ट्राइंग टू पास ऑन द नॉलेज। हाउ कैन यू डू रिवर्स swing, how do I hold lens, what do I do when a certain batter is going hard, do I look to pick wickets or do I look to try and be submissive and be defensive. There's immense conversation that

0: Starkey brings to the table, and I think, as I said earlier, being slightly repetitive, massive role model.
1: जी हाँ, रोल मॉडल के तौर पर उतरे हैं मिचेल स्टार्क। खैर, रोल मॉडल के तौर पर केएल राहुल भी उतरे हैं, जिन्होंने इस सीजन बल्ले से अच्छी परफॉर्मेंस की। कल भी हालांकि वो शून्य पे थे जब उनका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरी तरह उस मिले जीवनदान का फायदा उठाया, अर्धशतक जड़ा। उनके साथी सलामी बल्लेबाज अभिषेक पोरेल ने भी अर्धशतक जड़ा, और इसके चलते दिल्ली कैपिटल्स ने कल का मुकाबला जीत कर अपनी उम्मीदों को 1% से भी कम जो संभावनाएं हैं उनको जीवित रखा है। इस वक्त दिल्ली कैपिटल्स की अगर हम बात करें तो सातवें पायदान पर है, 13 मुकाबलों में 12 अंक इन्होंने अर्जित किए हुए हैं। हालांकि होम रिकॉर्ड इस बार उतना शानदार रहा नहीं, और लगातार कोच हेमंग बदानी ने यह बात की है कि किस तरह की पिचे बनाई जा रही है दिल्ली कैपिटल्स के होम ग्राउंड अरुण जेटली स्टेडियम पर, उसके बारे में उनको उतना अंदाजा नहीं दिया गया है, जिससे वो खासे निराश हैं।
0: should at least be where you know what you're expecting. यहाँ पे हमारे साथ ये हो रहा था कि हमको पता ही नहीं चल रहा था कि हम ये सरफेस क्या करेगी हमारे साथ। मतलब एक मैच 60 पे आउट हो रहे हैं, एक में 150 पे आउट हो रहे हैं, एक में 260 भी बन रहा है। तो मतलब कोई कंसिस्टेंटली समझ नहीं आ रहा है कि ये पिच नंबर 4 कैसे खेलेगा, पिच नंबर 5 कैसे खेलेगा, पिच नंबर 6 कैसे खेलेगा। हमने तीन सर्फेसिस पे खेले हैं साथ, और अब तीनों के आप आंकड़े देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये 19-20 का आंकड़ा है। तो दैट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रिपेयर, कि हमको पता चलता है कि अगर पिच नंबर 5 हाँ ये 180 वाली पिच है, पिच नंबर 6 200 वाली पिच है, या पिच नंबर 6 250 वाली पिच है, देन यू स्ट्रक्चर साइड अकॉर्डिंगली, यू स्ट्रक्चर योर 11 एंड 12 अकॉर्डिंगली। बट यहाँ पे तो कुछ मतलब चल रहा है बस।
2: दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के लिए इस हार के बाद अब निर्णायक घड़ी है।
1: जी हाँ, 12 में से उन्होंने 6 मुकाबले जीते हैं, यानी कुल 12 अंक के साथ छठे पायदान पर राजस्थान रॉयल्स की टीम है। यानी अगले 2 मुकाबलों को अगर ये टीम जीत जाती है तो फिर 16 अंक तक पहुंच जाएगी। तो मोटा मोटे तौर पर राजस्थान रॉयल्स के पास अपनी किस्मत अपने हाथों में है, लेकिन जैसा अभिनव ने कहा, अब निर्णायक घड़ी है, अब आर या पार की घड़ी है, अब मेक इट और ब्रेक इट की घड़ी है। और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर का भी यही कहना है।
3: प्लानिंग तो हर मैच जीतने का चल रहा है, इट्स नॉट दैट अभी क्या वेट कर रहे थे हम कि लास्ट के 2 मैच रह जाएंगे तो जीतेंगे, बट वी आर लुकिंग टू विन, एवरी गेम इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, और जीतने की ही कोशिश चल रही है। सो यू आर राइट, अभी वो सिचुएशन ये आ गया कि मस्ट विन गेम्स हो गया दोनों हमारे लिए। बिलीफ यही है टीम में कि ऑन आर डे इफ यू आर प्लेइंग टू आर पोटेंशियल, हम किसी भी टीम को कहीं भी हरा सकते हैं, दैट इज द माइंड सेट। सो वी नीड टू टर्न अप, नीड टू प्ले आर बेस्ट क्रिकेट, अगर खेलेंगे तो वी हैव द बिलीफ इन द ग्रुप कि जीतेंगे।
1: कल एक अहम खिलाड़ी राजस्थान रॉयल्स के नहीं उतरे फील्ड पर, और वो अहम खिलाड़ी, वो सीनियर खिलाड़ी है रविंद्र जाडेजा। हालांकि विक्रम राठौर कहते हैं कि उनको जो चोट लगी है वो ज्यादा सीरियस नहीं है, और इसलिए प्रिकॉशनरी तौर पर उनको कल का मुकाबला नहीं खिलाया गया।
3: He just had some niggle in his knee, I think. So they're just trying to manage that, and they felt that if we give him a game ka aur break de denge, so that'll be good for him. So that was the reason he was rested today. He's just dealing with some niggle.
1: खैर, एक और सीनियर खिलाड़ी जिसका इंतजार शायद सभी क्रिकेट फैंस बड़े लंबे अरसे से कर रहे हैं, वो है महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के केवल 2 मुकाबले अब लीग स्टेज में बचे हैं, जिनमें से आज एक शाम को होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ। एक करो या मरो वाली परिस्थिति वाले मुकाबले में चेन्नई में ये मुकाबला खेला जाएगा। और महेंद्र सिंह धोनी लगातार प्रैक्टिस सेशंस में शिरकत करते हुए नजर आए हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी एक मुकाबला नहीं खेला है, एक भी मुकाबला इस सीजन में नहीं खेला है। तो उनकी रिटायरमेंट को लेकर जो रूमर्स हैं उन्होंने अब तूल पकड़ लिया है। खैर, आपको बता दें चेन्नई सुपर किंग्स के भी 12 अंक हैं, वो इस वक्त 5वें पायदान पर हैं। तो दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद के 14 अंक हैं, वो तीसरे पायदान पर हैं। यानी दोनों के लिए ही ये खरो या मरो का मुकाबला है। आप फिर याद दिला दें कि टॉप 4 में पहुंचने वाली टीमें प्लेऑफ्स का टिकट हासिल करती है। आरसीबी इस वक्त नंबर 1 पर, गुजरात टाइटंस नंबर 2 पर, सनराइजर्स नंबर 3 पर, पंजाब किंग्स नंबर 4 पर, चेन्नई सुपर किंग्स 5 पर, राजस्थान रॉयल्स इस वक्त नंबर 6 पर, और 7वें पर दिल्ली कैपिटल्स है। इन सभी टीमों की अभी भी उम्मीदें बरकरार हैं। खैर, क्रिकेट की चर्चा को यहां पर विराम देते हैं और अब रुख कर लेते हैं हम वेट लिफ्टिंग का।
2: जी बिल्कुल, अब वेट लिफ्टिंग सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि इंसानी हौसले की आखिरी सीमा है। ये कहानी है उस एक सेकंड की जहां या तो वजन आपको झुका देता है या फिर आपका टूट विश्वास उस वजन को आपके कदमों में ला देता है। लोहे की उस भारी भरकम रॉड को उठाना सिर्फ शारीरिक ताकत का खेल नहीं है, बल्कि ये उन अनगिनत रातों के संघर्ष, आंसुओं और कभी ना हार मानने वाले जज्बे को उठाने जैसा है। जब हमारे देश का कोई खिलाड़ी मंच पर आता है तो वो सिर्फ

0: वजन नहीं उठाता बल्कि देश के करोड़ों लोगों की उम्मीदों और सपनों को अपने मजबूत कंधों पर संभालता है। कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिला गुजरात के गांधीनगर में पिछले 6 दिन से चल रहे एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जिसका शानदार समापन कल 17 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता के दौरान एशिया के शीर्ष वेटलिफ्टिंग देशों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला, साथ ही कई शानदार प्रदर्शन, नए विश्व और एशियाई रिकॉर्ड्स भी दर्ज किए गए। 11 से 17 मई तक चले इस टूर्नामेंट में कुल 30 देशों ने भाग लिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड गेस्ट टीम्स के रूप में भाग लेने आई थी। कुल 172 एथलीटों ने महिलाओं के 8 और पुरुषों के 7 भार वर्ग श्रेणियों में मुकाबले किए, जिसमें पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग में चीन ने पहला स्थान हासिल किया। भारतीय दृष्टिकोण से अगर देखें तो प्रदर्शन सराहनीय अवश्य रहा, जहां भारत ने कुल 10 पदक अपने नाम किए, जिसमें 1 रजत और 9 कांस्य शामिल हैं। हालांकि एक भी स्वर्ण पदक ना जीतने का मलाल भी खेल प्रेमियों के मन में अवश्य रहा, जिस पर पूर्व भारतीय कोच और द्रोणाचार्य अवार्डी पाल सिंह संधु कहते हैं,
1: देखो कॉमनवेल्थ गेम्स के में तो हमारे जो लड़कियां हैं, जो लड़के हैं, वो इससे भी ज्यादा मेडल लाएंगे। तो जो एशियन गेम्स है, एशियन गेम्स में के लिए हमें थोड़ी और तैयारी करनी पड़ेगी। जो हमारा जो नेशनल कैंप्स हैं वो कंटिन्यूस रखने चाहिए, क्योंकि जो गेम ऑफ वेटलिफ्टिंग है इनकी है कि इसको आप ट्रेनिंग में ब्रेक नहीं दे सकते, तो ट्रेनिंग कंटिन्यू रहनी चाहिए आपको भी एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में हमारे अच्छे मेडल आएंगे, हमारी लड़कियां गोल्ड मेडल भी लाएंगी और लड़के भी मेडल आएंगे।
0: वहीं महिला वर्ग में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन पुरुष वर्ग के मुकाबले काफी अच्छा रहा, जहां उन्होंने 487 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया, जिसमें ज्ञानेश्वरी यादव सबसे सफल खिलाड़ी बनकर उभरी, जिन्होंने 53 किलोग्राम भार वर्ग में 1 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किए।
2: पिछले साल से मैं इसके लिए मैनिफेस्ट कर रही थी कि यहाँ पे एशियन होना है, मुझे खेलना है और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। उस हिसाब से मैंने अपना जितना भी ट्रेनिंग में किया है, मैं यहाँ पे आके अपना पर्सनल, तो उस चीज के लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ।
0: वहीं संजना ने भी 77 किलोग्राम भार वर्ग में 3 कांस्य पदक जीते। बात करें पुरुषों की तो भारतीय पुरुष टीम 379 अंकों के साथ 5वें स्थान पर रही, जिसमें सबसे अधिक पदक अजीत नारायण ने दिलाए। उन्होंने 71 किलोग्राम भार वर्ग में 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। हालांकि लवप्रीत सिंह कोई मेडल अपने नाम नहीं कर पाए, लेकिन 110 प्लस किलोग्राम भार वर्ग में उन्होंने 386 किलो का कुल भार उठाकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, जो उनके राष्ट्रीय खेलों के रिकॉर्ड से 12 किलो ज्यादा है। कुल मिलाकर घरेलू दर्शकों के सामने 16 सदस्यीय भारतीय दल का ये प्रदर्शन भविष्य के अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
1: ऐसे भी स्टैंडर्ड ऑफ वेट लिफ्टिंग इन एशिया इज वेरी मच हायर। एशिया में मेडल लेना ऑलमोस्ट ओलंपिक में मेडल लेना होता है। एशियन कंट्री स्पेशली चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, दे आर लिफ्टर, दे हैव ब्रोकन मैनी मैनी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। तो एक स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ, मतलब एक लड़के ने 3 मेडल लिए हैं, लड़कियों ने कुछ मेडल लिए हैं, तो पहले से फिर भी बड़ा अच्छा हो रहा है कि जो हमारा स्टैंडर्ड है एशिया के हिसाब से इम्प्रूव हो रहा है।
3: जी हाँ, ये थे पाल सिंह संधु, जो कि मौजूद थे सिडनी ओलंपिक्स में जब कर्णम मालेश्वरी ने जीता था पहला पदक किसी भी भारतीय महिला की ओर से ओलंपिक्स के मंच पर। और वो अगर ये कह रहे हैं कि ये अच्छे संकेत है, तो सही मायने में संकेत अच्छे हैं। तो शुक्रिया करते हैं हम पाल सिंह संधु का हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए अब आपको ले चलते हैं टेनिस की दुनिया में। जी हाँ, टेनिस की हम बात कर रहे हैं अब, जहां पर फ्रेंच ओपन 2026 का आगाज कल से होने जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर टेनिस प्रेमियों के लिए यह रही है कि कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने बड़े नाटकीय अंदाज से पिछली बार पुरुषों के एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया था, याद दिला दें आपको क्या हुआ था फाइनल में, पहले 2 सेट यानिक सिनर ने बड़े आसानी के साथ जीते थे और उसके बाद तीसरे सेट को भी वो लगभग अपने नाम करने की दहलीज पर पहुंच चुके थे। 3 चैंपियनशिप पॉइंट्स कार्लोस अल्काराज ने बचाए और उसके बाद ना ही सिर्फ उस सेट को जीता बल्कि अगले 2 सेटों को भी नाटकीय अंदाज में जीतकर उस खिताब को अपने नाम किया था कार्लोस अल्काराज ने। लेकिन इस बार कलाई की चोट के चलते वो इस बार शिरकत करते हुए फ्रेंच ओपन में नहीं दिखेंगे और इसकी वजह से यानिक सिनर इटली से जो आते हैं फेवरेट माने जा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में यानिक

0: सिनर ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है, जिसके बाद उनके हौसले फ्रेंच ओपन के लिए पेरिस में जाने के लिए बुलंद है।
1: It was very well. A lot of tension from my side. If it turns out as a winner, also as a loser today, I witnessed something new for me today, where I know what's really on the line. And you know, winning here as an Italian in Italy, it means a lot to me. And it was a really important day for us, also in doubles division. You know, with Simone and Andrea, and yeah, so we are very happy to make Italian people as proud as we can. And also from my side, yeah, the last tournaments I've played, incredible. No, so now most important is to rest up a couple of days and not think about tennis, not think about anything else, and recover physically, and then hopefully be ready for Paris.
0: जी हाँ, दो तीन दिन आराम करेंगे और उसके बाद तैयार हो जाएंगे। इन दो तीन दिनों में हालांकि क्वालिफाइंग राउंड्स खेले जाएंगे। महिलाओं की बात करते हैं, कोको गॉफ डिफेंडिंग चैंपियन है यूएसए से आने वाली, कोको गॉफ जो कि महिलाओं के एकल वर्ग में उन पर नजर रहेगी, लेकिन एक भारतीय खिलाड़ी पर भी नजर रहेगी, क्योंकि विंबलडन 2025 जहां पर सुमित नागल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था, उसके बाद ये पहला ग्रैंड स्लैम होने वाला है जहां पर एक भारतीय खिलाड़ी भी एकल वर्ग में शिरकत करते हुए आपको नजर आएंगे। और ये भारतीय खिलाड़ी है करमन कौर ठांडी, जो कि क्वालिफाइंग राउंड में खेलते हुए दिखेंगी। इनका पहला मुकाबला होने वाला है फ्रांस की, यानी कि मेजबान देश से आने वाली हार्मनी टैन से, और इनके ऊपर हमारी नजर रहेगी। खैर, नजरें भारतीय टेनिस में क्या हो रहा है उस पर भी हमारी लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह खेला गया कर्नाटका ओपन 2026, जिसमें डबल्स वर्ग में खासकर भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत सराहनीय रहा। इस साल डबल्स में थाई खिलाड़ी पूछरा इसारियों के साथ खेलने वाले निकी कालियांदा पुनाचा, जिन्होंने अपना ग्रैंड स्लैम डेब्यू किया था, उन्होंने कर्नाटका ओपन 2026 में डबल्स की प्रतियोगिता में जीत हासिल की। उनके साथ दे रहे थे साकेत मायनेनी, जो कि मल्टीपल टाइम्स एशियन मेडलिस्ट है, भारत के लिए हर देश विदेश के बड़े मंच पर वो मेडल दिला चुके हैं, और इन दोनों खिलाड़ियों ने मिलकर डबल्स का खिताब अपने नाम किया। वहीं पुरुषों के एकल वर्ग का खिताब रहा यूएसए से आने वाले कीगन स्मिथ के नाम। और इस हफ्ते एसएम कृष्णा मेमोरियल टूर्नामेंट का आगाज होने जा रहा है, जो कि बेंगलुरु में उसी स्टेडियम यानी एसएम कृष्णा टेनिस स्टेडियम में खेला जाएगा। खैर, ये तो रही टेनिस की बात, अब थोड़ा सा रुख कर लेते हैं हॉकी का और जानते हैं क्या कुछ चल रहा है हॉकी में।
2: भारत की टीम है बाईं तरफ, जहां पे पहुंची अब्बास भारतीय टीम है, और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने टीम में से बाहर कर दी बाईं फ्लैंक में, और यह खेल खत्म। भारत 2-1 जीत गया, भारत विश्व हॉकी चैंपियन है।
3: भोपाल के उद्धव दास मेहता सेंट्रल में रविवार को खेले गए अपने अपने दूसरे मैचों में भारतीय अंडर 18 पुरुष और महिला हॉकी टीमों दोनों को ही ऑस्ट्रेलिया अंडर 18 के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। मेजबान टीम के लिए ये एक चुनौतीपूर्ण दिन रहा। पुरुषों के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 3-1 से जीत दर्ज की। पहला मैच 2-2 से ड्रॉ रहने के बाद इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने 4 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। मैच के दूसरे क्वार्टर की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया की ओर से अर्जुन ब्रायन ने गोल करके ऑस्ट्रेलिया का खाता खोला। भारत ने तुरंत वापसी की और आशीष तानी पूर्ति ने गोल दाग कर मेजबान टीम को बराबरी पर ला खड़ा किया। हालांकि तीसरे क्वार्टर में ऑस्ट्रेलिया ने मैच पर फिर से नियंत्रण बना लिया। सैम पीपल्स और एंगस मैकमिलन ने 1-1 गोल करके मेहमान टीम की जीत पक्की कर दी। वहीं बात करें महिलाओं की, तो महिला मैच में भारतीय अंडर 18 टीम को मेहमान टीम के हाथों 1-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी। दिया ने पहले क्वार्टर में गोल करके भारत को शुरुआती बढ़त जरूर दिलाई साथियों, लेकिन जिससे शुरुआती खेल में मेजबान टीम का दबदबा बना रहा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी की। एलेनिस कलन, गिसेले थॉम्पसन, अरोरा कोवासेविच और स्टेला बार्थोलोम्यूज ने गोल दागकर इस दौरे पर ऑस्ट्रेलिया की लगातार दूसरी जीत सुनिश्चित की। भारतीय टीमें आज वापसी के इरादे से मैदान पर उतरेंगी, जहां भारतीय अंडर 18 महिला टीम और पुरुष टीम दोनों ही अपने सीरीज का तीसरा मुकाबला खेलने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज उसी मैदान पर उतरेंगी।
0: दूसरी तरफ अगर बात करें सीनियर टीम की, तो भारतीय महिला हॉकी टीम का आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, यानी दल की घोषणा हो चुकी है। 22 खिलाड़ियों के नाम है। सलीमा टेटे कप्तान रहेंगी और उसके साथ साथ कई अनुभवी खिलाड़ी भी शिरकत करते हुए नजर आएंगे। सविता पुनिया, जो कि कुछ समय पहले आउट ऑफ एक्शन रही थी, वो भी इस दल का हिस्सा है, और उसके साथ साथ कई युवा चेहरे भी शामिल हैं इस दल में। आपको बता दें कि 26 से 30 मई को पर्थ हॉकी स्टेडियम में ये कुछ मुकाबले खेले जाने वाले हैं।

0: और आने वाले ऑकलैंड दौरे के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा अहम टूर्नामेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि ऑकलैंड दौरे पर जब भारतीय टीम जून में होगी तब वहाँ पर खेला जाएगा महिलाओं का नेशंस कप 2025-2026। आपको याद दिला दे कि पिछले साल खराब प्रदर्शन रहा था भारत का FIH प्रो लीग में, जिसके चलते रेलीगेट हो गई थी भारतीय टीम, आशापूर्ण प्रदर्शन नहीं रहा था, और इसलिए अगर FIH प्रो लीग में दोबारा क्वालिफाई करना है तो भारतीय टीम को नेशंस कप में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो भारतीय टीम के साथ हमारी शुभकामनाएं हैं और हॉकी पर लगातार हमारी नजरें बनी रहेंगी, लेकिन इस वक्त नजरें हमारी चेस बोर्ड पर भी बनी हुई है। चेस की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ घट रहा है, आइए उस पर नजर डालते हैं।
1: रोमानिया के बुखारेस्ट में खेले जा रहे सुपरबेट चेस क्लासिक 2026 टूर्नामेंट का चौथा राउंड भारतीय दृष्टिकोण से काफी नपातुला रहा। राउंड चार में भारत के एकमात्र खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा ने नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट के खिलाफ काले मोहरों से खेलते हुए एक सुरक्षित और त्वरित बाजी खेली, जो अंततः ड्रॉ पर समाप्त हुई। इस ड्रॉ के बाद प्रज्ञानंदा चार राउंड में 2.5 अंकों के साथ मजबूती से शीर्ष खिलाड़ियों का पीछा कर रहे हैं। वहीं इस राउंड में जर्मनी के विसेंट कीमर ने मैक्सिम वाचियर लागराव को हराकर टूर्नामेंट में इकलौती बढ़त बना ली है, जबकि अलीरेजा फिरोजा स्वास्थ्य कारणों से इस राउंड में उपलब्ध नहीं हो सके। अब अगर आगामी राउंड 5 के पेयरिंग्स की बात करें तो भारतीय प्रशंसकों की नजरें प्रज्ञानंदा पर टिकी होंगी, क्योंकि 5वें राउंड में आर प्रज्ञानंदा का मुकाबला वेस्ले सो के खिलाफ होने जा रहा है। प्रज्ञानंदा के पास बड़ी जीत दर्ज करने और तालिका में शीर्ष पर मौजूद विंसेंट कीमर पर दबाव बनाने का यह बेहतरीन मौका होगा। इसके अलावा राउंड 5 के अन्य मुकाबलों में विसेंट कीमर का सामना नीदरलैंड्स के अनीश गिरी से होगा। रोमानिया के बोगदान डेनियल डीके के सामने USA के फेबियानो कारुआना होंगे। फ्रांस के मैक्सिम वैचियर लैग्रेव का मुकाबला नीदरलैंड्स के जॉर्डन वैन फॉरेस्ट से होगा और फ्रांस के अलीरेजा फिरुजुआ की भिड़ंत उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदरोव से होगी।
0: जी हां, आर प्रज्ञानंदा पे तो सभी की नजरें हैं, लेकिन भारतीय फैंस की नजरें जावोखिर सिंदरोव पे भी है। जावोखिर सिंदरोव उज्बेकिस्तान से आते हैं, 20 वर्षीय हैं और कैंडिडेट्स टूर्नामेंट उन्होंने इस वर्ष जीता है, जिसका मतलब ये कि नवंबर दिसंबर 2026 में वो चुनौती देने वाले हैं मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन डी गुकेश को। हालांकि इस प्रतियोगिता में जावोखिर सिंदरोव इस वक्त नंबर 8 पे चल रहे हैं, यानी कि उनका फॉर्म उतना भी ज़्यादा डराने वाला नहीं है अगर आप डी गुकेश के प्रशंसक हैं तो। लेकिन अभी टाइम है वर्ल्ड चैंपियनशिप के मुकाबले होने में, लेकिन तब तक नजरें बनी रहेंगी हमारी जावोखिर सिंदरोव पे भी। साथ के साथ रमेश बाबू प्रज्ञानंदा इस वक्त नंबर 4 पर है स्टैंडिंग्स में, तो उन पर तो नजरें बनी ही रहेंगी। नजरें हमारी बनी हुई है आर्चरी और बैडमिंटन पर भी, क्या कुछ चल रहा है वहां पर, आइए रुख करते हैं। चलिए बात करते हैं अब बैडमिंटन की। मलेशिया मास्टर्स 2026 की शुरुआत कल होने वाली है, जिसमें भारत के लिए पुरुषों के वर्ग में सिंगल्स में किरण जॉर्ज, तरुण मनपली, HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन शिरकत करते हुए नजर आएंगे। महिलाओं के सिंगल्स में वहां पर देविका सिहाग, तन्वी शर्मा, मालविका बंसोद, अमोल खर्ब, तानिया हेमत, ईशानी बरुआ खेलते हुए नजर आएंगी। डबल्स में एकमात्र जोड़ी पुरुषों के वर्ग में हरिहरन अमसकरुणन की और MR अर्जुन की होगी। वुमेन्स डबल में आपको पांडा सिस्टर्स यानी ऋतुपर्णा और श्वेतपर्णा और अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम खेलते हुए नजर आएंगी। वहीं मिक्स्ड डबल्स में रोहन कपूर, ऋत्विका गाड़े और साथ के साथ आशीष सूर्या, अमृता प्रमेश भी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें आर्चरी की, तो आर्चरी में इस वक्त क्वालिफाइंग टूर्नामेंट चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं आने वाले एशियन गेम्स और आने वाले वर्ल्ड कप के लिए, जहां पर हमने ये देखा है कि काफ़ी नए नए चेहरे उभर कर सामने आए हैं। लेकिन धीरज बोमदेवरा रिकर्व में टॉप पर हैं, तो वहीं कुमकुम अनिल मोहोद वुमेन्स रिकर्व में टॉप पर हैं। कंपाउंड मैन में ओजस प्रवीण देवतले इस वक्त टॉप पर चल रहे हैं और ज्योति सुरेखा वेनम इस वक्त चल रही हैं कंपाउंड वुमेन में टॉप पर। चलते चलते छोटी सी नजर फुटबॉल पर।
1: फुटबॉल के आईसीएल में अगर हम बात करें तो पहला मुकाबला कल मोहन बगान सुपर जायंट्स और ईस्ट बंगाल FC का हुआ, जहां 1-1 की बराबरी पर मैच समाप्त हुआ, और दूसरा मुकाबला खेला गया स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली और इंटरकाशी FC के बीच, जहां मैच 0-0 से ड्रॉ रहा। बात करें IFL की, तो जहां कल डेमो SC और डायमंड हार्बर का मुकाबला 1-1 से बराबर पर खत्म हुआ, वहीं DPL में सुदेवा दिल्ली FC और दिल्ली FC आमने सामने रही और 3-0 से दिल्ली FC ने जीत दर्ज की।
0: चलिए स्टूडियो की घड़ी बता रही है, आपसे विदा लेने का समय आ गया। मेरा नाम दर्पण, मेरे साथ थे अभिनव, कार्यक्रम के प्रोड्यूसर।

0: शाहनवाज खान के साथ हमें इजाजत दीजिए। आप सुन रहे थे खेल खिलाड़ी। नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: खेल खिलाड़ी, खेलों का आईना।
3: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गौर स्टोर ने ओस्लो में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों नेताओं ने भारत नॉर्वे संबंधों को हरित रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जो स्वच्छ ऊर्जा, नीली अर्थव्यवस्था और हरित परिवर्तन के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
4: भारत और नॉर्वे की ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पूरे विश्व के लिए लाभदायक होगा। नॉर्वे आज इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव से जुड़ रहा है। दो बड़े मैरिटाइम देश होने के नाते हम साथ मिलकर मरीन इकोनॉमी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और कैपेसिटी बिल्डिंग में सहयोग को मजबूत करेंगे।
3: वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, अंतरिक्ष और आर्किटेक्ट क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाली विशाल अवसरों, विशेष रूप से व्यापार, प्रौद्योगिकी सहयोग और रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी प्रकाश डाला। वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे को धन्यवाद दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के दौरान आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस के पर्याप्त भंडार हैं। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। विदेश मंत्रालय खाड़ी के अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास 2400 घंटे हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। प्रश्न पत्र लीक होने के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के दौरान महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच करने वाले आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगा, जबकि चेन्नई की नज़र शीर्ष 4 में प्रवेश करने की होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरेच ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालाप

0: कृतवन्तौ। कांग्रेस नेता वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। पश्चिमबंग सर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषणायोगौ निर्मितौ। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरंगस्य स्थितिं निवारयितुं आयुर्वेदादि विविध आयुष प्रणाल्याः पारंपरिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। अपि च आईपीएल क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य चेन्नई सुपर किंग्स दलं एम ए चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलं सम्मुखीकरिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री जोनास गहरस्टोरे च ओस्लो नगरे प्रतिबंधित प्रतिनिधिस्तरीय वार्तालापं कृतवन्तौ। स्वक्षोर्जायाः नील अर्थव्यवस्थायाः हरित संक्रमणस्य च क्षेत्रेषु सहकारं वर्धयितुं महत्वपूर्णं सोपानं लक्ष्यीकृत्य भारत नॉर्वे सम्बन्धं हरित सामरिक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकर्तुं उभावपि नेतारौ सहमतौ अभवताम्।
1: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
0: वार्तालापावधौ उभौ नेतारौ द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां सम्पूर्ण क्षेत्रस्य समीक्षाम् अकुरुताम्।
1: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
0: प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना अद्य स्वीडन देशस्य द्विदिवसीया यात्रा समापिता। स्वीडन देशस्य प्रवासे अनेकानि महत्वपूर्णानि परिणामानि प्राप्तानि, येन द्वैपाक्षिक सम्बन्धेषु नूतना गतिः प्राप्ता इति श्रीमोदिना सामाजिकान्तर्जालीय पटले उक्तम्। सः अवदत् यत् तेषां द्वैपाक्षिक उपबन्धान् व्यूहात्मक सहभागित्वं प्रति उन्नतीकरणात् आरभ्य संयुक्त नवान्वेषण सहभागित्वम् इत्यस्य द्वितीयो भागः अथ भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी कृत्रिमबुद्धिमत्ता मार्गस्य आरम्भात् आरभ्य आगामिषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक व्यापारं द्विगुणीकरणस्य लक्ष्यम् अभवदिति। सः स्वीडन देशस्य जनेभ्यः स्वीडन देशस्य सर्वकाराय प्रधानमन्त्री उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यस्मै च स्नेहाभिवर्षणाय धन्यवादभावान् प्रायच्छत्। अग्रिमेषु पञ्चवर्षेषु द्वैपाक्षिक आर्थिक विनिमयं द्विगुणीकर्तुं मेक इन इण्डिया, मेड विद स्वीडन इत्येतयोश्च उपक्रमयोः विशेषतः हरित हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, उन्नत विनिर्माणम् इत्यादिषु क्षेत्रेषु सहकारं सुदृढीकर्तुं समग्र मार्गचित्रस्य लक्ष्यम् अस्ति इति सः प्रावोचत्। कांग्रेस दलस्य वीडी सतीशनः अद्य प्रातः तिरुवनन्तपुरम नगरस्य केन्द्रीय क्रीडांगणे आयोजिते भव्य समारोहे केरलम राज्यस्य नूतन मुख्यमंत्री रूपेण शपथवचनं स्वीकृतवान्। राज्यपालः राजेन्द्रन विश्वनाथ आर्लेकरः श्रीसतीशनं पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं कारितवान्। मुख्यमन्त्रिणा सह 21 सदस्याः मन्त्रिपरिषदः कार्यभारं स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् कार्यक्रमे कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड्गे, कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गांधी, कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, तेलंगाना राज्यस्य मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेशस्य मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखु, केरलस्य भाजपा पक्षस्य राज्याध्यक्षः राजीव चंद्रशेखरादयः नेतारः उपस्थिताः आसन्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। पश्चिमबंगसर्वकारेण स्वस्य निर्वाचनस्य प्रतिज्ञानुसारं कथित संस्थागत भ्रष्टाचारस्य महिला विरुद्धम अत्याचारस्य च अन्वेषणार्थं द्वौ अन्वेषण आयोगौ निर्मितौ। मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य राज्यमंत्रिमंडलस्य अनुमोदनानन्तरं अस्य निर्णयस्य घोषणां कृतवान्।

0: सहकारिता च मन्त्री अमितशाह अद्य रायपुरे राज्यस्तरीय कार्यक्रमे अत्याधुनिक डायल 112 इति आपत्कालीन प्रतिक्रियावाहनानां आधुनिक फोरेंसिक मोबाइल यानानां च ध्वजप्रदर्शनपूर्वकं शुभारम्भं विहितवान्। राज्यस्य विभिन्नेषु मण्डलेषु नियोजनार्थम् अद्य आहत्य 400 नूतनोन्नतापत्कालिक वाहनानि लोकार्पितम्। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, छत्तीसगढ़ विधानसभाध्यक्ष रमण सिंहस्य उपस्थिताः आसन्। सर्वकारः अवदत् यत् देशे तैलेन्धन शोधनागाराणि सामान्यरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। भारते च वर्तमानिक पश्चिम एशिया संकटेन आयात बाधायाः अनन्तरम् अपि पर्याप्तानि अशोधित तैलेन्धन भण्डाराणि सन्ति इति। पश्चिमेशियायाः साम्प्रतिक स्थितिविषये अद्य नवदिल्लीनगरे अन्तर्मन्त्रालयीयं विवरणं प्रायच्छन् पेट्रोलियम् प्राकृतिक गैस मन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवपदासीना सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे पेट्रोल, डीजल, LPG, प्राकृतिक गैस इत्येतेषां पर्याप्तभण्डारम् अस्ति इति।
1: हमारी रिफाइनरीज नॉर्मल ऑपरेशन पर है और हमारे पास सफिशिएंट क्रूड इन्वेंट्रीज हैं, पेट्रोल, डीजल, LPG और नेचुरल गैस के सफिशिएंट स्टॉक्स हैं और किसी भी LPG डिस्ट्रीब्यूटरशिप पर या रिटेल आउटलेट पर ड्राई आउट नहीं है। लेकिन कई जगह पर अफवाहों के चलते पैनिक बाइंग देखी जा रही है। ये भी देखा जा रहा है कि जो बल्क सेल था वो पंप सेल पर भी शिफ्ट हो रहा है।
0: आयुष मन्त्रालयः अद्य वर्तमान ग्रीष्मकालाय अत्यधिक उष्णतायाः सह उष्णतरङ्गस्य च विषये विस्तृतं सार्वजनिक स्वास्थ्य परामर्शं प्राकाशयत्। परामर्शत्वेन मन्त्रालयेन उक्तं यत् पर्याप्ततया जलग्रहणं व्यस्ततायाम् अपि सूर्यप्रकाशस्य प्रत्यक्षसंसर्गात् निवारणं विद्युत्श्लेष्यै समृद्धानां ऋतुकालिकफलानां द्रवाणां च सेवनं करणीयमिति प्राकाशयन्। स्वास्थ्य परामर्शपत्रे उष्णतरङ्गस्य स्थितिं निवारयितुम् आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी, होमियोपैथी इत्यादीनां विविध आयुष प्रणाल्याः पारम्परिक स्वास्थ्य निवारक उपायाः अपि समाविष्टाः सन्ति। केन्द्रीय वाणिज्य उद्योग मन्त्री पीयूष गोयलः अवदत् यत् वैश्विक समस्याभिः सह अनिश्चिततासु अपि भारतं द्रुतगत्या प्रगतिं कुर्वदस्ति। अद्य नवदिल्ल्यां भारत व्यापार महोत्सवस्य अन्तर्जालीय पटलस्य उद्घाटने श्रीगोयलः अग्रे गन्तुम् उत्साहः कदापि न न्यूनीभवति तथा च सर्वे अविरामं कार्यं कुर्वन्तु इति उक्तवान्।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से देवी सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्विट्जरलैंड देश से जिनोवा नगरे आयोजिते 79वें विश्व स्वास्थ्य सभायाः अनन्तरं विश्व स्वास्थ्य संगठनस्य महानिदेशकेन सह मिलितवान्। सामाजिक पटले स्वास्थ्य मंत्रालयेन उक्तं यत् श्री नड्डाः पुनः दृढीकृतवान् यत् वैश्विक स्वास्थ्य समता परिवर्तयितुं भारतस्य प्रतिबद्धता अस्ति इति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य वियतनाम दक्षिण कोरिया देशयोः यात्रायाम् अस्ति। सः वियतनाम देशस्य हनोई इत्यत्र सम्प्राप्तवान्। वियतनाम देशस्य प्रवासावधौ राजनाथ सिंहः वियतनाम देशस्य राष्ट्रिय रक्षामन्त्रिणा जनरल फॉन वॉन जियांग इत्यनेन सह द्वैपाक्षिकं वार्तालापं करिष्यति। सामाजिक अन्तर्जालीय पटले मन्त्री अवदत् यत् सः द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां व्याप्तिम् अधिकं विस्तारयितुम् उभयोः देशयोः भ्रमणार्थम् उत्सुकः अस्ति इति। सः अवदत् यत् सामरिक सैन्य सहयोगस्य गहनता, रक्षा औद्योगिक सहभागित्वस्य सुदृढीकरणं, समुद्रीय सहयोगस्य संवर्धनार्थं भारत प्रशान्त क्षेत्रे शान्तेः स्थिरतायाः च प्रोत्साहनम् अस्य केन्द्रबिन्दुः भविष्यति। IPL क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य आतिथेय चेन्नई सुपर किंग्स दलम् MA चिदंबरम क्रीडांगणे सनराइजर्स हैदराबाद दलम सम्मुखी करिष्यति। क्रीडायाः आरंभः सायं 7:30 भविष्यति इति वार्ताः।
3: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: शाहिद भाई देखिए, हमारे पास कुछ बातें हैं अपने भाइयों से करने के
1: जी
0: लिए,
1: बहन
0: और
1: बहन
0: कुछ जानकारी भी हैं दिलवाने के लिए, और मनोरंजन भी हम उनका करवाएंगे। और आज देखिए, जैसे विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है, और
1: हाँ
0: ये एक ऐसी बीमारी है कि अगर व्यक्ति को हो जाती है ना, तो वो चाहे उसका इलाज भी है, टीकाकरण तो आ गया
1: ना
0: है,
1: बहन, एड्स
0: लेकिन
1: जो
0: अंदर
1: है,
0: ही अंदर वो घुटने
1: हाँ
0: लगता है कि मुझको ये बीमारी हो गई है।
1: दरअसल एड्स जो है बहन, बीती सदी जो है ना,
0: जी
1: उसके उत्तरार्ध में ये बड़ी तेज़ी से फैला, और अफ्रीकी देशों में, और जो है कि ख़ास तौर से इसकी जो है कि बड़ी तेज़ी से इसने पांव पसारे। और ये
0: बिल्कुल
1: हालांकि इसके लिए कई तरह की भ्रांतियां भी हैं कि इसके पीछे क्या क्या था, वो अलग चीज़ है, लेकिन तेज़ी से इसने जो है ना एक बड़ी आबादी को घेरना शुरू किया,
0: बिल्कुल
1: और लोगों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है ना इसमें, वो घटने लगी,
0: घटने लगी। और
1: जिस
0: तो कहते
1: मौतें होने
0: हैं
1: लगी, जिसके
0: जी,
1: बाद इस पे जो है कि बड़ा शोध शुरू हुआ, और अब जाके जो है कि ये कह लीजिए कि वैक्सीन इसकी जो है ना इजाद कर ली गई है, ये बड़ी चीज़ है।
0: ये बड़ी चीज़ है। और कहते हैं कि इस दिन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो लोग हैं उनको HIV के बारे में, उसकी रोकथाम के बारे में समझाना है, उसको
1: हाँ
0: जागरूक करना
1: जी
0: है,
1: जी जी
0: और ये बताना है कि इसका टीका अब बन चुका है, और हमारे जो जिनके दिमाग में भ्रांतियाँ हैं कि ये छूने से फैलता है या किसी के साथ खाने से फैलता है, ऐसी
1: हाँ
0: गलत गलत बातें
1: हाँ ऐसा
0: उनके
1: नहीं
0: दिमाग
1: है,
0: में
1: देखिए
0: नहीं होनी
1: जैसा कि
0: चाहिए,
1: इसके नाम
0: ऐसा
1: में ही
0: नहीं
1: है,
0: होता।
1: एड्स
0: हाँ
1: एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, ठीक
0: जी
1: है। ये कई तरह से इन्फेक्शन के द्वारा आता है, जैसे कि किसी का संक्रमित सुई है, ठीक है, वो लग गया, ठीक
0: बिल्कुल
1: है, कोई और तरह का संक्रमण है, वो हमारे खून में सीधे प्रवेश कर गया, तो
0: जी
1: इस तरह से जो है कि ये संक्रमण होता है। और बड़ी चीज़ ये है कि इसमें आदमी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो कमज़ोर होने लगता है, यानी दूसरे अब रोग हो गए, जैसे ख़ास तौर से आपको TB हो गया, या इस तरह से और दूसरी कोई बीमारी हो गई, तो उसमें आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता चूँकि कम हो रही है इसकी वजह से, तो धीरे धीरे आदमी जो है कि कमज़ोर होता है, और फिर एक टाइम पे ये होता है कि मौत भी होने लगती है।
0: बिल्कुल। और जैसे कि कहते हैं ना कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं या स्वयं सहायता समूह वाले लोग हैं, या इनसे जुड़े हुए समाज सेवी हैं, या
1: हाँ
0: चिकित्सक हैं,
1: जी
0: इन लोगों को धन्यवाद देने के लिए ये दिन मनाया जाता
1: हाँ, कि
0: है कि
1: जो
0: भाई इन लोगों ने इतनी मेहनत करके इस टीके का
1: इजाद
0: इस
1: किया,
0: इजाद किया और
1: हाँ
0: लोगों तक
1: जी
0: पहुंचाया,
1: जी जी
0: या उन लोगों को जिनको ये बीमारी हो रही थी उसकी रोकथाम के लिए
1: जी
0: प्रयास
1: जी जी
0: किया।
1: अरे भाई, जब ये टीका नहीं था, तो शुरू शुरू में जो दवाइयाँ बनाई गई थी,
0: जी
1: उनकी शर्तें तो ये थी कि वो जो है कि खाली पेट खाओ, एक टैबलेट 2.5 लीटर पानी के साथ, तो दूसरा टैबलेट 5 लीटर पानी के साथ, इस तरह से जो है कि दवाएं खानी पड़ती थी, दवा खाने में भी में ही आदमी की जो है कि जान निकल जाए,
0: बिल्कुल। और देखिए,
1: बहुत कठिन ज़िंदगी
0: इस
1: थी।
0: बात का यही एक तात्पर्य है कि विश्व एड वैक्सीन दिवस दुनिया को ये संदेश देता है कि हम मिलकर काम करेंगे तो जल्द ही इसे ख़त्म कर
1: जी
0: पाएंगे
1: हाँ
0: और अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। तो ये तो थी एड्स के बारे में जानकारी, और अब आगे एक और जानकारी हम अपने भाइयों को देते हैं। आकाशवाणी को 90 साल पूरे हो चुके हैं इस बारे में कि कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका। बलबीर सिंह सहरावत से बातचीत कर रहे हैं कमल किशोर, और आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार साथियों, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा माध्यम है आकाशवाणी, और हम सब बखूबी जानते हैं भारत की ज्यादातर आबादी गांव में बसती है, और गांव के किसान, महिला, बुद्धिजीवियों को जोड़ने में आकाशवाणी ने एक अहम भूमिका निभाई है, और ये 1936 से बदस्तूर जारी है और आज भी वही लोकप्रियता बरकरार। और अब आकाशवाणी के 90 बरस पूरे हो रहे हैं। देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से हरित क्रांति के दौर में 1965 में आकाशवाणी ने फार्म एंड होम यूनिट्स की स्थापना की, और इस इकाई की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था वो था किसानों और ग्रामीण समुदाय की दैनिक जरूरतों के अनुसार कार्यक्रम का निर्माण करना, तैयार

0: और उसे पेश करना, जिसमें कृषि से जुड़ी कई बातें होती थी, कई कार्यक्रम होते थे जिसमें कि बेहतर उत्पादन की जानकारी दी जाती थी, नई नई तकनीकों की जानकारी दी जाती थी। इन कार्यक्रमों के माध्यम से खेती, पशुपालन, मत्स्य पालन जैसे कई कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाती थी, और कृषि जैसे विषयों के साथ रोजगार की भी जो बातें होती थी वो भी बड़ी अच्छी तरह से बताई जाती थी, जिसमें ऋण सुविधाएं, प्रशिक्षण, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण संबंधी जो भी जानकारी होती थी उन्हें प्रसारित की जाती थी। फार्म एंड होम कार्यक्रम में सुबह, दोपहर और शाम को भी प्रसारित किए जाते थे, जो कि आज भी उसी प्रकार से बदस्तूर जारी है। तो आज इस कार्यक्रम में अपनी खूबसूरत यादों के साथ हमसे एक बहुत ही खास व्यक्ति आपके लिए, आपके साथ जुड़ रहे हैं, बलबीर सिंह सहरावत जी, और आप इन्हें रेडियो में मुंशी भाई के नाम से जानते थे। आप काफी लंबे अरसे से आकाशवाणी से जुड़े हैं और आकाशवाणी की आपने बड़ी लगन से सेवा की है। मुंशी भाई, हम आपका स्वागत करते हैं, नमस्कार।
1: का राम राम, और अपने सुनने वाले सब बहन भाइयों को भी राम राम। देखिए, मैं रेडियो से जुड़ा था। वैसे तो पहले रेडियो सुनते रहे, 1965 की लड़ाई थी उस टाइम, हम ढोल की पोल और ये सुनते थे, प्रोग्राम सुनते थे उस उम्र में। और धीरे धीरे रेडियो के जो नज़दीक पहुंचे हम, तो ग्राम संसार कार्यक्रम में एक चुनाव होना था, जिसमें चुनाव हो गया उसमें।
0: यानी कि आकाशवाणी में आपका सिलेक्शन हो गया था।
1: हाँ, दिल्ली की आकाशवाणी में 5 फरवरी 1970 को मैंने ज्वाइन किया।
0: इसका मतलब ये हुआ कि आप बहुत लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और आपके पास तो बहुत सारे अनुभव होंगे।
1: लेकिन मैं ये बता दूं कि 1970 से 2009 तक, जब मेरी उम्र 60 साल की होगी, तो भाई रिटायरमेंट होनी थी।
0: जी
1: 39 साल की नौकरी करी, लेकिन उसके बाद भी भाई रेडियो ने मुझे जोड़े रखा।
0: मुंशी भाई, वैसे आपने बताया कि आपने ढोल का पोल ये सब बहुत सारे कार्यक्रम आप सुनते थे, लेकिन वैसे जो रेडियो की ओर जो झुकाव हुआ वो किस वजह से हुआ? किसी ने कहा कि रेडियो सुनो, किसी ने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम सुनना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है।
1: देखो, सबसे पहली बात तो ये थी कि इसमें जो लोक संगीत के कार्यक्रम होते थे, और इसकी तरफ मेरा झुकाव भी था, मैं यानी शौक था ये सुनने का।
0: मुंशी भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो रुझान था, आपकी जो रुचि थी, आपका जो इंटरेस्ट था वो संगीत की ओर ज्यादा था, और वो भी लोक संगीत की ओर।
1: हाँ, मुख्य तो लोक संगीत, और उसके साथ साथ खेतीबाड़ी की जानकारी, बागवानी की जानकारी, मुर्गी पालन की जानकारी, मत्स्य पालन की जानकारी, ये सब जानकारी इसमें दी जाती है। तो वो सारी चीजें, जब मैं इसके साथ जुड़ा तो कुछ वैज्ञानिकों से सीखते रहे, वैज्ञानिक के साथ बातचीत करते रहे, और किसानों तक, देखो कई कार्यक्रम थे जी, एक कार्यक्रम हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने शुरू किया प्रयोगशाला से खेतों तक। तो प्रयोगशाला में जो नई किस्म निकालते, नई बात जो शुरू करते, तो वैज्ञानिकों से किसानों तक पहुंचाने का काम रेडियो।
0: जी
1: तो वो काम हम करते थे, हम थे माध्यम। अच्छा, इसके अलावा वो प्रदर्शन प्लॉट भी लगाते थे, जैसे पूसा वालों ने लगा लिया, कृषि विश्वविद्यालय वालों ने लगा लिया, कृषि ज्ञान केंद्र वालों ने लगा लिया, तो हमें वो साइट पे भी ले जाते थे, दिखाते थे, अगर भाई ये हम नई किस्म लगा रहे हैं, इसमें ऐसे ऐसे प्रयोग कर रहे हैं। हम वहां किसान जो इकट्ठे होते थे उनसे बातचीत करते थे। तो इस तरह से किसानों के पास वैज्ञानिकों की नई खोज, नई किस्म सब पहुंचती थी। तो इसका सबसे बड़ा माध्यम हमारा रेडियो
0: रेडियो हुआ करता था। तो मुंशी भाई, तो सबसे पहले आपने जब ज्वाइन किया यहाँ पर, ज्वाइन करने के बाद में क्या आपने सबसे पहले, आपकी जो नियुक्ति हुई क्या वो फार्म एंड होम में ही हुई या किसी और सेक्शन में?
1: नहीं, कृषि एवं गृह एकांश, जिसको आप फार्म एंड होम बोल रहे हो, उसी में मेरी नियुक्ति हुई थी। और मैं जब तक रेडियो पर रहा, कृषि एवं गृह एकांश से जुड़ा रहा हूं।
0: यानी कि आप किसानों से बहुत अधिक और करीब से जुड़े हुए थे, और उनके बारे में आपको बहुत सारी जो बातें थी वो पता चल गई थी, उनको क्या समस्या है, किस प्रकार की जरूरतें हैं, कहाँ कहाँ, कब कब, क्या क्या होना है, यानी कि किस समय, मौसम, सबकी जानकारियां वगैरह सब साझा करते थे।
1: देखिए, एक दोहरा फायदा था मुझे। एक तो मैं खुद किसान का बेटा था, खुद मैंने खेती की है, और खेती के बाद मैं किसानों के कार्यक्रम से जुड़ गया। और एक कार्यक्रम सुबह कृषि चर्चा के नाम से होता था, वो कार्यक्रम किसानों के लिए नई नई जानकारी रोजाना की देनी थी, कि भी आज क्या होना चाहिए, आज खेत में किसान को क्या करना है, क्या वो मैं अपने तैयार करके किसानों के वैज्ञानिकों से,
0: की तैयारी के लिए आप वैज्ञानिकों के पास जाते थे, आप वैज्ञानिकों को बुलाते थे, कृषि
1: हाँ,
0: वैज्ञानिकों को,
1: वैज्ञानिकों से ही सारा सीख के और उसको किसानों तक हम पहुंचाते, और उस कार्यक्रम को भी बड़े चाव से लोग सुनते थे, उनकी प्रतिक्रिया भी आती थी। देखिए, पहले तो माध्यम चिट्ठी थी।
0: जी
1: चिट्ठी के माध्यम से वो अपनी बात हमें भेज

0: जीतते थे, हमें तब पता लगता था कि भाई हमारे इस कार्यक्रम को कितने लोग सुन रहे हैं, क्या उनको फायदा हो रहा है, तो हमारा माध्यम चिट्ठी था।
1: जी बलबीर जी, कभी कोई ऐसा तो मौका आया होगा कि जिसमें कि आप किसान भाई को आपने स्टूडियो में बुलाया होगा, और बहुत सारी बातें होंगी, लेकिन उनमें से कोई ऐसी बातें होंगी जो कि आपको बार बार याद आता है।
0: हाँ देखिए, प्रगतिशील किसान यहाँ आते थे और जो आधुनिक खेती करते थे, कहीं कहीं तो ऐसी बातें भी थी कि हमारे वैज्ञानिक भी उसको सुन के चौंक जाते थे, तो किसानों से भी हमें भी सीखने को मिलता था और हमारे वैज्ञानिक भी कहते थे कि भाई हाँ ये तो इन्होंने बढ़िया किया है, दूसरे किसान भी फिर उसकी नकल करके वो भी करते थे उसका।
1: हम ये कह सकते हैं कि रेडियो की लोकप्रियता और कृषि कार्यक्रमों की लोकप्रियता काफी मतलब ऊंचाई पर थी कहना चाहिए।
0: वो समय सुनहरी समय था, सुनहरी युग था, जिसमें किसानों ने रेडियो से बहुत कुछ सीखा और रेडियो की अहमियत को किसान भाई समझते थे, रेडियो का सम्मान था, रेडियो की वजह से हमारा भी सम्मान था। और ये है खेती के साथ साथ हम एक बात और है, देखिए गांव वालों को साथ साथ मनोरंजन भी चाहिए, तो हम उनके लिए लोक संगीत के जो कार्यक्रम करते थे उसमें बीच में रागनिया गीत भजन ये सब सुनवाते थे उनको, और इसको भी बड़े चाव से सुनते थे। अच्छा, बीच बीच में आपने एक रोजगार का जिक्र किया, तो हम हर महकमा उसको बुला के, उसके जो डायरेक्टर है निदेशक है, तो उनको बुला के हम उनसे पूछते थे अब भाई आप किस तरह से रोजगार देते हैं, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि बच्चा आपके इस विभाग में आना चाहे, क्या उसको करना पड़ेगा, खाली खेती का ही नहीं हर डिपार्टमेंट, जैसे स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, उसकी जानकारी भी अपने ग्रामीण भाइयों तक हम पहुंचाते थे। रेडियो तो एक बड़ा माध्यम रहा है, तो रेडियो ही ऐसा था जिससे हर तरह की जानकारी हमारे ग्रामीण भाई लेते थे।
1: जी मुंशी भाई, आपने कुछ देर पहले चिट्ठियों का जिक्र किया था, और जब चिट्ठी आती थी तो लगता था कि हमारे प्रोग्राम सुने जा रहे हैं, लोकप्रिय हैं। कभी कुछ ऐसी बात आपको याद आती है कि किसी की चिट्ठी आई और आपने जवाब नहीं दिया, और किसान ने किसी फोन इन प्रोग्राम में या फिर किसी और प्रोग्राम में उसका जिक्र कर दिया हो?
0: हाँ, क्योंकि चिट्ठियां बहुत ज्यादा आती थी,
1: सभी चिट्ठियों को शामिल करना मुश्किल होता था,
0: सभी चिट्ठियों को शामिल नहीं किया जा सकता था
1: जी।
0: तो हम उनको बताते थे अब भाई आपको पता है समय तो हमारे पास 40 मिनट का ही है, अगर हम सारी चिट्ठियां पढ़े तो 40 मिनट में भी नहीं पढ़ी जाए, इसलिए भाई हम इसके लिए माफी चाहेंगे कि सबकी चिट्ठियां हम शामिल नहीं कर पाते हैं, तो मान जाते थे कि मुंशी भाई ठीक है हम भी आपकी मजबूरी समझते हैं, तो ये तो होता था।
1: मुंशी भाई, हम देखते हैं कि अब तो नई तकनीक आ गई है, उन्नत तकनीक आ गई है, उस समय जब आप आकाशवाणी की सेवा कर रहे थे उस वक्त, क्योंकि तकनीक उन्नत नहीं थी, तो मौसम की जानकारी आप किस प्रकार देते थे उस समय?
0: देखिए मौसम विभाग से लिखित में हमारे पास जानकारी आती थी, तो उसी को हम आगे किसानों को बताते थे, लेकिन उस समय मौसम विभाग पूरी तरह 100% जानकारी मौसम की,
1: क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उस प्रकार से उन्नत नहीं थी, डेवलप नहीं,
0: उन्नत टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन आज पूरी उन्नत टेक्नोलॉजी है, आज तो 100% सही बात बताई जाती है।
1: तो कई बार प्राकृतिक आपदा जैसे कि आंधी है, तूफान है, भारी बारिश है, बाढ़ है, उन सब की जानकारियां अब तक पहुंचती थी, तो आप किसानों तक, क्योंकि फसल की बातें होती थी तो फसल बर्बाद न हो उससे पहले भी आप जानकारी देते थे, तो तब में और अब में क्या फर्क आ गया?
0: देखिए पूरी जानकारी सही स्टीक मिल रही है और उसको किसानों तक हम जो पहुंचाते हैं तो किसान उसका पूरा फायदा उठाता है। उसी तरह से उस टाइम जैसे भाई पाला पड़ सकता है वो खुद भी किसान अंदाजा लगा लेते थे, लेकिन हम जो वैज्ञानिकों से जानकारी मिलती थी अब भाई सारे दिन हवा चल रही है, शाम के समय हवा बंद हो गई है और ठंड बहुत है, तो उस दिन पाला जम सकता है, अपनी फसलों को हल्का पानी लगा दें, ये सारी बातें हम जितना हो सकता था बचाव किसान का वो करते थे, अगर पौध हैं तो उनको ढक दें, तो ये सारी बातें भी हम किसानों तक पहुंचाते रहते थे।
1: जो नई तकनीकें जो अभी आ रही हैं, आ चुकी हैं, और हमारी कृषि भी बहुत उन्नत हो चुकी है, तो इसमें आकाशवाणी के योगदान को आप किस प्रकार देखते हैं?
0: देखिए आकाशवाणी का योगदान शुरू से सभी ग्रामीण भाइयों के लिए रहा है, उनके पास और कोई साधन ही नहीं था, सिर्फ रेडियो ही ऐसा साधन था,
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि खाद्यान्न के भंडारण में, खाद्यान्न के उत्पादन में हरित क्रांति का एक बहुत बड़ा योगदान रहा, उस योगदान में आकाशवाणी का भी आप योगदान को मानते ही है?
0: हाँ, वो तो मैंने बता दिया, आकाशवाणी के जरिए ही सारी जानकारी मिलती थी, उसी से पैदावार में बढ़ोतरी होती चली गई और जो कृषि क्रांति आई तो ये सारी जानकारी भी सब रेडियो के जरिए किसान तक पहुंचती थी।
1: वैसे रेडियो की अपनी भाषा होती है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे आकाशवाणी के केंद्र हैं जो कि अपने क्षेत्रीय भाषाओं में या फिर बोलियों में अपने कार्यक्रमों को प्रसारित करती है, तो कई बार आपको मौका भी ऐसा लगा होगा कि आप

0: को उस क्षेत्र में जाकर उन्हीं की बोलियों में उनको आसान भाषा में समझाने की आपने प्रयास किया होगा।
1: हाँ देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली का ये इलाका आमतौर पर ऐसा है जिनकी मिलती जुलती बोली है, और जब हम उन्हीं की भाषा में बोलते थे तो उनका और आत्मीयता आती थी उनके अंदर।
0: मुंशी भाई, जब आप उनके पास किसी रिकॉर्डिंग के लिए जाते थे तो उनका अंदाज किस प्रकार होता था, कैसा होता था, सारी जानकारियां?
1: हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था आकाशवाणी गांव में, पर दो प्रोग्राम महीने में हम रखते थे, तो पहले हम रेडियो से अनाउंस कर देते थे, क्योंकि पहले हमारी चिट्ठी पत्री से ये हो जाता था कि फलाने गाँव में, तो वहां का जो प्रधान था वो चिट्ठी लिखता था जी आपके हमारे गांव में कर दो प्रोग्राम, तो वो हम सारा इंतजाम करेंगे, स्टेज का करेंगे, आप लोगों के लिए सारी व्यवस्था करेंगे, और जो आसपास के जो प्रगतिशील किसान हैं उनके इंटरव्यू भी लेंगे स्टेज पर, वो रिकॉर्ड करके पूरा प्रोग्राम बना के, और फिर हम अनाउंस करके आते थे कि भाई ये प्रोग्राम फलां दिन आप रेडियो पर सुनवाएंगे, तो हम सुनवाते थे।
0: तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोग्राम आप यहाँ करते थे, जैसे कि आपने ये बताया, और आजकल भी यही होता है, हाँ, कि हम रागिनी सुनवाते हैं, लोकगीत सुनवाते हैं, बीच बीच में कृषि वैज्ञानिक के किसी किसान की बात को हम सुनवाते हैं, जो प्रोग्राम आप यहाँ सुनवाते था वो प्रोग्राम आप स्टेज में वहां जाकर के यानी गांव में जाकर करते थे, तो लेकिन उसका अंदाज कुछ अलग होता था, उसका कुछ उत्साह अलग होता था।
1: हाँ, और जो एक तो उनके सामने होने लग रहा है प्रोग्राम, दूसरा ये था जो किसान वहां नहीं पहुंचे हैं और उस गांव के किसान जहाँ वहाँ आए हुए थे वो जो आगे गांव में बताएंगे, वो कहते थे फिर तो भाई हम भी रेडियो पे सुन लेंगे, तो इस तरह से हमारे प्रोग्राम का प्रसारण ज्यादा होता था।
0: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अपने प्रोग्राम की जो प्रचार प्रसार है वहां पर जाने के बाद में होता ही था, और उसके बाद जब हम यहाँ पर आते थे यानी कि अपने स्टूडियो से जब हम प्रोग्राम प्रसारित करते थे उस समय भी हम इसका प्रचार प्रसार करते थे। प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, हमारे रेडियो ने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ी है, जितनी भी बातें हैं छोटी से छोटी जो किसान के लिए जरूरी है वो सब रेडियो के माध्यम से ही उन तक पहुंची है, और उसका पूरा फायदा किसान को मिला है। आकाशवाणी की बहुत बड़ी देन है किसानों के लिए, हमारे ग्रामीण भाइयों के लिए, मनोरंजन तो कराते ही थे, साथ साथ हर तरह की जानकारी हमने अपने ग्रामीण भाइयों को, किसानों को, नौजवानों को, बहनों को, बहनों के भी कार्यक्रम होते थे, बच्चों का भी कार्यक्रम होता था, खिलाड़ियों का भी कार्यक्रम होता है, ऐसे भी खिलाड़ी हुए हैं जो हमारा रेडियो ही सुन के और खाड़ों में पहुंचे हैं, तो सब तरह की जानकारी उन तक पहुंचाने का काम रेडियो ने किया है।
0: मुंशी भाई, आपको कोई ऐसी बात याद आ रही है जब आप किसी बहुत बड़े व्यक्तित्व की आप इंटरव्यू लेने के लिए गए हैं, और उसका जब इंटरव्यू ले रहे हैं तो पता चल रहा है कि लोग, क्योंकि आपकी लोकप्रियता रेडियो के जरिए कुछ अलग थी, तो कुछ ऐसी बात आपको याद आ रही है जो कि आपको हमेशा याद रहती है?
1: हाँ, एक बात है मैं भूलता नहीं हूँ, 1978 की बात है, 1970 में मेरे रेडियो में 8 साल हुए थे, और 78 में ज्यादा बारिश आई थी, हरियाणा में भी गांव डूब रहे थे, तो गांव के चारों तरफ बांध बनाए जा रहे थे मिट्टी डाल के, और वहां मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे और उनके मंत्री भी आए हुए थे, तो उन्होंने बताया भाई ऐसे खुद मिट्टी डालो और बांध बनाओ चारों तरफ को, ताकि गांव का पानी से बचाव हो सके, और मैं रेडियो से वहां इंटरव्यू लेने के लिए उसके बारे में जानकारी लेने के लिए गया, तो वहां किसी ने देख लिया, लगे रहे वो रेडियो के मुंशी भाई आ गए, तो वो सब देखने के लिए दौड़ गए, क्यों ते थे आवाज देखा उन्होंने, था नहीं तो देखने के लिए वो दौड़ गए, सब भीड़ इकट्ठी हो गई, तो वो वहां देख रहे थे, कहने लगे भाई ये सारी भीड़ वहां इकट्ठी होगी, अब मिट्टी डालना बंद करके उधर चले गए, क्या बात है
0: आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए।
1: क्या हुआ कि मैं फिर अपना टेप रिकॉर्डर लेके उधर स्टेज की तरफ जाने लगा, तो वो भीड़ पीछे पीछे फिर स्टेज की तरफ भी चलने लगी, तो वहां चो देवीलाल जी ने कहा भाई आप लोगों ने देख लिया मुंशी भाई को, जाइए अब आप मिट्टी डालिए और अब हमें अपना काम करने दीजिए। देखिए, किसानों के अंदर ये भी था कि भाई जिनको वो सुन रहे हैं उनको देखना भी चाहते थे वो, और एक ऐसा भी पल, तो हमारे साथी जो रेडियो कई वर्ष तक हमारा साथ रहा है शिवनंदन भाई, वो भी मौजूद थे, और शिवनंदन भाई और हम भी जाते थे इकट्ठे, भी गए हैं हम गांव में इस तरह से, तो वहां पर हमारे कृषि के सभी डीजी वगैरह सब गए हुए थे, किसान मेला था, उनको पता लग गया मुंशी भाई आए, कहले मुंशी भाई को बुलाओ, मुंशी भाई को स्टेज पर बुलाओ, फिर उनको मेरे को स्टेज पर बुलाना पड़ा, फिर मैं थोड़ी देर के लिए किसानों से राम राम की बातचीत की, तब उनको संतुष्टि मिली, तो किसानों के अंदर ये भी था कि भाई जिनको वो सुन रहे हैं उनको देखना भी चाहते थे वो। और इसके अलावा भी कृषि की पाठशाला भी होती थी हर फसल के बारे में,
0: अब तो गन्ने की पाठशाला होती है,
1: जैसे अब गन्ने की पाठशाला चल रही है आज, इस तरह गेहूं की धान की एक फसल को ले लेते थे, उसका पूरा शुरू से बुआई से कटाई तक का विवरण अलग पाठों में ये सब जान।

0: पुस्तक भी ये रेडियो की तरफ से किसानों को दी जा रही।
1: मुंशी भाई, आप इस नाम से बहुत फेमस रहे हैं, किसान भाइयों में, श्रोताओं के बीच में आप बहुत फेमस रहे हैं, और आपने आकाशवाणी की एक लंबी सेवा की है। आप आकाशवाणी से जुड़े रहे, आपकी बहुत सारी खूबसूरत यादें हैं, उन सभी यादों को हम अपने श्रोताओं के बीच एक बार फिर से बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए हम आज के लिए आपसे हम यहीं पर विदा लेते हैं, और एक बार फिर हम आपको कहते हैं मुंशी भाई, राम राम।
0: राम राम।
2: मुंशी भाई यानी बलबीर सहरावत से कमल किशोर की बातचीत आप सुन रहे थे। उन्होंने कृषि के विकास में आकाशवाणी की जो भूमिका रही है इस पे लंबी रोशनी डाली।
3: जी हाँ, और देखिए हमारे जो किसान भाई हैं वो भी हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। मुंशी भाई के ज़माने में तो जुड़े हुए थे ही, लेकिन जब चिट्ठियों के माध्यम से हमारे हमसे जुड़े हुए थे, लेकिन अब फ़ोन के और SMS के माध्यम से हमसे जुड़े हुए। बिल्कुल ऐसा ही हमारा कल का जो प्रोग्राम है फ़ोन इन कार्यक्रम है, और इसका विषय है गन्ना फसल में किसानों के लिए महत्व और लाभ। तो हमारे जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो सीधे हमें फ़ोन कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 6:30 से 7 बजे तक और 7:30 से 7:30 बजे तक लगातार चलेगा, और हमारे जो किसान भाई हैं वो अपनी समस्या इस विषय पर कोई भी समस्या है वो विशेषज्ञों से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमें सीधे फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23:42:10:82 और दिल्ली से जो बार के श्रोता हैं वो 011 जरूर लगाएं
2: जी।
3: तो जुड़े रहिए हमारे साथ और आगे बढ़ते हैं और सुनवाते हैं, करवाते हैं मनोरंजन अपने भाइयों को सत्येंद्र यादव से।

0: देखिए साईं भाई, अभी हमारे भाई सुन रहे थे सत्येंद्र यादव की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारी सी रागनी, और किस्सा था कृष्ण सुदामा का।
1: जी, जिसमें जो बता रहे थे कि यार के लिए, यार की याद में मैं ताल बना दूंगा,
0: जी
1: तालाब बना
0: बिल्कुल,
1: दूंगा,
0: उन्होंने तो
1: ना।
0: अपने यार के लिए सब कुछ ही, तीनों लोग ही देने को तैयार हो गए थे।
1: हाँ
0: वो तो बात आप अलग कर रहे
1: नहीं,
0: हैं, लेकिन
1: हम जो ताल और तालाब की हम बात जो वहाँ जो कर रहे हैं, उसको प्रेम में ना, उसको जो है कि सौंदर्य में, हर रूप में लिया जा सकता है। लेकिन आज के संदर्भ में जो है वो ये, चूंकि हम किसान भाइयों से बातचीत कर रहे हैं, तो वो जो है ना, हकीकत में वो यथार्थ का जल जीवन मिशन था।
0: जी बिल्कुल। और देखिए, जल एक ऐसा वस्तु है या चीज़ है कि उसके बिना व्यक्ति जी नहीं सकता।
1: जी हाँ,
0: और जल जो होता है, उस हर घर को अगर हम जल देते हैं, हर घर के में के पास जल होता है। पहले तो नल होते थे, कुएं होते थे, तालाब होते थे, लेकिन अब वो सारे धीरे धीरे बंद होते जा रहे हैं और सब टंकी का इस्तेमाल करने लगे,
1: हाँ। तो
0: सब
1: अब
0: समरसीबल
1: सर देखिए,
0: लगवाने
1: अब
0: लगे
1: जो
0: हैं।
1: सरकारी तौर पे जो व्यवस्थाएं चल रही हैं,
0: जी
1: उसमें यह है कि हर घर को, खास तौर से
0: जी हाँ,
1: ग्रामीण इलाके
0: ग्रामीण
1: में,
0: इलाकों में
1: हर घर
0: बिल्कुल।
1: को नल से जोड़ने की, मतलब उनके यहाँ जो है कि पीने का जो पानी है वो टोटी से हर घर को मिले, इसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। और
0: बिल्कुल
1: इस पूरे ही मिशन का जो नाम है, हर घर जल योजना।
0: जी हाँ। और ये तो थी योजना की बात, और इसी के साथ हमारा आज का ये ग्राम संसार कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: शिवनंदन लाल।

0: कार्यक्रम के प्रस्तुत करता थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल। श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम संसार। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोरा ने ओस्लो में सीमित और शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं ने संबंधों को पर्यावरण

0: अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और व्यापार तथा निवेश, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष तथा आर्कटिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। दोनों नेताओं ने भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते से उत्पन्न होने वाले व्यापक अवसरों का भी उल्लेख किया। बातचीत के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली की राजधानी रोम पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री सुश्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। इस बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उच्च ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे। पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं के साथ हुए अत्याचारों की जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज दीपक सिंगला और अन्य हवाला ऑपरेटरों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के लिए टिकट पर चुनाव लड़ा था। IPL क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में तीसरे स्थान पर मौजूद हैदराबाद जीत दर्ज कर प्लेऑफ के और करीब आना चाहेगी, जबकि चेन्नई की नजर शीर्ष 4 में प्रवेश करने पर होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। शाहिद भाई, देखिए हम अपना कृषि जगत प्रोग्राम लेकर उपस्थित हैं और अपने भाइयों को जानकारी के साथ साथ उनका मनोरंजन भी कराएंगे। और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे कि हमारा गोबर धन योजना जो है हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि इस योजना में जो है हमारे जो किसान भाई हैं वो अपने पशुओं का जो गोबर है उसको इकट्ठा करके अपने खेतों के अपशिष्ट जो होते हैं उनको इकट्ठा करके और जो खाद बना होता है उसको इकट्ठा सबको इकट्ठा करके जैविक खाद यानी कंपोस्ट में बदल कर गाँवों को आत्मनिर्भर बना सकते हैं और स्वच्छ बना सकते हैं अपना जो हमारा पर्यावरण है। बिल्कुल,
1: ये कई कई योजनाओं का उद्देश्य समेटे हुए है। इसमें गोबर धन जैसा कि नाम है ना, गोबर को ही धन के रूप में इंगित किया गया है। गोबर से हम पहले तो उसकी जो है कि
0: गैस बनाते हैं और उसके बाद खाद बनाते हैं,
1: खाद बनती है, इससे जो है कि गांव स्वच्छ होते हैं, ऊर्जा मिलती है और सबसे बड़ी चीज जो है इसके जरिए से गांव में एक संबल मिलता है।
0: बिल्कुल, और हम
1: आर्थिक मजबूती
0: और हमारी जो मिट्टी है उसकी उर्वरक शक्ति भी बढ़ती है। तो ये तो थी हमारी गोबर धन योजना के बारे में बातें। और अब आपको एक जानकारी दिलवाते हैं कि खरीफ फसलों में कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे करें। डॉक्टर वाई के तिवारी से बातचीत कर रहे हैं शिवनंदन लाल, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आप फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसमें अच्छा बीज खरीदते हैं और खेत में अच्छी से कृषि क्रियाएं करते हैं। उसके साथ साथ आप उर्वरक हैं, आप उसमें दवाएं हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो आपको मिलता है लेकिन आपकी लागत बढ़ जाती है। ये लागत कैसे कम की जाए और आपका उत्पादन भी अच्छा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के तिवारी जी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक रह चुके हैं क्रभको में। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो डॉक्टर साहब, हमारे किसान भाई अब खरीफ में बिजाई की तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ये बात सही है कि किसानों की लागत बढ़ती है जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो कैसे कम की जाए और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिले।
3: कि कैसे हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। अब आप देख ही रहे हैं, इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद बीज का दाम बढ़ता जा, जो बीज है उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है। और जैसा इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, खाद की भी उपलब्धता भी तो वैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, खाद का उपयोग कम करें और जैविक खेती या परंपरागत खेती भी कुछ करें। तो हम इसमें सलाह देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ये ब्लड का टेस्ट करा लो। ऐसे ही हमारे किसान भाई हैं, इस जो धरती माता है इनसे फसलें उगाते जा रहे हैं, लेकिन धरती माता की स्थिति क्या है, कितना खुराक को पौधे को उपलब्ध करा पाएंगी, कितना नहीं करा पाएंगी, क्या क्या स्थिति है हमारे जमीन में पोषक तत्वों की, उसका जरूर किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कितना इस समय पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फास्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है और जो मुख्य गौण तत्व है जिंक है, आयरन है, उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मिट्टी की जांच कराए बिना ही अंदाजे से जब हमारे किसान भाई डालते हैं उर्वरक, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में जा करके ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके जैविक जो मिट्टी का

0: दारू हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही हमारे किसान भाइयों की लागत भी बढ़ जाती है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, अभी मई जून दो महीना है और इस समय हमारे किसान भाई लोगों का खेत खाली है, और किसान भाई अपनी मिट्टी का जरूर से जांच कराएं और मिट्टी का नमूना लेकर के उनके जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है कृषि विभाग का, वहां भेज दें, या जो हमारी क्रिप्को संस्था है नोएडा में ऑफिस है वहां भी वो किसान भाई अपना कोरियर से किसान सेवा केंद्र पर भेज सकते हैं, और वहां निःशुल्क उनकी जाँच हो करके उनको मेल के माध्यम से मृदा की रिपोर्ट मिल जाएगी।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से मृदा परीक्षण की बात की, तो मृदा परीक्षण कराने के लिए किसान भाई जो सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते समय क्या सावधानी रखें?
0: किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेने के लिए क्या सावधानी रखें? ये सही बात है कि हमारे किसान भाई ऐसा न करें कि जो होता है ना खेत की चौहद्दी मेढ़ मेढ़ के पास से ही एक जगह से मिट्टी निकाल करके दे दिए, तो उससे पूरा खेत का, अब जितना बड़ा खेत है उसकी सही एनालिसिस नहीं हो पाएगी, सही जांच नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए ये है कि किसान भाई हमारे जैसा खेत हो उस खेत के हिसाब से जो मेढ़ होती है उनकी, उस मेढ़ से लगभग अपना 3-4 फुट छोड़ करके, और खेत में लगभग ऐसा करें कि अगर छोटा खेत है तो 5-6 जगह और बड़ा खेत है तो 8-10 जगह से, अगर गन्ने की खेती करना है तो 9 इंच तक का, और जनरल खेती करना है धान गेहूं का तो 6 इंच तक की मिट्टी को ऐसे करेंगे कि खुरपी लेकर के एक गड्ढा खोद लें और ऊपर से खुरपी को लगाएंगे और नीचे तक ले जा करके उस मिट्टी को उस गड्ढे में घर लें,
1: गड्ढा भी आकार,
0: हाँ गड्ढा भी आकार का गड्ढा बनाएं और उस गड्ढे में ऊपर से खुरपी लगा करके नीचे तक का मिट्टी पूरा इकट्ठा कर लें, और वो जो 9-10 जगह जहाँ से उन्होंने सब मिट्टी लिया है उन 9-10 जगह की मिट्टी एक साथ मिला लें और आपस में खूब अच्छी तरह से मिला करके उस मिट्टी को ऐसा करें कि कई भाग करते जाएं, और जब लगभग आधा किलो तक हो जाए तो उस आधा किलो की मिट्टी की थैली को अपना मिट्टी की थैली में भर लें और भर करके अपना मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, या जैसे हम आपको बताएं कि या अपने जिले में मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाएं, तो वहां पे जांच होने के बाद इनको किसान भाई को नमूने से ये मिल जाएगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और फसल के लिए उनको कितना खाद जल डालना है। अब हमारे जब किसान भाई करेंगे तो उस मिट्टी के नमूने की जांच में सबसे बड़ी बात ये रहती है, हमारे किसान भाई अपनी सुविधा के लिए केवल यूरिया डाई पोटास तो देख लेते हैं लेकिन उसमें जो गोबर की खाद की संस्तुति की जाती है उसको नहीं डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो फार्म यार्ड मैन्योर का जो रिकमेंडेशन किया जाता है सॉइल लैब द्वारा उसको जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि अभी जो हमारे खेत में कार्बन की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है, और कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, कार्बन जो है ये हमारे खेत के जीवाणुओं को एक तरह से पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये जो कार्बन है उन जीवाणुओं का, उनके लिए ये पोषक तत्व का काम करता है कार्बन। और कार्बन सही मात्रा में उपलब्ध होने से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में हवा की उपलब्धता सही रहती है, हवा की उपलब्धता सही होने से हमारे जो खेती होती है उसमें मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें हवा का संचार प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। और किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में जल रुका रहता है जिससे पौधों को काफी समय तक नमी प्राप्त होती है, जो हम पोषक तत्व डालते हैं खाद उर्वरक डालते हैं तो घुल करके लीचिंग मतलब बह करके जमीन के सतह से नीचे नहीं जाता है, वो मृदा में उपलब्ध होता है जिससे पौधों को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाता है। तो जो हम इतना महंगा उर्वरक डालते हैं वो हमारी जमीन में नुकसान न होकर के पौधों को उपलब्ध होता है, तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है।
1: जी डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने कहा कि उत्पादन लागत कम होती है, तो हमारे किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक हैं जिनके वैज्ञानिक कभी कभी सुझाव देते हैं, और जो लागत को कम कराने के लिए दूसरे भी माध्यम हैं जैसे जैविक खाद हो गई, आपके बायोफर्टिलाइजर हो गए, आपकी हरी खाद हो गई, इनका भी तो प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हम बताए आपको कि मृदा परीक्षण में जो ये खाद की संस्तुत की जाती है उसके अलावा भी धान में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखा गया हरी खाद का, के लिए सनई ढांचा जो होता है।

इसको छिटक करके खेत में बोते हैं, और जब ये लगभग 35 से और 45-50 दिन की हो जाएगी तो इसको खेत में अपना ट्रैक्टर चला करके दबा देंगे और पानी भर देंगे, तो उससे वो क्या होगा कि हरी खाद खेत में सड़ करके खाद हो जाएगी, और ये हमारी मिट्टी के लिए एक समझिए कि बहुत ही अच्छा काम करेगी, वरदान हो जाएगा, एक जैविक खाद हरी खाद अपना पौधे को उपलब्ध होगी और हमारे मिट्टी

0: प्रयोग कर लिया है, तो हम जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को हम 15-20% तक कम कर सकते हैं, तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बीज का नर्सरी में डालते हैं तो आजकल बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है, एजोटोबैक्टर है। इससे एजोटोबैक्टर क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको उपलब्ध कराता है पौधों को। इसी तरह से PSB है, फास्फेट सालिफाइंग बैक्टीरिया होते हैं, जो हम मिट्टी में इतना महंगा DAP खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो पौधे केवल अपनी जड़ की एरिया के पास जो रहता है उसी का उपयोग कर पाते हैं। तो हम थोड़ी मात्रा में बीज को हम बेहन डालते हैं, तो इससे अगर हम एजोटोबैक्टर से, PSB से या पोटास सालविजाइंग बैक्टीरिया से और जिंक सालविजाइंग बैक्टीरिया से, इनके हम बायो फर्टिलाइजर से को जो बीज कम मात्रा में होता है इसको शोधित कर दें और इसको बोएं, तो इस बीज जब शोधित होगा तो ये जीवाणु उस बीज के परत पे लगे रहेंगे और ये जब जमीन में की रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय भी जो नर्सरी होती है उसको इसका बायो फर्टिलाइजर का घोल बना लेंगे, उसकी जड़ को अपना 15 मिनट के लिए डुबो देंगे उस घोल में, उसके बाद रोपाई करेंगे, तो ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं ये जमीन में कार्यशील हो जाएंगे और जमीन से जो हमारे उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे हैं तो उनको घुलनशील दशा में बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे किसान भाई जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में भी डालेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और ये जो हमारे जैविक कीटाणु हैं ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे, तो हमारे जो पौधे होंगे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और इसमें कीट पतंगे भी कम लगेंगे। ऐसा देखा गया कि जो हमारे किसान भाई आजकल क्या करते हैं कि पौधे में थोड़ा सा भी इनको लगता है कि पौधा पूरा हरा नहीं दिखाई दे रहा है तो ले जाके यूरिया छिड़क देते हैं, उससे क्या होता है कि पौधे में बढ़वार तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पौधा कोमल हो जाता है, सक्सलेंट हो जाता है और उससे हमारे कीट पतंगे और बीमारियां अधिक लगने लगती हैं। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा न प्रयोग करें, यूरिया की मात्रा जितना मृदा परीक्षण में दिया गया है उतना ही करें या उससे कम करें और उसके जगह पे 20-25% की मात्रा इस जैविक खाद से, हरी खाद से और गोबर की खाद से इसको 25 से लेकर के 40% तक इसको सब्स्टिट्यूट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, काफ़ी आपने विस्तार से बताया और बहुत से हमारे किसान भाई खरीफ में दलहनी फसलें भी बोते हैं, तो दलहनी फसलों में तो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं, तो क्या उनके बीजों को भी उपचार चालित करके बोना चाहिए?
0: देखिए उनके जड़ों में तो पाए जाते हैं, अगर हमारे किसान भाई कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो PSB है, फास्फेट सालिफाइंग बैक्टीरिया है, वो तो जमीन से हमारे जो वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं वो दलहनी फसलों के लिए 10:40 के रेशियो में करते हैं कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध कराएं, तो वो हमारे किसान भाई कर देंगे जब उनका बीज शोधन PSB से, फास्फेट सालिफाइंग बैक्टीरिया से, तो वो हमारे किसान भाई अगर उसकी मात्रा कम कर देंगे तो ये हमारे PSB बैक्टीरिया काम करेगा और उसको उपलब्ध कराएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है, निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ फसलों में कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे लें, इस पर जानकारी दे रहे थे डॉक्टर YK तिवारी और आपसे बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल।
3: जी बिल्कुल, और देखिए जैसे कि मौसम में बदलाव बहुत ही तेज़ी से आया है, 41-42 डिग्री टेम्परेचर हो गया है और हमारे किसान भाई उनका तो काम देखिए 24 घंटे का होता है, यानी कि रात दिन वो खेतों पर ही होते हैं और चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, कुछ भी मौसम हो, उन्हें तो सुबह 5 बजे खेत पे जाना ही है और दोपहरी में भी वो लोग काम करते रहते हैं, तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखें, पानी की व्यवस्था अपने पास जरूर बनाए रखें।
2: और कोशिश ये करनी चाहिए कि सीधे जो है ना हवा जो है हवा और धूप के संपर्क में सीधे ना, जब जब तेज हवा चलती है ना गर्म वाली
3: जी
2: उससे बचे।
3: बिल्कुल, कहते हैं लू लग जाती है तो फिर उल्टी दस्त का हो जाता है, परेशान हो जाते हैं और बुखार बन जाता है। तो ऐसी अगर हालत हो जाती है हमारे किसान भाइयों की तो काम करने में फिर उनको

0: दिक्कत हो जाएगी। तो लू ना लगे इसलिए पानी का प्रबंध पूरा रखें, और थोड़ी थोड़ी देर में लिक्विड, कोई भी लिक्विड,
1: लेते हैं।
0: पानी ना, कोई भी लिक्विड जो आप पी सकते हैं, छाछ भी है, दही भी है, दूध भी है, और वो क्या ना, शरबत भी है, तो आप कुछ भी अगर लेना चाहते हैं, नींबू
1: वो
0: पानी है,
1: लेते
0: वो
1: रहें,
0: लेते
1: बाकी
0: रहें।
1: जो मौसमी सब्जियां हैं,
0: जी
1: फल हैं ना, उनका भी इस्तेमाल करते रहें। तो ये क्या है कि जो ताकत तो देते ही हैं, जल और मिनरल्स की जो एक प्रचुर मात्रा है वो शरीर में बनी रहती है।
0: बिल्कुल, खाने में अगर आप खाते रहते हैं तो, और पीते भी रहते हैं, तो आपको कमजोरी महसूस नहीं देगी, और लू का भी प्रभाव आपके शरीर पर नहीं
1: नहीं
0: पड़ेगा।
1: होगा।
0: ऐसे ही आपको अपने पशुओं को भी बचाना है गर्म हवाओं से और गर्मी से, तो इसलिए सुबह सूरज निकलने से पहले थोड़ी देर उनको बाहर बांधें, लेकिन उसके बाद अंदर कर दें, और फिर शाम को ही बाहर निकालें, क्योंकि बहुत तेज धूप है, हमारे
1: हाँ,
0: पशुओं
1: जब
0: को
1: तेज
0: इस चीज़
1: धूप
0: से।
1: होने लगती है और
0: जी
1: हवा में गर्माहट आने लगती है ना, तो बचाना चाहिए।
0: जी हाँ, कुछ मंडियों के भाव भी हमारे पास आए हैं। गेहूं का जो इस वक्त हमारा रेट चल रहा है, वो हरियाणा की मंडी में है 2590 रुपये प्रति कुंटल है, और सरसों का जो भाव है वो 6300 रुपये प्रति कुंटल है, धान 4600 रुपये प्रति कुंटल है, और अरहर की दाल 11832 रुपये प्रति कुंटल का रेट चल रहा है, और गुड़ का भाव है 4440 रुपये प्रति क्विंटल, और चीनी है 4400 रुपये प्रति क्विंटल। तो ये तो
1: ये
0: थी
1: तो
0: मंडी के
1: मंडियों की
0: भाव।
1: बात
0: जी
1: थी। अब वंदना बहन, अपने बहनों भाइयों का हम जो है कि एक बार फिर से मनोरंजन करवाएं।
0: जी बिल्कुल, अब करवाते हैं मनोरंजन और सुनवाते हैं योगेंद्र निमचाना की आवाज में ये उपदेश।

अभी हमारे भाई सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना की आवाज में ये उपदेश। और इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल।

तो अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। और श्रोताओ लीजिए, अब प्रस्तुत है गजल और कव्वाली का कार्यक्रम। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवाते हैं जगजीत सिंह की गाई ये गजल।

0: श्रोताओं, गजलों का एक कार्यक्रम अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोता, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली, वेल डन।
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
3: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
2: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
3: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
2: आप कौन?
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: रोहन और रिया की लव स्टोरी का मैच था शुरू, दोनों ने खाया इटालियन क्विजीन, वेटर ने फेंका स्पिन, 4000 का आया बिल, रोहन का धड़का जोर से दिल, वो अपना वॉलेट गया था भूल, रिया ने किया डिजिटल पेमेंट, बन गई कूल। आप भी QR कोड स्कैन करके UPI से करो पेमेंट, डिजिटल पेमेंट से जीतो लाइफ का हर टूर्नामेंट।
4: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
5: हर लेन देन अब है आसान।
7: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और DTC बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में 2 सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट, तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के तहत मेट्रो मंडे पहल शुरू हो गई है। दिल्ली मेट्रो प्रत्येक सोमवार निजी वाहनों के स्थान पर मेट्रो को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 24 अतिरिक्त ट्रेन चला रही है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने कहा है कि ये निर्णय मौजूदा परिस्थितियों में ऊर्जा दक्षता, आर्थिक और पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करने में सार्वजनिक परिवहन की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। इस बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी आज मेट्रो और दिल्ली परिवहन निगम DTC की बस से अपने कार्यालय पहुंची। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली मेट्रो का आधुनिक नेटवर्क, स्वच्छ स्टेशन, समयबद्ध सेवा और सहज कनेक्टिविटी वास्तव में विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि DTC की इलेक्ट्रिक बसें आरामदायक, सुरक्षित और वातानुकूलित हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से आग्रह करते हुए कहा कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए जहां संभव हो मेट्रो, DTC बसों और कार पूलिंग को अपनाकर मेरा भारत मेरा योगदान जन भागीदारी अभियान का हिस्सा बने।
8: दिल्ली के अपने सभी नागरिकों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सब लोग जितना हो सके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। ना केवल ये देश के लिए ईंधन की बचत करेगा बल्कि हमारे इस दिल्ली शहर के लिए तो ये बेहद ही जरूरी है। हमारी दिल्ली के पॉल्यूशन को देखते हुए, ट्रैफिक को देखते हुए, और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा।
7: इस बीच दिल्ली पुलिस ने सरकारी वाहनों के उपयोग को युक्तिसंगत बनाने और ईंधन की खपत कम करने के उपायों के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश पुलिस आयुक्त कार्यालय ने वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बचत और ईंधन की खपत में कमी लाने की अपील को ध्यान में रखते हुए जारी किया है। इसके अनुसार दिल्ली पुलिस की सभी इकाइयों और कार्यालयों को अनावश्यक आवागमन रोकने, उपलब्ध वाहनों का अधिकतम उपयोग करने और ईंधन के किफायती उपयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कदम उठाने का निर्देश दिया गया है। सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है ताकि ईंधन संरक्षण और अनावश्यक व्यय में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय प्रयास में सार्थक योगदान दिया जा सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कल द्वारका विधानसभा क्षेत्र में लगभग 100 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद क्षेत्र में जल भराव, क्षतिग्रस्त सड़कें, सीवर ओवरफ्लो और बिजली आपूर्ति से संबंधित समस्याओं से निजात मिलेगा। इन परियोजनाओं में विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों की मरम्मत और निर्माण, चौपालों का नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण, जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करना और पार्कों का सौंदर्यीकरण तथा पर्यावरण अनुकूल विकास शामिल है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया है। इससे पहले एजेंसी ने आज सुबह दीपक सिंगला और अन्य हवाला संचालकों के खिलाफ दिल्ली और गोवा में तलाशी अभियान चलाया। आरोप है कि दीपक सिंगला दिल्ली और गोवा के बीच आम आदमी पार्टी के लिए धन के हस्तांतरण के लिए हवाला संचालन का काम संभाल रहे थे। इसके अलावा दीपक सिंगला ने अपने चाचा और भाई के साथ मिलकर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से 150 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की। निदेशालय ने बताया कि ये पैसा सिंगापुर स्थित नियंत्रित फर्मों को भेजा गया था। दीपक सिंगला ने 2025 में दिल्ली विधानसभा चुनाव में विश्वास नगर क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था।

0: बीच आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला की गिरफ्तारी पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रतिक्रिया दी है।
1: आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला के यहाँ करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी, बैंक लोन से धोखाधड़ी और आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की सरपरस्ती में जो काला धन कमाया है उससे जायदाद खरीदना, वो एक मामला सामने आया जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई। आम आदमी पार्टी जो ताल ठोक कर आई थी हम समाज को बदलने आए, क्या इन्होंने बदला कि रिश्वतखोरी से शुरू करते करते अब टैक्स चोरी भी करेंगे, काले धन से बेनामी जायदादें भी खरीदेंगे और बैंक लोन की धोखाधड़ी भी करेंगे।
0: नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। अब तक की जांच में परीक्षा से जारी हुए रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के प्रश्न पत्रों के वास्तविक स्रोत का पता चला है। सीबीआई ने इस मामले में महाराष्ट्र के लातूर में आरसीसी कोचिंग क्लास के निदेशक शिवराज मोंटेगांवकर को गिरफ्तार कर लिया है। ये संस्थान विद्यार्थियों को नीट स्नातक परीक्षा की कोचिंग देता है। मोंटेगांवकर को आगे की कानूनी कार्यवाही के लिए विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक अभिभावक पर भी अपनी बेटी के लिए लीक हुए प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। सीबीआई की एक टीम ने कल उस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए कल एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की एक आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने आज शशि गार्डन इलाके से मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से कुछ नकद धनराशि और 294 ग्राम मादक पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी पहले से कई आपराधिक मामलों में संलिप्त है। मामले की जाँच जारी है। दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग जोन में धूल नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ करने और लोक निर्माण विभाग ने सड़कों पर स्वच्छता में सुधार के लिए 15 दिन का धूल मुक्त सड़क अभियान शुरू किया है। ब्योरा हमारी संवाददाता से।
2: यह अभियान सड़कों को नो डस्ट स्थिति में बनाए रखने पर केंद्रित है। इस सफाई अभियान में MRS मशीनें, वाटर स्प्रिंकल, पानी के टैंकर, ऑटो टिपर और साथ ही 40 सफाई कर्मचारियों को तैनात किया गया है। अभियान के अंतर्गत प्रमुख सड़क मार्गों की नियमित निगरानी, कचरे का त्वरित उठान और निरंतर रखरखाव पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। वहीं करोल बाग जोन के उपायुक्त दिलखुश मीणा ने बताया कि अभियान सख्त फील्ड मॉनिटरिंग और समर्पित सफाई व्यवस्था के साथ संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियानों के अंतर्गत साफ सुथरी सड़कें, प्रभावी धूल नियंत्रण और नागरिकों की सुविधा सुनिश्चित की जा सके। प्रादेशिक समाचार के लिए नितिका की रिपोर्ट के साथ करिश्मा राय।
0: दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष पद के लिए मालवीय नगर से विधायक सतीश उपाध्याय को नामित किया है। बोर्ड के सदस्य के लिए नांगलोई जाट से विधायक मनोज कुमार शौकीन और घोंडा से विधायक अजय कुमार महावर को नामित किया गया है। इस संबंध में दिल्ली विधानसभा सचिवालय द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए एक संयुक्त आतंकरोधी मॉक ड्रिल आयोजित की गई। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसमें सभी सुरक्षा एजेंसियों के बीच त्वरित कार्रवाई और निर्बाध समन्वय का शानदार प्रदर्शन किया गया।
3: केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये मॉक ड्रिल उप महानिरीक्षक और विमानन सुरक्षा समूह के मुख्य हवाई अड्डा सुरक्षा अधिकारी तथा CISF के वरिष्ठ अधिकारियों की देखरेख में आयोजित किया गया। CISF, दिल्ली पुलिस, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, बम निरोधक दस्ते तथा अन्य एजेंसियों के कर्मियों ने इस समन्वित अभ्यास में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य किसी भी आपात स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और हवाई अड्डे की सुरक्षा के लिए उभरते खतरों के खिलाफ तैयारियों को बढ़ाना था। प्रिया रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए वैष्णवी।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने आज एक यातायात परामर्श जारी कर बताया है कि कल दोपहर 12 बजे से शाम के 3 बजे तक भारत मंडपम के आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा। यातायात पुलिस ने बताया कि भारत मंडपम में इस महीने के अंत में होने वाले दो सम्मेलनों का कल अभ्यास किया जाएगा। इसके मद्देनजर पुलिस ने लोगों को रिंग रोड, राजघाट, धौलाकुआं, मोती बाग, सराय काले खां, बीकाजी कामा प्ले

0: इस और वंदे मातरम मार्ग के साथ ही अन्य वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी है। दिल्ली सचिवालय में आज सिक्किम दिवस के अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदेश और देशवासियों को सिक्किम दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्किम प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विविधता का अद्भुत उदाहरण है। भारतीय संत महापरिषद का वैश्विक सम्मेलन आज नई दिल्ली स्थित रामकृष्ण मिशन में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक सद्भाव बढ़ाना, सभ्यतागत एकता को आध्यात्मिक संवाद से जोड़ना और भारत में निहित साझा परंपराओं के माध्यम से भारतीय मूल्यों का पुनरुद्धार करना था। आयुष मंत्रालय ने आज अत्यधिक गर्मी और लू के संबंध में व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है। इस परामर्श में लोगों के लिए गर्मी से होने वाले तनाव और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचाव के लिए विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
1: परामर्श में पर्याप्त मात्रा में पानी पीने, दोपहर के समय में सीधे धूप में आने से बचने, हल्के सूती कपड़े पहनने तथा मौसमी फलों और इलेक्ट्रोलाइट से भरपूर तरल पदार्थों के सेवन पर जोर दिया गया है। इस सलाह में नागरिकों को गर्मी से संबंधित बीमारियों के संकेतों जैसे चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, मानसिक स्थिति में बदलाव, शरीर का अत्यधिक तापमान, निर्जलीकरण, दौरे पड़ना और बेहोशी के प्रति सतर्क रहने के लिए कहा गया है। गंभीर मामलों में तुरंत आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 108 और 102 पर संपर्क करने की सलाह दी गई है। परामर्श में लू की स्थिति से निपटने के लिए आयुर्वेद, सिद्ध, योग, यूनानी और होम्योपैथी सहित विभिन्न आयुष पद्धतियों के पारंपरिक स्वास्थ्य और निवारक उपायों को भी शामिल किया गया है। प्रादेशिक समाचार के लिए जया भारती।
0: इस बीच मौसम विभाग ने दिल्ली में इस सप्ताह लू का येलो अलर्ट जारी किया है। कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। इस सप्ताह तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की आशंका है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईंधन की बचत के लिए दिल्ली में मेरा भारत मेरा योगदान अभियान के अंतर्गत मेट्रो मंडे पहल शुरू। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मेट्रो और DTC बस से अपने कार्यालय पहुंची। प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया। नीट UG प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में अब तक 10 आरोपी गिरफ्तार। भारत मंडपम में दो सम्मेलनों के अभ्यास कार्यक्रम के मद्देनजर कल उसके आसपास के क्षेत्रों में यातायात प्रभावित रहेगा और दिल्ली में पूरे सप्ताह लू का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
3: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
3: हाँ, 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी। एक और नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
6: पापा, लाइए 3,000।
7: क्यों भाई?
6: मेरी पॉकेट मनी।
7: अरे अभी तो सिर्फ 2,000 ही कैश है।
6: ए पापा, बुलेट ट्रेन के जमाने में बैलगाड़ी चला रहे हो? डिजिटल पेमेंट चलाओ। है नहीं, हाँ सीधे UPI से पेमेंट करो, इट्स इजी।
7: अरे वाह, मुझे भी सिखाओ। अपने 1,000 ले जाओ,
6: अपना मोबाइल लाओ।
7: ले ले।
8: भारत करता है डिजिटल भुगतान,
9: हर लेन देन अब है आसान।
10: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मालिका। और कार्यक्रम में आज हम बात करते हैं मन से मन की, और इसीलिए शुरुआत कर रहे हैं मन फिल्म से लिए हुए इस गीत के साथ।

मन, जी हाँ श्रोताओं, फिल्म का नाम भी यही है और आज हम इस कार्यक्रम में बात भी मन की ही कर रहे हैं। मन जो कभी हंसता है तो कभी हंसाता भी है, कभी मायूस होता है तो कभी मयूरा सा नाच भी उठता है। तो इंद्रधनुषी रंगों की तरह, सरगम के सुरों की तरह होता है ना मन? बिल्कुल होता है, बस जरूरत होती है इसे समझने की और मन की पुकार को सुनने की।

प्यार है तो है इस फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना, आवाज हरिहरन प्रतिभा सिंह बघेल की थी। तो श्रोताओं, मन पर कभी हारी तो कभी मन पर ही बलिहारी, लेकिन मन की बातें ही क्या जो ना हो प्यारी प्यारी, जो मन से प्रीत नहीं तो फिर कहाँ मिलेगा भला चैन। ये तो हिचकोले लेता है धरती से लेकर अंबर तक, मन का मीत होता ही ऐसा है।

देखिए श्रोताओं, जिंदगी में बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने मन का मीत मिले। वो इसलिए क्योंकि जिससे आप अपने सुख दुख बांट सकते हैं, अच्छी बुरी बातें कर सकते हैं। बहुत सारी खुशियां अगर आपको किसी दिन मिल जाए तो वो आप उससे बांट सकते हैं, और ढेर सारी प्यार की बातें भी कर सकते हैं। कहते हैं ना कि मेरी इस व्यक्ति से नहीं बनती है, इस व्यक्ति से मेरी बहुत बनती है। तो यही फर्क होता है मन के मीत से मिलने का, क्योंकि जब मन का मीत आपको मिल जाता है तो हर तरह की बात, हर सुख दुख, हर उतार चढ़ाव आप अपने मन के मीत से ही बांटते हैं, साझा करते हैं। तो श्रोताओं, आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़वाते हैं और आपको सुनवा देते हैं एक और गीत।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये प्यारा सा गीत। और श्रोताओं, आइए अब आपको सुनवाते हैं अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अज़ीज़ की आवाज़ में मीत मेरे मन के, इस फिल्म से लिया गीत।

श्रोताओं, देखिए मन और मीत की क्या खूबसूरत जुगलबंदी है, जिसे हिंदी फिल्मों में बड़े ही खूबसूरत अंदाज के साथ शब्द और सुर में पिरोया गया है। तूफानों के डर से दूर नहीं होने का वादा है, तो आगे आगे हम और प्रीत के पीछे पीछे चलने का इरादा भी है। यही है मन और मीत, मनमीत।

चांदनी फिल्म से लिया गीत अभी आपने सुना श्रोताओं। मीठी मीठी बातें करने से दिल नहीं जीता जाता, हम सभी जानते हैं, क्योंकि मन पर मन का विश्वास बहुत ज़रूरी होता है। एक ऐसा विश्वास, ऐसा प्रेम, ऐसी यादें जो उम्र भर के साथ का वादा दे और वादा ले, और ये वादा बस बरसों बरस, जन्मों जन्म बस निभता रहे।

और श्रोताओं, आइए कार्यक्रम का समापन करते हैं और आपको सुनवाते हैं दीवाना फिल्म से लिया गीत, आवाज़ है कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की।

0: और श्रोताओं, इसी प्यारे से गीत के साथ हमारा आज का फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम गीत मालिका अब संपन्न होता है। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। पश्चिम बंगाल सरकार ने भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोग गठित किए। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गॉर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था लेकर

0: हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता, गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। दोनों नेताओं ने नियम आधारित विश्व व्यवस्था में अपने साझा विश्वास और संवाद तथा कूटनीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। गृहमंत्री ने कहा कि 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विस्तार का प्रतीक है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि यह सम्मान मोदी के सशक्त नेतृत्व और विश्व भर में भारत के बढ़ते सम्मान को दर्शाता है। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये सम्मान वसुधैव कुटुंबकम के चिरस्थायी सिद्धांतों के माध्यम से वैश्विक सद्भाव को मजबूत करने के प्रति श्री मोदी की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन के उनके यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये पहल महत्वपूर्ण रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुँच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, एआई साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा

0: निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्ष में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि यही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची पहचान होगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है, उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। उन्होंने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है और निर्यात भी बढ़ रहा है।
2: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल ने आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकी में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अंतर्गत भारत के दीर्घकालिक स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का लक्ष्य 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करना है। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश में तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
3: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: इस बीच सरकार ने YouTube के उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में केवल 9 दिन का तेल भंडार बचा है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने दावे को भ्रामक बताते हुए कहा कि देश में लगभग 60 दिन के कच्चे तेल का भंडार है और शोधन क्षमता भी पर्याप्त है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं पर अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बिस्वजीत बसु करेंगे।

पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान महिलाओं पर अत्याचारों पर गठित आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश समाप्ति चैटर्जी करेंगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटों में सीबीआई ने 5 स्थानों पर तलाश अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है, एक रिपोर्ट।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गोलस्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ द मेरिट से सम्मानित किया। सरकार का निर्यात लक्ष्य इस वर्ष $1 ट्रिलियन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। और आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी के संबंध में जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties in green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government targets $1 trillion exports this year. Union Minister Jitendra Singh holds talks with US industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. West Bengal government sets up 2 inquiry commissions to probe corruption and atrocities against women. And amid extreme heat conditions, Ministry of Ayush issues advisory to prevent heat-related illnesses. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to

0: भारत का बना हुआ सामान, भारत से दी हुई सेवाएं और अधिक तेजी से आगे बढ़े। हम संतुष्ट ना हो कि हम विश्व की सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, कभी संतुष्ट ना हो और आगे बढ़ा छलांग लेने की सोच। और क्या कर सकते हैं उसके लिए पूरे समय हमें सोचते रहना पड़ेगा, काम करते रहना पड़ेगा, नई चीजों को आगे लेके जाना पड़ेगा।
1: अमेरिका के आला सतह के एक सनती वफद ने नई दिल्ली में आज साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ तबादला ख्याल किया। भारत के न्यूक्लियाई सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी और सनती शराकतदारी के लिए उभरते हुए मौके पर गौर खौस किया गया। इस वफद में अमरीकी न्यूक्लियाई सनत के सीनियर नुमाइंदे, कारोबार से वाबस्ता तरफैन और सिविल न्यूक्लियाई तवानाई और जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों के शोबे में भारत अमरीका तआवुन के साथ वाबस्ता अहलकार शामिल हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत और अमरीका फिलवक्त साइंस, टेक्नोलॉजी, साफ तवानाई और उभरते हुए शोबों में एक मजबूत और मुस्तकबिल की जानिब गामजन शराकत दारी के सिलसिले में एक दूसरे से वाबस्ता हैं। विकसित भारत 2047 के विजन के तहत भारत के तवील मुद्दती साफ तवानाई के अहदाफ का हवाला देते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि भारत 2047 तक न्यूक्लियाई बिजली की अपनी सलाहियत को मौजूदा 8.8 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट करने का इरादा रखता है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह वियतनाम और जनूबी कोरिया के दो मुल्कों के दौरे पर आज सुपहर वियतनाम के शहर हनोई पहुंच गए हैं। वियतनाम में वजीर दिफा अपने हम मनसब जनरल फॉन वॉन ग्यांग के साथ बाहमी मुजाकरात करेंगे। जनाब सिंह का यह दौरा वियतनाम के साबिक सदर हू ची मिन के कल 136वें यौम पैदाइश के मौके पर हो रहा है। ये आकाशवाणी है। मगरबी बंगाल सरकार ने मुबैना इदारा जाति बदउनवानी और ख्वातीन के खिलाफ जुल्म ज़्यादती की तहकीकात करने की गरज से दो तहकीकाती कमीशन तश्कील दिए हैं। ये कमीशन भारतीय जनता पार्टी के जरिए किए गए इंतखाबी वादों के मुताबिक बनाए गए हैं। वजीर आला सुविंदो अधिकारी ने काबीना की मंजूरी के बाद आज इस फैसले का ऐलान किया। इदारा जाति बदउनवानी की तफ्तीश करने वाले कमीशन की सरबराही कलकत्ता हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बिश्वजीत बसु करेंगे। दूसरे कमीशन ममता बनर्जी की क्यादत वाली साबिका सरकार के दौरान ख्वातीन के खिलाफ जुल्म और ज्यादती की तहकीकात करेगा। इसकी सरबराही कलकत्ता हाईकोर्ट की रिटायर्ड जज संपत्ति चैटर्जी करेंगी। मीडिया से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि दोनों कमीशन अगले महीने की पहली तारीख से काम करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि तहकीकात में बदउनवानी के माजी के मामलात और ख्वातीन के खिलाफ जराइम का अहाता किया जाएगा और अवाम में से लोग इन कमीशनों के सामने अपनी शहादतें पेश कर सकेंगे। बदउनवानी की इंक्वायरी में तमाम सरकारी महकमों का मुआयना किया जाएगा जिनमें पंचायतें और जिला परिषद शामिल हैं। आयुष की वजारत ने इस साल गर्मी के मौसम के लिए इंतहाई शदीद गर्मी और गर्म लहर के सिलसिले में अवामी सेहत से मुतालिक एक जामع एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में जोर देकर कहा गया है कि जिस्म में पानी की कमी ना होने दें, इंतहाई धूप के औकात में धूप में बराह रास्त आने से गुरेज करें, हल्के सूती कपड़े इस्तेमाल करें और मौसमी फल भरपूर मकदार में लें और ऐसे मशरूबात वगैरह लें जिनमें ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता हो। इसमें शहरियों को खबरदार किया गया है कि वो गर्मी से मुतालिक बीमारियों जैसे चक्कर आना, सर में दर्द होना, जी मतलाना, जहनी थकावट महसूस करना, बुखार होना, पानी की कमी, अचानक बीमार महसूस करना और बेहोशी की सूरत हाल का सामना करने से मुहतात रहें। एडवाइजरी में सिफारिश की गई है कि खराब सूरत हाल में इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर 108 या 102 पर कॉल करें। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शदीद से शदीद तरीन गर्म लू की सूरत हाल रहने के बारे में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी अगले दो दिनों के दौरान गर्म लहर की सूरत हाल जारी रहने का इम्कान है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अपने दौरे के दौरान बस्तर ज़िले में नितनार गांव में अवामी खिदमात के एक मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मरकज़ का नाम कबायली लीडर और शहीद मुजाहिद आज़ादी वीर गुंडाधुर के नाम पर रखा गया है। इस मौके पर खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि अगले 1.5 बरस में बस्तर में कायम तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 को इसी तरह के खिदमात से मुतालिक मरकज़ बना दिया जाएगा। صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے عالمی صحت تنظیم کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھبریسس سے سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں منعقدہ 79ویں عالمی صحت اسمبلی سے الگ ملاقات کی۔ جناب نڈا نے عالمی صحت ایکویٹی کی پیش رفت کے تئیں بھارت کے عزم کو دہرایا اور کچھ اہم اسکیموں کو اجاگر کیا، جیسے آیوشمان بھارت ڈیجیٹل مشن، آیوشمان آروگیہ مندر، روایتی ادویات، مصنوعی ذہانت سے چلنے والے عوامی صحت کی اختراعات اور ٹی بی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کی جانے والی پائیدار کوششیں۔ ڈاکٹر ٹیڈروس نے صحت کے شعبے میں بھارت کی اصلاحات اور عالمی صحت شراکت داری میں اس کی قیادت کی تحسین کی اور مشترکہ ترجیحات کے تعلق سے عالمی صحت تنظیم کے ساتھ شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ حکومت نے کہا ہے کہ ملک کی ریفائنریز میں معمول کے مطابق کام ہو رہا ہے اور مغربی ایشیا کے جاری بحران کے باوجود بھارت میں خاطر خواہ خام تیل موجود ہے۔ نئی دلی میں آج بین وزارتی بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے پیٹرولیم اور قدرتی گیس کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری سجاتا شرما نے کہا کہ پیٹرول، ڈیزل، ایل پی جی اور قدرتی گیس کا خاطر خواہ ذخیرہ موجود ہے، اس کے باوجود افواہوں کی وجہ سے کچھ علاقوں سے ایل پی جی کی گھبراہٹ میں خریداری کی خبریں مل رہی ہیں۔ کیمیکل اور کیمیاوی کھادوں کی وزارت میں جوائنٹ سیکرٹری اپرنا شرما نے بتایا کہ ملک بھر میں 200 لاکھ میٹرک ٹن فرٹیلائزر دستیاب ہے اور خریف کی فصل کے لیے کیمیاوی کھادوں کی قیمت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مہاراشٹر کے پالگھر ضلع میں واقع دھنی وری میں ایک بارات کو لے جا رہے ٹرک اور ایک کنٹینر کے درمیان ٹکر سے ہوئے سڑک حادثے میں 13 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20 دیگر زخمی ہیں۔ مرنے والوں کی تعداد میں بڑھوتری کا اندیشہ ہے۔ اور آخر میں بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اوسلو میں ناروے کے اپنے ہم منصب جونس گھار اسٹور کے ساتھ مذاکرات کیے۔ انہوں نے باہمی تعلقات کو بڑھا کر صاف توانائی اور نیلگو معیشت پر توجہ کرتے ہوئے گرین کلیدی شراکت داری تک پہنچانے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم مودی کو کنگ ہرالڈ دی ففتھ نے گرینڈ کراس آف دی رائل نارویجین آرڈر آف میرٹ سے نوازا۔ حکومت نے اس برس $1 خرب برآمدات کا نشانہ رکھا ہے۔ مرکزی وزیر جیتیندر سنگھ نے بھارت میں نیوکلیائی توانائی اور پرائیویٹ سرمایہ کاری کے مواقع پر امریکہ کے ایک صنعتی وفد سے مذاکرات کیے۔ مغربی بنگال کی حکومت نے بدعنوانی اور خواتین کے خلاف زیادتیوں کی چھان بین کے لیے 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: سماچار سیوا پربھاگ سے پرستوت ہے ہمارا ساپتاہک کاریکرم پبلک سپیک۔

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूँ आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय की महापंजीयक और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराडे जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112331444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं।

0: रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए,
0: जी
1: तो काफ़ी राज्यों में स्वगणना का पीरियड ख़त्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और 1 महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का, मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान के हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे जैसे कि रेडियो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, 2-व्हीलर 4-व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
0: जी रुशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
0: नमस्कार,
2: एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गाने का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, हमें कित, अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया आपका वर्कर है। धन्यवाद।
0: धर्मवीर जी ने 3 सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
1: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की ज़रूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पर स्टैम्प होगा, प्लस QR कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं। तो QR कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पर आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
0: और दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
1: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
0: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
0: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी,
0: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता हूँ अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ 2-3 ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहा था मिला है इसके बारे में भी।
0: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
1: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में। तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से, अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभवता नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं। तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो। उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
0: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
1: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम के सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
0: जी, अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
1: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी। उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
0: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
4: जी नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार।
4: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
1: नमस्ते। प्रणाम।
4: मैम, मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम, ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है मैम, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
1: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि RTI में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज़ पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो 2 या 3 बार वहाँ पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर

0: कैसे जाए ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही
0: बिल्कुल
1: सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी
2: जी, नमस्कार
1: नमस्कार।
2: जी। मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश चली बोल रहा हूँ और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगणक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारी डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसके कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रोशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें
1: जी
0: कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहाँ पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और
1: जी।
0: नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
4: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
4: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
4: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो हम जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और कितनी रखी जाएगी, इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी। क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
5: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
5: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधू अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंटर किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा, चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं 3-4 दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई और वो किराए पर रहती है तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
1: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
6: नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
6: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
0: जी नमस्ते।
6: जी मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
0: जी तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं, 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफ़ी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगन को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफ़ी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं, 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोस दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
1: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जे कलस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
0: जी स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं कच्चे हो चाहे पक्के हो, घर होते हैं उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
1: जी।
0: जो बेघर होते हैं बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
1: जी, तो श्रोताओं अब आपके सवाल जो हैं वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेज़ी से ये काम चल रहा है, जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331 0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371717 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रिशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है। जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
1: जी अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
0: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे
1: जी।
0: लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है, तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
7: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गाँव में है राजस्थान में, एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
0: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज़्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
1: हाँ विशाली, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहाँ पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा, आप जहाँ पे रहते वहाँ पे आपकी गिनती होगी।
1: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं, MP से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
8: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
0: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊँ तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इन्फॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज़्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज़्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
1: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी
9: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार।
9: सर जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन खंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
0: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहाँ पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है, लेकिन वहाँ पे अगर

0: कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं, तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
1: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक
0: जी
1: तरीके से,
0: जी
1: क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
0: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
1: जी, और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
0: जी, जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करें इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियाँ बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल ज़रूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे, और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल रुशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद रुशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया। बहुत
0: धन्यवाद
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं, मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों

0: रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
1: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजम ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये एक महत्वपूर्ण पहल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी इस वर्ष निर्यात $863 दर्ज किया गया। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस निर्णय की घोषणा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने आज अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में CBI ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसके अंतर्गत आपने आज आनंद लिया चंद खूबसूरत सी गजलों का। कलाकार रहे जयवर्धन दधीच, संगीतकार के रूप में साथ रहे दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर, पुनीत सिसोदिया सारंगी पर, तो सलीम अहमद तबले पर। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम राग रंजन। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आज सुनते हैं ख्याल में गाया राग रागेश्री। कलाकार हैं अर्चना सिंह। तबले पर संगत दी है जितेंद्र स्वैन ने, सारंगी पर है शाहनवाज खान। आइए सुने ये कार्यक्रम।

0: राग रंजन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत अभी आपने सुना ख्याल में गाया राग रागेश्री। कलाकार रही अर्चना सिंह, संगतकार कलाकार के रूप में साथ रहे तबले पर जितेंद्र स्वैन और सारंगी पर शाहनवाज खान। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब से बस कुछ ही पलों में सुनते हैं समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर शिपिंग तक के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई, ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। द्विपक्षीय बैठक में एक त्रिकोणीय सहयोग समझौते सहित कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग करते हुए वैश्विक दक्षिण के देशों को मानव विकास समाधान प्रदान करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद इस वर्ष निर्यात $863 अरब तक पहुंच गया। ये

वर्ष की तुलना में लगभग 5% अधिक है। उन्होंने कहा कि वस्तुओं और सेवाओं दोनों के निर्यात में वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के उद्योगों, व्यापार समुदाय और लोगों में जो जोश है उसे दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। नई दिल्ली में आज अंतर मंत्रालयीय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए रसायन और उर्वरक मंत्रालय की संयुक्त सचिव अपर्णा एस शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन के लिए उर्वरक की उपलब्धता सभी राज्यों में 50% से अधिक है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जांच समिति ने आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 181 रनों का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक सनराइजर्स हैदराबाद ने 15वें ओवर में 2 विकेट पर 131 रन बना लिए थे। चेन्नई की ओर से कार्तिक शर्मा ने 44 रनों की पारी खेली। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और अगर बात अच्छी मन मुताबिक हो तो लौट कर आपके लिए प्रशस्ति और प्रशंसा लेकर आएगी। और वहीं कई बात दिल दुखाने वाली हो तो बेवजह आपके लिए भी तकलीफ का सबब बन जाएगी। जी हाँ, कोई भी बात कहने से पहले जनाब, अगर आप उसके शब्दों पर ध्यान दे देते हैं और अपनी वाणी पर ध्यान दे देते हैं तो कई बिगड़ी बातों को हम बना सकते हैं, और अगर हम नहीं ध्यान देते तो कई बनी बनाई बातों को हम बिगाड़ सकते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करते हुए आप सभी के साथ बात करने चली आई हूँ। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त वंदना, और बात ये है कि कितना ज़रूरी है आज के समय में अच्छा बोलना, अच्छे शब्दों को बोलना और मीठा बोलना, क्योंकि मेहनत जो है जितनी मीठा बोलने में लगती है उतनी ही मेहनत आप खराब शब्दों को बोलने में भी लगाते हैं, यानी कि अपनी एनर्जी तो वेस्ट करते ही है ना। तो फिर क्यों ना बात ऐसी बोली जाए जो सबके लिए खुशी का सबब बन जाए।

बोल दो मीठे बोल सोने। अब इसीलिए कहा जाता है कि पहली नजर में आपको भले ही किसी का चेहरा कितना भी अच्छा और आकर्षक लगता है, लेकिन आप जब बहुत देर तक आप बात करते हैं और आप पाते हैं कि व्यक्ति की बातों में एक अलग सी तलखी है, एक अलग सा तीखापन है, बात बात में कटाक्ष है, तो आपको वो जो सुंदर चेहरा होता है ना, अचानक से इतना अच्छा नहीं लगता जितना पहली नजर में लगा था। इसीलिए कहा जाता है कि पहली नजर में भले ही चेहरा आपको पसंद आए, लेकिन अंत तक जो रिश्ता बनाकर रखता है या फिर जो साथ देता है, वो होता है आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपकी मधुर भाषा और संयमी अंदाज। कि आप कितने अच्छे से किसी की बात सुनते हैं, कहते हैं, समझते हैं, और कोई तकलीफ में होता है तो कैसे आप दो शब्द इतने अच्छे कह पाते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए वो ढाढ़स का काम कर जाते हैं। फिलहाल अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए तो दो नहीं, अनेक मैसेजेस आए हुए हैं हमारे सभी साथियों की तरफ से जो हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं, और कोशिश करूँगी बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, लेकिन बहुत सारे संदेश हैं तो कम से कम नाम तो मैं शामिल करूँ। सादिक अली साहब हैं इस समय हमारे साथ, और कालू बडोले जी, उनका परिवार सुन रहा है। हाजी मंजर साहब हमें सुन रहे हैं, संजय धींगिया हैं, नंद किशोर घाटे हैं, जसबीर सिंह ने हमें इस समय ज्वाइन किया है, अनिल वर्मा हैं, सतीश अनेजा साहब भी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारा स्वागत करते हुए लिख रहे हैं, राजपाल शर्मा है, रश्मि पंड्या

कहती हैं वंदना सखी, आपका आइस डिश से स्वागत है। भाई जिस हिसाब से गर्मी पड़ रही है रश्मि, और ठंड की कोई बात हो जाए तो क्या बात, और अगर ठंडा और अच्छा व्यवहार हो जाए तो फिर तो जबरदस्त बात है ना। राजेश वर्मा हमें सुन रहे हैं, टीडी मल्होत्रा साहब, इसी बीच हमारे साथ गुरमीत और मीता भी हैं, हमारे साथ अनवर अंसारी हैं, रमेश कुमार, बिट्टू गंगेजा, अब्दुल गफ्फार, अहमद फूलवाले हमें सुन रहे हैं, आर कुमार हैं, मेहर अरोड़ा हैं, हरजिंदर शिंदे हैं, रजक मोहम्मद है, सुदर्शन शाह हैं, राज क्रिएशन से भी कुछ साथी हमारे साथ हैं, पंजी नवहानकर हैं, अक्रम हुसैन हैं, राजकुमार धोदी हैं, कमल बलूजा हैं, और फगुराम यादव भी हमें सुन रहे हैं, कमल है साथ में, और रामेश्वर भी हमारे साथ है। और जैसा कि हमने कहा दोस्त कि अच्छा बोलना बहुत ज़रूरी है, कई बार किसी किसी व्यक्ति में आप देखते हैं ना इतनी काबिलियत होती है कि वो बिगड़ी हुई बात में भी जब सामने आकर खड़ा होता है ना, इतने अच्छे से दोनों पक्षों में जिनमें अगर वाद विवाद है या कोई बातचीत नहीं मन मुताबिक चल रही, इतने अच्छे से समझा देता है बात कि वो जो कहते हैं ना एक रूप खराब होने वाला था किसी बात का या बात विवाद में बनने वाली थी वो वहां से खत्म हो जाती है और लोगों में ठंडक पड़ जाती है और कुछ हद तक वो जो मसला था जो बिगड़ने वाला था वो सुलझ भी जाता है। ऐसा मादा रखते हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं कि बिगड़ी हुई बात को भी वो संवार दे।

बिल्कुल जनाब, ज़िंदगी में जब भी मौका मिले ना तो कुछ ऐसा इंसान बनने की कोशिश कीजिए कि अगर हम किसी की बात ना बना पाएँ तो कम से कम अपने शब्दों को इतना संयत रखें, इतने कंट्रोल में रखें कि किसी की बनती बात को हम बिगाड़ ना दें। क्योंकि अच्छी भाषा, अच्छी ज़ुबान या फिर कहें अच्छा बोलने वाले लोगों को सभी लोग चाहते और सराहते हैं। फिलहाल हम भी चाह रहे हैं, हमारे बहुत सारे लिसनर्स के मैसेजेस आ रहे हैं और रियासत हुसैन साहब भी हमारे साथ हैं। और रियासत साहब, पहले भी आप

आपका संदेश हमने पढ़ा, आप ये बिल्कुल ना सोचे कि हम किसी को अनदेखा करते हैं, लेकिन बार बार लगातार संदेश आते हैं तो हमारे लिए और लिसनर्स को लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और जब हम संदेश पढ़ते हैं, कभी कभी हो सकता है कि आप शायद ट्यून करके इधर उधर चले गए। और फिलहाल बताएं, रियासत जी, नाजमा, रियाज, मोहम्मद, समरीन और माहिरा नूर हमें सुन रहे हैं। हसीना ने भी इसी बीच हमें ज्वाइन किया है, और शाहरुख, फारूक, शबनम और शहनवाज हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लग रहा है। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। रियासत हसैन साहब का भी हमने संदेश ले लिया। मोहम्मद फैज़ल भी हमें इस समय सुन रहे हैं। अहमद फूल वाले साहब भी सुन रहे हैं, जो कह रहे हैं, होस्ट मैडम आदाब, और हम निराश न कीजिएगा। तो फिर यही कहेंगे, हम कभी किसी को निराश नहीं करते मित्र, हमारी कोशिश रहती है हम तो सभी को लें, बट आपके संदेशे कभी कभी एक ही व्यक्ति के 14-15 संदेशे हम तक पहुंच जाते हैं, तो कुछ संदेशे जो है वो हमसे छूट जाते हैं। बुधराज खोरवाल साहब भी इस समय हमें सुन रहे हैं, जिनके बेतहाशा संदेशे मुझ तक पहुँचे। सादिक अली साहब भी हैं हमारे साथ, और साथ हैं हमारे इस समय अश्विनी चुग, जो हमें सुन रहे हैं पंचकुला से। और ये जो गीत हमने बजाया अश्विनी साहब, को बहुत पसंद आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, तमाम मित्रों। और दिलावर खान साहब भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिखते हैं, मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए हर उस व्यक्ति को त्याग दो जो तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बने। ये कहना है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, अलीजा नायाब और लड्डू का। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कभी कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग आ जाते हैं जो इतनी मानसिक तकलीफ़ और कष्ट देते हैं, हर बात में उनके जो कहते हैं ना, एक निराशा या फिर एक चोट का सबब मिलता है। तो बहुत अच्छा है कि उनसे उलझने की बजाय हम थोड़ा सा उनसे साइड हो जाएं, दरकिनार थोड़ा सा हम अगर उन्हें कर देते हैं तो हमारे लिए ज़िंदगी जीना बहुत सरल हो जाता है। छोटे अंसारी साहब भी इसी बीच हमारे साथ जुड़े हैं, और जैसा कि मैं कह रही हूँ कि उतनी ही मेहनत लगती है दोस्त अच्छा और बुरा दोनों को बोलने में, वाणी ही तो बाहर निकलती है ना। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा अच्छा बोलें कि किसी को हमारे शब्द जो हैं वो उसके लिए मरहम का काम बने, ना कि इतना तेज नश्तर की मानिंद चुभें कि एक जख्म बना जाए, और वो ऐसा जख्म जो समय के साथ साथ भरे भी नहीं, यानी कि जब जब उस बात की या उस याद की याद आए तो एक गहरी टीस उठे और दिल से हम कराह निकले। ऐसा बिल्कुल ना करके हम सोचें कि अगर बहुत अच्छा नहीं भी हम बोल पा रहे तो उस समय चुप्पी साध लेना बहुत अच्छा है। किसी के लिए अच्छा प्यार का सागर बनिए।

और देखिए, इसी बीच नबी हसन साहब और छोटे अंसारी साहब और पूनम गंगेजा जी ने भी हमें ज्वाइन किया है, और हम आज बात कर रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा हुआ, यानी कि इतना अच्छा बोलिए कि आपके जो शब्द हैं किसी दूसरे के लिए प्रेरणा ना भी बन पाए तो कम से कम दुख की वजह तो बिल्कुल ना बने।

0: धीरे धीरे बोलो, जरा फिर से बोलो ना।
1: मैं तुमसे प्यार करता हूँ।
0: क्या करते हो?
1: प्यार, प्यार, प्यार करता हूँ।

0: बोलो बोलो। मैंने कहा क्या तुम अब भी डरती हो?
1: धीरे धीरे बोलो दिल की बातें।

0: और भाई इसी बीच जावेद अख्तर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं और लिख रहे हैं कि आज का बहुत सुंदर संदेश है और आपका एक एक शब्द दिल को छू रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से हमारे साथ रहे जावेद अख्तर राही, शमशुल कमर राही, बेगम रुखसार, रकीबा शाहिन, तुबा आफरीन और शमीम अख्तर अंसारी। इसी बीच हमारे साथ और भी हमारे कुछ साथी जुड़े हैं। नबी हसन साहब हमें सुन रहे हैं। छोटे अंसारी साहब कहते हैं कि आप का जो प्रोग्राम है हम बहुत ही अच्छे से सुनते हैं और इन्हें इनका कहना है कि सभी जो कार्यक्रम हमारे होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, दिल से पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरुण कुमार पांडे भी हमें सुन रहे हैं और रियासत हुसैन साहब कहते हैं कि मैं जो रेडियो हुआ है आरजे साहिबा करीबन 40 साल से सुन रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे कार्यक्रमों में जुड़ने के लिए और हमारे बीच ये विश्वास रखने के लिए। चलिए एक और खूबसूरत सी पेशकश आप सभी के नाम।
1: बरसों बाद मैं निकली हूँ। ऐसा लगता है कि वो किसी और सदी की बात थी।
2: शायद उन दिनों की बात होगी जब ये इमारत अभी उजड़ी नहीं थी।
1: हाँ, पिछले किसी जन्म की

0: औकात ही तो लगती है।
1: एक काम करें, जब तक तुम यहां हो रोज घर पे खाने के लिए तो आया ही करोगी, खाने के बाद घूमने निकल आया करेंगे, कम से कम ये इमारत कुछ दिनों के लिए तो बस जाएगी। तुम्हारी शॉल कहाँ है?
0: भूल गई। ना ना,
1: तुम नहीं बदलोगी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना?

श्रोताओं, अभी आप आनंद ले रहे थे फिल्म संगीत के कार्यक्रम का। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स पर, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। 12 बजने को है। इन मीटरों पर हमारी प्रसारण सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातः 4:50 पर एक बार पुनः हम आप सभी की सेवा में उपस्थित होंगे, परंतु AIR लाइव न्यूज 24/7 पर हमारा प्रसारण यूं ही लगातार जारी रहेगा। अब से कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे समाचार, पहले हिंदी और उसके बाद अंग्रेजी में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मत्स्य उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। जब मैं नॉर्वे आया हूं, तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। वे श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचार

0: की जांच के लिए दो जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाने संबंधी कई बड़े सुधारों की समीक्षा की। श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रिफॉर्म एक्सप्रेस के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में सुधारों को तेज किया जाएगा ताकि कृषि प्रशासन को अधिक पारदर्शी, तकनीक आधारित और प्रभावी बनाया जा सके। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिनीत शुक्ला। Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into Force of Trade and Economic Partnership Agreement, TPA. He underlined that stakeholders on both the sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals and startups. Prime Minister Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure, green hydrogen and clean energy. He appreciated Norway's global leadership in clean energy investments, maritime decarbonization, ocean sustainability and climate finance. Prime Minister Modi urged the business communities of both the countries to forge new partnerships, identify emerging areas of collaboration and strengthen economic cooperation. The summit was attended by CEOs of over 50 companies and more than 250 participants from the Norwegian and Indian business and research communities. A number of business agreements between India and Norwegian companies and entities were signed during the summit. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement yesterday, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping. Prime Minister Modi said the India EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Defence Minister Rajnath Singh has described Operation Sindoor as a testament to India's transformation into a strong, confident and capable nation. Addressing the Indian diaspora in Hanoi yesterday, Mr. Singh asserted that while India remains committed to the no first use policy, it will not succumb to nuclear blackmail and stands ready to respond firmly to any enemy misadventure. He highlighted India's growing stature on the international stage due to the unprecedented progress achieved under the leadership of Prime Minister Narendra Modi.

ये आकाशवाणी दिल्ली का यार लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 12:10 हुए हैं।

श्रोताओं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कीर्तिका है आप सभी को प्रणाम। सुरों का सफरनामा कार्यक्रम में मैं आपका स्वागत करती हूँ।

दोस्तों, आज का ये सफर कोई आम सफर नहीं है। आज हम टाइम मशीन में सवार होकर 90 के दशक के उस दौर में वापस जा रहे हैं जहां मोहब्बत खतों में होती थी, जहां जज्बात गानों में बयां होते थे। और जब 90s के गानों की बात हो तो एक ऐसी महिला गीतकार का नाम सबसे ऊपर आता है जिसने अपनी कलम की स्याही से करोड़ों दिलों को धड़कना सिखाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हिंदी सिनेमा की सबसे बेहतरीन और सादगी पसंद गीतकार रानी मलिक की। आमतौर पर बॉलीवुड में पुरुष गीतकारों का दबदबा रहा है, लेकिन उस दौर में रानी मलिक ने अपनी एक ऐसी अलग पहचान बनाई कि हर बड़ा बैनर डायरेक्टर उनके लिखे शब्दों का मुरीद हो गया। आज के इस शो में हम रानी जी की जिंदगी के पन्नों को पलटेंगे, उनके करियर की दिलचस्प कहानियों को टटोलेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने इतने गीतों में अपना जादू बिखेरा। तो चलिए आगाज करते हैं रानी मलिक के लिखे रोमांटिक गाने से, जिन्होंने रिलीज होते ही इतिहास रच दिया था।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं रानी मलिक के ज़िंदगी के सफ़र को। दोस्तों, रानी मलिक 80 के दशक के आखिरी सालों में जब मुंबई में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, तब महिला गीतकारों के लिए रास्ता इतना आसान नहीं था। लेकिन उनकी किस्मत बदली साल 1990 में। निर्देशक महेश भट्ट एक ऐसी म्यूज़िकल फिल्म बना रहे थे

दो नए चेहरों राहुल रॉय और अनु अग्रवाल पर आधारित थी। गुलशन कुमार के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार कर रहे थे नदीम श्रवण। जब रानी मलिक ने इस फिल्म के लिए गाने लिखे तो किसी को अंदाजा नहीं था कि ये एल्बम इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन जाएगी।

इन शब्दों को सुनकर आज भी ऐसा लगता है जैसे प्यार का एहसास बिल्कुल ताज़ा हो गया हो। आशिकी के गानों ने रानी मलिक को रातों रात स्टार गीतकार बना दिया था। उनके लिखे शब्दों की सादगी ऐसी थी कि आम इंसान से लेकर पढ़ा लिखा वर्ग भी उनके लिखे गीतों को गुनगुनाने लगा। फिल्म में समीर ने भी गाने लिखे थे, लेकिन रानी मलिक के हिस्से जो गाने आए उन्होंने रोमांस की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं इसी सुनहरे दौर के और बेमिसाल गीत।

वाकई शब्दों का ये चयन सिर्फ एक गहरा लेखक ही कर सकता है। चलिए अब बात करते हैं रानी मलिक की पर्सनल लाइफ और उनके स्वभाव के बारे में, जिसके बारे में फैंस अक्सर जानना चाहते हैं। रानी मलिक की सबसे बड़ी खासियत ये रही कि उन्होंने खुद को हमेशा चकाचौंध और लाइमलाइट की दुनिया से दूर रखा। वो स्वभाव से बेहद गंभीर, शांत और इंट्रोवर्ट रही हैं। फिल्म स्टूडियोज़ के चक्कर लगाना या पार्टीज का हिस्सा बनना उन्हें कभी रास नहीं आया। उनके करीबी बताते हैं कि रानी मलिक जब भी किसी गाने की सिचुएशन सुनने डायरेक्टर के पास बैठती थी तो वो शब्दों को दिमाग से नहीं बल्कि सीधे दिल में उतारती थी। उनका मानना था कि एक महिला होने के नाते वो भावनाओं के उन बारीक धागों को ज़्यादा संवेदनशीलता से छू सकती हैं जिन्हें पुरुष अक्सर छोड़ देते हैं।

रानी मलिक की पर्सनल लाइफ बिल्कुल एक खुली और साफ किताब की तरह रही है, जहाँ सिर्फ उनका परिवार और उनकी कविताएं थी। उन्होंने कभी भी विवादों का सहारा नहीं लिया और ना ही कभी पब्लिसिटी स्टंट किए। उनका हमेशा से एक ही मंत्र रहा, मेरा काम ही मेरी पहचान है। दोस्तों, उनके सुपरहिट गीत जो हम आपको सुनवा भी रहे हैं, वो आज भी हमारे दिलों में बसे हुए हैं। 90 के दशक में उन्होंने बहुत से दिलों को छू लिया था। दोस्तों, रानी मलिक की एक और बड़ी खूबी थी उनकी वर्सटैलिटी। अक्सर लोगों को लगता था कि वो सिर्फ सॉफ्ट रोमांटिक गाने लिख सकती हैं, लेकिन उन्होंने इस धारणा को गलत साबित किया। उन्होंने जहां नदीम श्रवण के साथ आशिकी में मेलेडी रची, वहीं अनु मलिक के साथ मिलकर बाजीगर में सस्पेंस और रोमांस का मिक्सचर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने दलेर मेहंदी और आशा भोसले के साथ फिल्म खौफ में नच बीबी नच कुड़ी जैसा हाई एनर्जी, पेपी और डांस नंबर भी लिखा, जिसे सुनकर कोई नहीं कह सकता था कि ये उसी कलम से निकला है जिसने धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना लिखा था। रानी मलिक ने जतिन ललित और आनंद मिलिंद जैसे दिग्गज संगीतकारों के साथ भी काम किया और हर बार डायरेक्टर की सोच पर 100% खरी उतरी। चलिए, उनके इसी वर्सेटाइल अंदाज को बयां करते हुए तो अलग अलग मूड के गानों का आनंद लेते हैं।

दोस्तों, यही तो जादू है रानी मलिक की कलम का। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुरों का सफ़रनामा में आज रानी मलिक की ज़िंदगी के सफ़र को। रानी मलिक के करियर का एक और बड़ा चैप्टर था टी सीरीज की एल्बम और फिल्म बेवफा सनम। 90 के दशक के बीच में एक बहुत बड़ा दौर दर्द भरे गानों का आया था, जिसकी कमान गुलशन कुमार जी ने संभाली थी। रानी मलिक ने जुदाई, टूटे दिलों में की दर्द और तन्हाई को शब्दों में पिरोने का जो हुनर दिखाया, उसकी कोई मिसाल नहीं है। उनके लिखे दर्द भरे गाने सीधे उन प्रेमियों के दिलों पर लगते थे जिनका दिल टूटा हो। तेरी गली विच्चों उठेगा जनाजा मेरा जैसे गानों ने उस दौर में हर ऑटो, हर दुकान और हर लाउडस्पीकर पर अपनी जगह बना ली थी। इन्होंने साबित कर दिया कि वो सिर्फ मिलन के गीत नहीं लिखती, बल्कि बिछड़ने के दर्द को भी अमर करना जानती है। तो चलिए, आपको लेकर चलते हैं फिल्म बेवफा सनम की ओर, जिसमें आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में ये गीत।

अब तेरे बिन जी लेंगे हम, इस दर्द में भी जो ठहराव है वो सिर्फ रानी मलिक ही ला सकती हैं। दोस्तों अब बात करते हैं उनके अवार्ड्स और सम्मान की। वैसे तो रानी मलिक जी ने हमेशा अवार्ड्स की दौड़ से खुद को दूर रखा, लेकिन उनके बेहतरीन काम को इंडस्ट्री अनदेखा नहीं कर सकी। उन्हें उनके शानदार और चार्टबस्टर गानों के लिए प्रतिष्ठित स्टार स्क्रीन अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ गीतकार की कैटेगरी में नामांकित किया गया और सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा उन्हें आशिकी के लिए कई फिल्म क्रिटिक्स और म्यूजिक एसोसिएशंस द्वारा विशेष सम्मान से नवाजा गया। लेकिन रानी जी ने एक इंटरव्यू में मुस्कुराते हुए कहा था कि एक गीतकार का सबसे बड़ा अवार्ड किसी अवार्ड फंक्शन की ट्रॉफी नहीं होती, बल्कि जब मैं किसी अजनबी को राह चलते अपने लिखे गाने गुनगुनाते हुए सुनती हूँ तो वो लम्हा मेरे लिए ऑस्कर से भी बड़ा होता है। और वाकई आज 35 साल बाद भी उनके गाने हमारे फ़ोन की प्लेलिस्ट में ज़िंदा हैं। शायद यही उनका सबसे बड़ा पुरस्कार है। दोस्तों रानी मलिक स्पेशल सुरों का सफ़रनामा कार्यक्रम में आज आपने उनके बारे में जाना, तो चलते चलते आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म दिल है कि मानता नहीं से ये गीत।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटारेल्ली से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद में सौंप दी। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू कर देंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों, व्यापारियों और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए प्रक्रिया

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आपने सुना फिल्म द ट्रेन से ये गीत। अगला गीत जो आप सुनेंगे उसमें आवाज़ दी है किशोर कुमार ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं फिल्म हीर रांझा से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, कैफ़ी आज़मी के बोल हैं। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े को हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

आइए आपको अगला गीत सुनवाते हैं फिल्म कुर्बानी से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। बोल इंदीवर के हैं और संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने।

परवीन सुल्ताना के स्वर में आप सुन रहे थे ये गीत, बोल मजरू के थे, संगीत से पिरोया था आर डी बर्मन ने। फिल्म कुदरत से आपने सुना ये गीत। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं गीत सुनहरे, अपनी दोस्त यानी कीर्ति के साथ।

श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं शान फिल्म से अगला गीत। उषा उत्थुप की आवाज़ है। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था और आर डी बर्मन ने संगीत दिया था।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इस कार्यक्रम से इजाज़त और सुनते रहिए अन्य कार्यक्रम एयर लाइव न्यूज़ 24x7 पर हमारे साथ।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ, तो सुनिए

0: इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।
1: श्रोताओं, अब समय है समाचारों का।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर ने भी भाग लिया। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। यह यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेटारेले से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
3: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
2: केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। ये बैठकें जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान हुई। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। श्री नड्डा इस समय स्विट्जरलैंड में हैं, जहां 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा कल से शुरू हुई और इस महीने की 23 तारीख तक चलेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। संस्थागत भ्रष्टाचार के जांच आयोग की अध्यक्षता कलकत्ता उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विश्वजीत बसु करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों पर प्रसारित उस दावे का खंडन किया है, जिसमें कहा जा रहा है कि मंदिरों के स्वर्ण भंडार के बदले सरकार मंदिरों को गोल्ड बॉन्ड जारी करने जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया कि यह दावा पूरी तरह फर्जी है। PIB ने कहा कि सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया है। PIB ने लोगों से फर्जी दावों से सावधान रहने और केवल आधिकारिक स्रोतों से मिली जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील की है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्ले

गेंदबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह आकाशवाणी दिल्ली का AR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार मध्य रात्रि की 2:10। अब कार्यक्रम गीत बहार लेकर हाजिर है आपकी दोस्त कीर्ति, और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाते हैं नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक। और हमेशा की तरह पूरी फहरिस्त तैयार है आपके दिल तक इन गीतों को पहुंचाने के लिए, हम तैयार हैं। तो चलिए निकल चलते हैं इस गीतों के सफर पर, और सबसे पहले आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत।

तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी। तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का

0: गीतों ने जो स्टूडियो का माहौल बनाया है इस रात के सफ़र में, वो बहुत ही मज़ेदार है। उम्मीद है आपको भी ये गाने पसंद आए होंगे। नॉन स्टॉप फिल्म म्यूज़िक का कार्यक्रम गीत बहार आप सुन रहे थे मेरे यानी अपनी दोस्त कीर्ति के साथ, और अब ना चाहते हुए भी इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेज़ी में समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं चंद्रशेखर शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की। प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। श्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री JP नड्डा ने जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा के दौरान कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू कर दिए हैं। इनमें राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र में पर्यटन को लेकर संसदीय परामर्शदात्री समिति की बैठक की अध्यक्षता की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंधिया ने कहा कि बैठक में एक व्यापक कार्ययोजना पर चर्चा हुई। इसमें बुनियादी ढांचे का विकास, मानव संसाधन प्रशिक्षण, राज्यों के अनुसार विशेष पर्यटन सर्किट, बहुराज्य पर्यटन पैकेज और पूर्वोत्तर के लिए एकीकृत पर्यटन ब्रांड तैयार करने जैसे विषय शामिल रहे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से जुड़े आरोपों की जांच कर रही जज जांच समिति ने कल अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को संसद भवन में सौंप दी। यह रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत की गई है। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र के पालघर जिले के धनवारी में कई ट्रक और एक कंटेनर के बीच हुई टक्कर में 13 लोगों की मौत हो गई और 20 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ट्रक में 100 से अधिक लोग सवार थे। घायलों का इलाज कासा उपचला अस्पताल में चल रहा है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर 181 रन बनाकर मैच जीत लिया।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम।

घड़ी में रात के 3:10 हुए हैं। श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम गीत और गजलों का। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी सरिता। लाई हूँ आपके लिए बेहतरीन गजलें, तो आनंद लीजिए इन खूबसूरत सी गजलों का। और कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं उस्ताद राशिद खां की आवाज़ के साथ।

चुका हूँ इसी खूबसूरत सी गज़ल के साथ। फिलहाल गीत और गज़ल का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। अपनी दोस्त सरिता को दीजिए इजाज़त जाने की, लेकिन जुड़े रहिए AI Live News 24/7 चैनल के साथ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AI लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 4 बज चुके हैं और ये वक्त है भक्ति संगीत के कार्यक्रम का।

नारायण तीर्थ की एक रचना सुनिए। कलाकार हैं नेदु नूरी कृष्णमूर्ति, एम जलजाक्षी, एम वी रमणम मूर्ति, पी सूर्या राव, एम एल नरसिम्हम, एस वसुंधरा देवी और एम जोगुलाम्बा।

0: इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का न्यूज़ ऑन एयर ऐप है और स्टूडियो घड़ी में प्रातः 4:20 हुए हैं। अब सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नादब्रह्म। आज के नादब्रह्म कार्यक्रम में आप सुनेंगे टीवी मणिकंदन का रागम पूर्वी कल्याणी में गायन।

कर्नाटक संगीत के कार्यक्रम नाद ब्रह्म में अभी आप सुन रहे थे टीवी मणिकंदन का रागम पूर्वी कल्याणी में गायन। नाद ब्रह्म कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई 2026। सुबह के 4:53 और 55 सेकेंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए अब आपको इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों से अवगत करा देते हैं। अब से थोड़ी ही देर में ठीक 5:30 पर आप सुनेंगे आओ योग करें। आज के आओ योग करें कार्यक्रम में आप सुनेंगे भ्रामरी प्राणायाम और भुजंगासन के बारे में। पांच बजकर 30 पर देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम, 5:30 पर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे चंद्रिमा मजूमदार का राग भटियार में सरोद वादन। प्रातः 6:10 का वक्त रहेगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। 6:40 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। आज के चिंतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर। श्री रामचरितमानस से पाठ का वक्त रहेगा प्रातः 6:45। आज आप सुनेंगे बालकांड भाग 60। कार्यक्रम संगीतिका का वक्त रहेगा प्रातः 7:10। 7:30 पर आप आनंद ले सकते हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम का। प्रातः 8:45 का वक्त है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा का। 9:15 पर विज्ञान पत्रिका। नौ बजकर 30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम मिट्टी दी बहक। 10:10 पर आपकी फरमाइश। 11:10 पर कार्यक्रम सब रस का आप आनंद ले सकते हैं और 11:30 पर सुरमंजरी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम।

0: तो श्रोताओं, ये थी आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः 5 बजने वाले हैं। अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
2: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया।

0: उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
1: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: जिनेवा में आयोजित 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कल थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड्स, स्वीडन और मॉरिशस के प्रतिनिधियों तथा स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठकें की। श्री नड्डा ने कहा कि बैठकों में डिजिटल स्वास्थ्य, दवा क्षेत्र, मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था और सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच सुनिश्चित करने जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद कल इस फैसले की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि दोनों आयोग 1 जून से काम शुरू करेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में इबोला वायरस के प्रकोप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने इसे अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। IPL क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में आज लू चलने की चेतावनी जारी की है। हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Ashish Abraham. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the summit, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. He underlined that stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India. He highlighted India's strong upward growth trajectory, demographic dividend, talented and aspirational youth, robust business practices, investor-friendly regulatory framework, and the spirit of competitive federalism. He encouraged greater Norwegian investments in India in key sectors such as the blue economy, shipbuilding, green transition, renewable energy, health tech, critical minerals, and startups. PM Modi also underscored India's ambitious green transition agenda, emphasizing the country's scale, growing energy demands, climate commitments and rapid expansion in renewable energy, grid infrastructure,

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दौर में ऐसा लगता है कि मानो तनाव

हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, जिसे देखो वह तनाव से पीड़ित है। यहाँ तक कि आजकल बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। यदि तनाव से मुक्त पाना है तो इसका एक ही प्रभावी तरीका है और वह है योग। वैसे तो हर योग की अधिकतर क्रियाएं करने से आप तनाव से मुक्त हो सकते हैं, परंतु प्राणायाम में भ्रामरी प्राणायाम सबसे ज्यादा इफेक्टिव यानी सर्वश्रेष्ठ माना गया है तनाव को कम करने के लिए। तो भ्रामरी प्राणायाम को करने के लिए आइए सीखते हैं कि किस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम किया जाता है। भ्रामरी शब्द भ्रमर से लिया गया है, जिसका मुख्य अर्थ है भंवरा। इस प्राणायाम के अभ्यास के समय निकलने वाला स्वर यानी निकलने वाली आवाज भ्रमर के गुंजन के स्वर की तरह ही होती है। आइए सीखते हैं अभ्यास विधि। सबसे पहले आप किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएं और आंखें बंद कर लें। उसके पश्चात आप शंखमुखी मुद्रा धारण करें। यदि आप शंखमुखी मुद्रा नहीं जानते तो आप अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में भी रख सकते हैं। धीरे धीरे नियंत्रण रूप से श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे श्वास भरें और छोड़ते समय भंवरे जैसी आवाज को निकालने का प्रयास करें। इस तरह भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र माना जाता है और हर बार जब भी आप भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार अवश्य दोहराएं। भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास तनाव से मुक्त करता है और चिंता, क्रोध और अति सक्रियता को घटाता है। भंवरे जैसी आवाज का प्रतिध्वनि प्रभाव आपके मस्तिष्क और आपकी कोशिकाएं, आपकी तंत्रिकाओं पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। यह महत्वपूर्ण शांतिकारक अभ्यास है, मतलब इस अभ्यास को करने से आपका तनाव काफी हद तक कम होता है और आपको एक शांति का अनुभव होता है। यह एकाग्रता और ध्यान की भी आरंभिक अवस्था मानी जाती है। तो आज के सेशन में हमने सीखा कि भ्रामरी प्राणायाम से आप किस प्रकार अपने तनाव को कम कर सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखंद। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कमर दर्द की समस्या बहुत ही आम होती जा रही है। युवावस्था से लेकर वृद्ध अवस्था तक कमर के दर्द की प्रॉब्लम पाई जाती है, जिसके लिए आज हम एक आसन करेंगे, उसका नाम है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए सबसे पहले पेट के बल लेट जाएं और अपने दोनों हाथों पर सिर को टिकाए रखें और शरीर को शिथिल करें, यानी रिलैक्स कर दें। अब अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाएं, हाथों को खींचकर आगे की ओर लेकर जाएं और माथा यानी फोरहेड आपके आसन पर टिकाए रखें। अब हाथों को धीरे धीरे वक्षस्थल यानी चेस्ट रीजन के पास लेकर आएं और ध्यान रहे कि आपकी दोनों कोहनियां ऊपर की ओर उठी हुई, यानी आसमान की ओर उठी हुई हों। धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और छाती को नाभि क्षेत्र तक ऊपर उठाने का प्रयास करें। दोनों कोहनियों को समांतर

0: रखें और इसी स्थिति में 10 से 30 सेकंड तक श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। दोनों कोहनियों को समानांतर रखें और 10 से 30 सेकंड सामान्य श्वास पर श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। इस अभ्यास को भुजंगासन कहा जाता है। पुनः श्वास को बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएं और अपने माथे को जमीन पर टिकाएं और मकरासन की स्थिति में कुछ क्षण विश्राम करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब आप यह आसन करें तब पैरों को उतना ही तान कर रखें कि कमर पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव पैदा ना हो। भुजंग आसन का अभ्यास एक सेशन में कम से कम 3 से 4 बार दोहराएं। यदि आपको कोई हर्निया की प्रॉब्लम है और पेट की कोई रिसेंटली सर्जरी हुई है तो यह आसन अवॉइड करें। यह आसन आपकी कमर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है और कुछ हद तक तनाव को भी दूर भगाता है। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ योग करें।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में प्रातः 5:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी। आज के स्वर रंजनी कार्यक्रम में आप सुनेंगे सुश्री चंद्रिमा मजूमदार का राग भटियार में सरोद वादन।